trying to show you some anger. 5599 पे आप बता सकते हैं मुझे. बट यस, बने रहिए अभी से लेके 3 बजे तक मैं यहाँ पे हूँ. बहुत सारी बातें होने वाली है, बहुत सारे गपशप होने वाले. सो यस, स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू मी माय शो. आज के लंच बॉक्स शो में शुरुआत करेंगे फितूर. ये फितूर, ये वाला गाना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में. एंजॉय करिए.

0: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे हम।
2: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Homesick remedies के लिए कुछ messages आए हैं। आप भी मुझे भेज सकते हैं 5599 पे। बढ़िया सभी की जो बात है। सबसे पहला message आया है संजना का। वो कहती हैं, When I'm sick, I sit on the floor to eat dinner instead of at the dining table. It reminds me of home. अरे वाह, काफी time हो गया कि नीचे बैठ के खाना नहीं खाया। I mean सोफे पे बैठते हैं या चेयर पे बैठते हैं वैसे खाते हैं, बट व्हेन यू सिट डाउन एंड ईट उसका मजा ही अलग है। लाइक दिस अलग अलग तरह की अटैचमेंट फॉर दैट, राइट। उसके अलावा आफ्ताब कहते हैं, आई मिस हियरिंग कजिन्स फाइट ओवर चार्जर्स ब्लैंकेट एंड टीवी रिमोट्स ड्यूरिंग हॉलीडेज। वो तो है यार, वो तो है। यहाँ पे भी होता होगा, लाइक आई मीन वी ऑब्वियसली गोना मिस इट, बट शायद हमारे बच्चे तो करेंगे ही वो चीज। लीला कहती हैं, माय रेमेडी इज वॉकिंग अप अर्ली ऑन वीकेंड्स एंड मेकिंग अ फुल इंडियन ब्रेकफास्ट इवन इफ नोबडी आस्क्ड फॉर इट। क्या बात है, वेरी नाइस ऑफ यू। हम भी आपको कभी नहीं बोलेंगे, जस्ट इनवाइट अस, आई एम हैप्पी टू कम ओवर एंड या जस्ट किडिंग। और भी मैसेज आए हैं, आप भी मुझे भेजिए 5599 पे। अभी एक मैसेज आया है धर्म पाजी का। वो कहते हैं, आई मिस ओल्ड पीजी बसेस विद लाउड म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीबडी समहाउ नो ईच अदर। क्या बात है, दैट्स कूल। ये एक्चुअली पापुलेटर बहुत होता है यहाँ पे, लाइक यू नो म्यूजिक इतना लाउड होता है, कार के ऊपर स्पीकर लगाते थे एंड देन दे प्लेड एंड लाइक एवरीवन इज लाइक बैंगिंग, या टिंके लाइक दिस। नीना कहती है, आई मिस द एक्साइटमेंट ऑफ रिलेटिव्स अराइविंग फ्रॉम ओवरसीज विद चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स स्टफ्ड इनटू अ जायंट सूटकेस। यार ऐसे रिलेटिव तो मेरे नहीं थे कभी, मेरे तो थे वही जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम दैट दे कम इधर, दे डोंट बाय चॉकलेट्स फॉर मी, लाइक दे नेवर बॉट विच इज़ आई एम ग्लैड। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा कि हाँ वो सही था। बचपन में मन बहुत करता था, बट या दैट इज़ व्हाट इट इज़, बट वो पैसे हमेशा देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे मम्मी के साइड के या फिर मेरे पापा के साइड के, व्हेनेवर दे आर कमिंग दे ऑलवेज गिव मी लाइक इधर 1 रुपी, 5 रुपी का नोट, 10 रुपये का, 50 का, 100 का। 50 का आ गया तो मतलब मैं अपने आप को करोड़पति मानता था, लाइक आई एम ए मिलियनेयर, इस तरह से मैं एक्ट करता था। आप बताइए आपके साथ कुछ ऐसी स्टोरी है, दैट व्हाट अमाउंट ऑफ मनी फेल्ट यू दैट यू आर रिच इनफ नाउ लाइक यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। आखिरी मैसेज है हरप्रीत का, कहती है, आई मिस विंटर मॉर्निंग्स इन पापा टोटस है, आई मिस विंटर मॉर्निंग इन इंडिया वेयर एवरीवन सेट टुगेदर इन द सन ड्रिंकिंग चाय। यहाँ पे भी है एक्चुअली, आपका अगर सनरूम है, बट ऑफकोर्स द अमाउंट ऑफ पीपल हु वुड बी इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट वो उनका श्योरिटी नहीं है, बट दिस व्हाट इट इज। बट कूल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस। आप भी मुझे भेजिए फॉर द ऑफिस शाउट आउट, इफ यू वांट टू शाउट आउट समवन इन योर ऑफिस और व्हाट यू ईटिंग डू लेट मी नो, और कहाँ से ऑर्डर किया है वो भी मुझे बताइए। प्लस अगर कोई गाना, स्पेशल गाना इफ़ यू वांट टू डेडिकेट समवन, वो भी मुझे भेज सकते हैं। आई ट्राई बेस्ट टू डेडिकेट एनी ऑफ द सॉन्ग विच वी हैव इन द लाइब्रेरी। सो यस, आप अपना फोन उठाइए, 5599 द नंबर जहां से आप मुझे भेज सकते हैं।
3: लंच बॉक्स विद केतन,
4: मुझे पसंद है लड़का।
3: हम कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: Absolutely everything is on sale at Freedom. Get up to 60% off absolutely every sofa. That's all modular, recliner, fabric and leather sofas. Sale on now, only at Freedom.
3: Oh no, we'll be late.
4: We'll be all right. I'll call the AA.
5: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
6: This is an announcement from Civil Defence. Between 6 and 7 p.m. on June the 14th, we're testing the emergency mobile alert. Therefore, we advise against partaking in hide-and-seek and other hiding-centric activities. For more, here's Barry Kane from Hidden Arts New Zealand. Barry, where did Barry go? Anyway, on June the 14th, between 6 and 7 p.m., listen out for the emergency mobile alert.
3: Ah, what was that?
6: Oh, Barry, you were behind that curtain. Very devious.
7: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
8: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
9: बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
10: क्यों, क्या हुआ?
9: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
11: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
12: Non-stop Bollywood.
13: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
12: हम playing Bollywood's biggest hits.
14: Lunchbox with Ketan.
15: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना, कभी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
14: हम office shout out.
16: Welcome back. Office shoutouts में आपका स्वागत है. Thank you so much. Before I read all the messages, आप अपना time निकालते हैं and then you send the message over here. कौन सा है पहला message? अरे इतने message हैं, ढूंढ एकदम skip हो गया, नीचे चला गया. हीरा, कविश कहते हैं, one co-worker brought homemade gulab jamun and suddenly everybody became best friends. ये तो हर जगह होता है, हर जगह honestly. Eating butter chicken in the car because if I take it inside office everybody asks for a bite. Rahul, ये कहते हैं राहुल, ये मेरे को ऐसा क्यों साउंड कर रहा है, ये पहले भी आया है मैसेज, but I just have received, but they are giving the same answer. But thank you so much Rahul bhai, aapke liye bhi. Retirement update, I made lunch, fed the cat and now listening to your station louder than my husband snores. Usha Henderson se message karti, thank you Ushanti. Uske baad bro, I ordered healthy wrap and somehow also added large fries and milkshake. That is cool bro, you should enjoy this. Yep, while listening to my show. Construction site today feels like picnic. One guy brought massive pot of lamb curry for everyone. Wow, that is so cool, yeah. That is so cool. मेरे को actually वो experience करना, because मेरे को याद है जब मैं छोटा था, तब जब हमारा जब घर बन रहा था, so my dad used to take me and then you know everyone is eating together. मम्मी भी खाना बनाती थी, वो सबको fed करते थे, तो it was amazing यार, amazing. वो जो nostalgic वाला time, obviously तब उतना realize नहीं हो रहा, but now when I feel it, it's like wow, क्या सही time था ना, like कोई टेंशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं, बस यू जस्ट एंजॉइंग द मोमेंट. उसके बाद डूइंग डबल शिफ्ट टुडे, सो लंच इज लिटरली एनर्जी ड्रिंक एंड बेकरी सॉसेज रोल. Nathan का मैसेज आया है ये. मेक श्योर Nathan यू हैव अ गुड फूड एज वेल लेटर ऑन. आई नो दैट नाउ यू मे नॉट हैव डोंट हैव टाइम बट मेक श्योर आप आज हेल्दी खाना जरूर खाएं. दैट इज यू नीड टू हैव इट. वर्क फ्रॉम होम लाइफ मीन्स ईटिंग लंच ड्यूरिंग मीटिंग द कैमरा ऑफ. प्रियंका कहती है फ्लैट बुश से. ये बड़ा टेंशन वाला बात है. उसके बाद दो और मैसेज आए, फटाफट पढ़ लेते हैं वो भी. विशाल कहते हैं माय डैड स्टिल रिफ्यूज टू बाय लंच आउटसाइड बिकॉज घर का खाना बेस्ट होता है. वो तो बहुत ही सही है, वो तो बहुत ही सही है. एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे काफ़ी लोग एग्री करेंगे, घर का खाना इज़ द बेस्ट एंड हेल्दी एज वेल. बुला हम FM एंड केतन समबड़ी ब्रॉट फीजी स्टाइल. एक मिनट किधर गया, सॉरी. हाँ, somebody brought Fiji style chili to work today and now everyone crying but still eating it. That is so cool, yeah. That is so cool. Well, abhi phone aaya, phone bhi utha lete hain, baat kar lete hain. Hello.
0: Hello, Kirtan.
16: Kaise hain aap?
0: Hum theek hain.
16: Nice. Right hai?
0: One request.
16: Haan ji.
0: Could you play some proper songs for us older people instead of this monkey business for the younger? Yeah, we don't understand the, you know, play some real nice songs
16: for sure.
0: A change.
16: For sure. I'll try to find out and play some nice old song you reckon, right?
0: Yes. Perfect. Yes.
16: No,
0: you know,
16: worries.
0: There's older people listening to your station. It's not just the bloody youngsters.
16: Yeah,
0: you know,
16: yeah.
0: This breakdance is rubbish.
16: Yeah, no worries.
0: You don't understand a thing.
16: Yeah, I'll put that there's thing in note.
0: There's no meaning in these songs that you play.
16: No worries.
0: Yeah.
16: By the way, what do you have right now?
0: Thank you very much.
16: No worries. Thank you. Bye-bye.
0: Good man. Bye.
16: वेल यस, आप बस बने रहिए बिकॉज अभी लेटेस्ट खबर भी लेके आने वाला हूँ मैं और आपके चहीते गाने भी यहाँ पे चलने वाले हैं. सो बस आप रिकमेंडेशन के लिए मुझे भेजिए एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट सॉन्ग. अगर हमारी लाइब्रेरी में हुए तो डेफिनेटली वी विल गोइंग टू प्ले दैट. बट बिफोर दैट लिसन टू दिस अमेजिंग सॉन्ग. यार ये तुझको इतना सही गाना है, अरिजीत सिंह और सुनील चौहान की आवाज़ में. और ये कॉम्पिटिशन भी रन किया जा रहा है बाय प्रीतम जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर है खुद. और उन्होंने कहा है कि दिस कुड बी योर सॉन्ग एज वेल अगर आप इस पर प्रॉपर अच्छे तरीके से कवर अगर बनाएंगे और उनको पसंद आया तो वो रीशेयर करने वाले हैं. सो इफ़ यू आर अ सिंगर, इफ़ यू वॉन्ट टू परस्यू दिस एज अ करियर तो दिस कैन बी योर चांस. सो चांस को केयर करिए और टैग करना ना भूलिए ऑन इंस्टाग्राम पे जाके. एक बार आप उनकी प्रोफाइल जाके भी देख लेना आफ्टर माई शो. बट एंजॉय करो ये गाना.
12: Top hit of the hour. Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: केतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: वेलकम बैक यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। और बात करते हैं कुछ इवेंट्स की जो यहाँ पे हो रहे हैं हमारे बीच। वेल, ग्रैंड कीर्तन संध्या फीचरिंग रोनल सिंह रोनू एंड जयेश सेवक इज हैपनिंग दिस फ्राइडे 5 जून को एट वैदिक सेंटर पापा टोटो 7:30 बजे के बाद। आप पहुंच जाइए वहां पे उस इवेंट में और अच्छे से इस कीर्तन को एंजॉय करिए। वेल, टिकट जो है वो सिर्फ $20 के हैं एंड अवेलेबल फ्रॉम जस्ट फ्रेश मार्ट एंड शर्ली रोड पापा टोयोटो, यहां से आप जाके ले सकते हैं। श्रीमद् भगवत कथा भी होने जा रही है 5 से 11 के बीच। आप पहुंच जाइए महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्ण मंदिर 145 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरेस ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, जहाँ पे 25th एनिवर्सरी ऑफ श्री राधा कृष्ण मंदिर, जी हाँ, वो भी सेलिब्रेट की जा रही है। And then there is a Divya Shakti Charitable Trust 25 Onslow Avenue 108 Akhand Hanuman Chalisa Path organize kiya gaya hai 13 June ko, to aap pahunch jaiye, sare bhakton ko nimantran hai aur subah 7 baje se program shuru ho jayega aur prasad and mahaprasad will be served as well throughout the day. So yes, aap unhe follow bhi kar sakte hain, Divya Shakti Charitable Trust, but yes, aap bane rahiye। अभी थोड़ी देर में आपके लिए रोआ की अपडेट भी लेके आता हूँ।

0: वेलकम बैक। अभी बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की। आज के दिन क्या स्पेशल हुआ था, 2 जून 1917 की ये कहानी है कि बात है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यूजीलैंड के मर्चेंट शिप वायरुना के जर्मन कॉमर्स राइडर SMS वुल्फ ने कर्मेडिस आइलैंड के पास कैप्चर कर लिया। SMS वुल्फ और वायरुना की ये एनकाउंटर न्यूजीलैंड मैरीटाइम हिस्ट्री का सबसे ड्रामेटिक वॉर टाइम इंसिडेंट में से एक गिना जाता है। स्टोरी ऑलमोस्ट मूवी जैसी है। वायरुना ऑकलैंड से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी जब वॉल्फ के सी प्लान वॉल्फ चेन ने उन पे ऊपर फ्लाई करके सरेंडर मैसेज ड्रॉप किया। जब कैप्टन ने इनिशियली कंप्लाई नहीं किया तो एयरक्राफ्ट ने शिप के सामने वार्निंग बॉम्ब गिरा दिया। इसके बाद हैवीली आर्म्ड वॉल्फ नजर आए और वायरुना को सरेंडर करना पड़ा। वैसे जर्मन राइडर ने शिप का कार्गो, कोल और सप्लाईज ट्रांसफर कर लिए और वायरुना के 42 क्रू मेंबर्स को प्रिजनर बना दिया। कुछ दिन बाद शिप को स्कटलिंग चार्जेस और शेल फायर से सिंक कर दिया गया। एक अमेरिकन सूनर विंस्लो भी बाद में कैप्चर हो गए थे। वैसे SMS वुल्फ ships कैप्चर नहीं कर रहा था, उसने न्यूजीलैंड वाटर के पास माइंस भी ले किए थे और इन्हीं माइंस की वजह से लेटर शिप्स जैसे पोर्ट कैम्बला और वायमेरा भी सिंक हुए, जिससे लाइफ जो है वो खो दी थी। बढ़िया साहब, बने रहिए, अभी आपके लिए फटाफट से खबर लेके आऊंगा लेटेस्ट वाली थोड़ी देर में।
1: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Say no to windows crying condensation. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without DVS home ventilation. Call 0800 DVS DVS.
2: This is your invitation to a bloody important meeting. This National Blood Donor Week, put time in the calendar to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.
3: Lunchbox with Keithan.
4: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
5: चटनी शॉट्स।
6: चटनी शॉट्स में आपका स्वागत है। बात करते हैं फटाफट से न्यूज की। वो है पॉलिटिक्स से अपडेट लेके आया हूँ कुछ। प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि गवर्नमेंट का पोस्ट नेटल हॉस्पिटल स्टे अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और उन्होंने क्लेरिफाई भी किया है कि 3 दिन स्टे पॉलिसी फेस वाइज इम्प्लीमेंट होगा, ना कि इमिडिएटली सबके लिए। ट्रैवल सेक्टर में एयर न्यूजीलैंड ने अपने लास्ट मिनट चीपर रीजनल फेयर स्कीम्स को स्क्रैप कर दिया। ये डिसीजन एयरलाइन के फ्यूल कॉस्ट प्रेशर और ऑपरेशनल चैलेंजेस के बीच आया है। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि एल नीनो कंडीशन अब 95% लाइकली है, जिसका मतलब न्यूजीलैंड को इस विंटर में ज्यादा वार्म और ड्राई वेदर देखने को मिल सकता है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ब्लेक लेवली और जस्टिन बल्डोनी के बीच लीगल बैटल भी कंटिन्यू हो रही है। डिस्प्यूट कुछ क्लेम्स पहले सेटल हो चुके होने के बाद भी। वर्ल्ड न्यूज में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने क्लेम किया है कि फ्रेंच नेवी ने यूके की हेल्प से एक रशियन टैंकर को इंटरसेप्ट किया है, जिससे इंटरनेशनल टेंशन और बढ़ चुकी है। और स्पोर्ट्स की दुनिया में क्रूसेडर्स और ब्लूज के प्लेऑफ क्लैश के टिकट सिर्फ 20 मिनट में सोल्ड आउट हो गए, जो फैंस की एक्साइटमेंट को क्लियरली दिखाता है।

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Throwback.
2: चलिए अब अभी का जो सवाल है वो आपसे मैं पूछ लेता हूँ, जिसका जवाब मुझे 5599 पे देंगे. What food do you always bring back from India or Fiji or Pakistan or Bangladesh or any country you are from? Whenever you come to New Zealand, ऐसा कौन सा खाना है जो आप हमेशा लेके आते हैं? जल्दी से मुझे 5599 पे भेज दीजिए. Let's see क्या क्रिएटिविटी दिखाते हैं आप यहाँ पे.

0: विद केतन।
1: मुझे पसंद है लड़का।
0: हम
2: है दोस्तों, इश्क का दस्तूर ही कुछ ऐसा, जो इसको जान लेता है ये साला उसी की जान ले लेता है।
3: Yo, yo, honey sing.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल जान लेते हैं। आज 20 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है एंड 13 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। बारिश के ऑन एंड ऑफ रहेंगे लेकिन यस 5 mm तक रिकॉर्ड हो सकती है आज का सनसेट होगा 5:14 पे।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लंच बॉक्स शो में। वेल यस, आप मुझे सुन रहे हैं 12 बजे से एंड यस द कारवा जो है कंटिन्यू रहेगा अंटिल 3। जी हाँ, उसके बाद कॉफी ब्रेक में सैंडी विल बी वेलकमिंग यू एंड देन आफ्टर दैट रुजबे विल बी जॉइनिंग इन द ड्राइव शो। बट अभी के लिए एंजॉय करिए मेरा शो जिसमें बहुत ही खूबसूरत गाने चलाता हूँ। साथिया, ये वो वाला है या नहीं है अभी पता पड़ जाएगा। लेट्स प्ले द सॉन्ग एंड लेट्स लिसन कौन सा वाला साथिया गाना है ये।
0: बचाओ क्या

0: वेलकम बैक स्वागत करते हैं आपका आज के इस लंच बॉक्स में फिर से। जी हाँ, अभी वैसे थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था कि व्हाट फूड डू यू ऑलवेज ब्रिंग बैक फ्रॉम योर होम कंट्री, या फिर आप अपने घर से, इफ यू आर फ्रॉम द सेम कंट्री देन व्हाट थिंग यू ब्रिंग ओवर हियर व्हेन यू कम टू ऑकलैंड। उसके जवाब में थोड़ी देर में पढ़ूंगा, बट यस, लेट मी रिमाइंड यू दैट अभी थोड़ी देर में लंच टाइम रेंट लाइन की बातें भी होगी, सो यस, मेक श्योर आप 5599 पे उसके लिए भी मैसेजेस भेजें। साथ में बॉलीवुड की खबर भी लेने वाले हैं यहाँ पे, एंड ऑफकोर्स IPL इज ओवर नाउ, सो आई एम नॉट श्योर व्हाट अपडेट आई विल बी गिविंग इन द स्पोर्ट्स, बट देयर प्लेंटी ऑफ अदर स्पोर्ट्स एज वेल, तो हम देखते हैं अभी क्या लेटेस्ट चल रहा है, कौन से स्पोर्ट्स काफ़ी एक्टिव हो रहा है। फीफा फुटबॉल का भी होने वाला है बहुत ही जल्द, तो उसके बारे में बात होगी। बट ये सभी के लिए सबसे पहले बताता हूँ, रवि भाई कहते हैं एवरी ट्रिप टू फीजी आई ब्रिंग बैक, नॉट टू फीजी, फ्रॉम फीजी एक्चुअली, एवरी ट्रिप फ्रॉम फीजी आई ब्रिंग बैक पैकेट ऑफ फीजी स्टाइल मसाला। अरे वाह, क्या बात है, तो जब तक आप पहुंचते होगे घर पे आपका सूटकेस तो एकदम स्पाइस रैक बन जाता होगा। दैट्स सो कूल यार, दैट्स सो कूल। उसके बाद पता नहीं फीजी स्टाइल मसाला ये अलाउड है, एज एन नॉट श्योर यार। उसके बाद प्रिया कहती हैं फ्रॉम इंडिया इट्स ऑलवेज होममेड अचार फ्रॉम माय ग्रैंडमा, नथिंग इन ऑकलैंड टेस्ट क्वाइट द सेम। कुड बी द केस, थैंक यू प्रिया। विकेश कहते हैं आई ऑलवेज कम बैक विथ वे टू मैनी स्नैक्स, हाफ द लगेज इज क्लोथ्स एंड अदर हाफ इज फूड माई फैमिली टोल्ड मी टू ब्रिंग। अरे वाह, मैं तो लेके आता हूँ दो चीज़ें, एक तो पीनट्स, जो वो पीनट्स मुझे लगता है आई डोंट थिंक सो इन इंडिया एनी वन प्रिपेयर इट, और आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव ट्राइड, थोड़े मीठे मीठे होते हैं और गर्म भी होते हैं, मुझे बहुत पसंद है, मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद है। एंड ऑफकोर्स एट द सेम टाइम कुछ स्नैक्स भी लेके आता हूँ मैं, वो भी मेरे मतलब वहीं पे बनती है, होममेड होती है, तो वो सेव, दाने, दाल, मोटर, मूंगफली, ये सारी चीज़ें उसमें होती है, इतना यमी लगता है एंड थोड़ी स्पाइसी तो होती है, बट जब भी मैं यहाँ लेके आता हूँ मैं सर्व भी करता हूँ, यू नो, टू पीपल एंड दे ऑल्सो एन्जॉयड इट। अंजलि कहती हैं फॉर मी इट्स खाकरा एंड थेपलास फ्रॉम गुजरात, दे नेवर लास्ट मोर देन अ वीक आफ्टर आई गेट बैक। सही है। देव कहते हैं फीजी भुजा एंड स्पाइसी स्नैक्स, भुजा क्या होता, भुजिया आई गेस, भुजिया ही होगा ना, राइट। फ्रेंड स्टार्ट्स मैसेजिंग मी बिफोर आई इवन लैंड इन ऑकलैंड, क्या बात है, क्या बात है, नेक्स्ट टाइम उनको बताना मत कि आप लेके आ रहे, बोल देना कि भाई कुछ नहीं लाया मैं इस बार, मेरे कपड़े ऐसे थे, ये ज़्यादा हो गए थे, ये सब फलाना फलाना। बट एनीवेज, शिवानी कहती है होममेड लड्डूज फ्रॉम माय मम, एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोबेबली थिंक्स आई एम ओपनिंग अ स्वीट शॉप। ये बट चलो यार, थैंक यू सो मच आप सभी के। एक और मैसेज आया, जस्ट करण कहते हैं मैंगो पिकल फ्रॉम इंडिया, आई गार्ड इट लाइक ट्रेजर वंस आई गेट होम, दैट इज कूल, थैंक यू। एंड एक और मैसेज आया है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, वो कहते हैं होममेड घी, वो भी वो यहाँ लेके आते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस आपके, आप बस बने रहिए एंड कीप रिमेंबर दैट लंच टाइम रेंट लाइन के सेगमेंट के लिए भी आप मुझे मैसेज भेजिए 5599 पे। लंच बॉक्स विद केतन,
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं,
2: इसके पीछे हम,
3: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
4: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
5: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है, ये क्या क्या मतलब, क्या
6: बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
5: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने,
6: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
3: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
7: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस, फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून,
3: वीकडेज 6 to 10 a.m.
8: Shop and scan to win a share of $800,000 at Woolworths. Just buy 3 participating products and scan your everyday rewards card for your chance to win instant money off your shop. In store only at Woolworths. T's and C's apply.
9: Please use your imagination for the following ad.
10: If I won Powerball, the first person I'd tell would be, and would surprise all our friends by,
9: imagine winning $28 million this Wednesday. Play in store or online.
11: Oh my!
2: Grey South Road? Greater than ever.
11: South Auckland's buses just became a lot better.
2: Weymouth Road? Way better buses.
11: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses, and more.
2: Woody? No worries. MIT? A-OK.
11: Search AT Better South Auckland Buses for details.
2: Airport? Got your transport.
11: Then turn up and go.
12: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800 233 111.
13: Indelible Homes, your building expert.

0: यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
1: क्यों, क्या हुआ?
0: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
2: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. दैट्स 0800 564 424.
3: Lunchbox with Ketan.
4: मुझे पसंद है लड़का.
3: हम. Lunchtime Rant Line.
5: लंच टाइम रेंट लाइन में आपका स्वागत है. ये रहे मैसेजेस. सबसे पहला मैसेज आया है बुला केतन करुणा फ्रॉम माउंट रॉस्कल फीजी. इंडियन आंटीज कैन टर्न वन स्मॉल स्टोरी इनटू अ फुल टीवी सीरियल्स. वेब सीरीज शुरू हो जाती है उसकी तरह ना. राइट, वेल नॉट जस्ट अबाउट फीजी इंडियन, बट एक्चुअली मुझे लगता है लाइक अंकल्स भी होते हैं, नॉट जस्ट फीजी बट इंडिया का भी. इंडिया की भी ये स्टोरी है, उनका सिर्फ नाम खराब है बट एक्चुअली ना अंकल भी कम नहीं होते हैं. दे ऑल्सो कीप गोइंग, लाइक उनकी बातें भी कभी ख़त्म नहीं होगी. ऐसी होती है कभी कभी, ऐसा लगता है. काफ़ी ऐसे अंकल्स देखे हैं मैंने. केतन कहते हैं रोहिणी फ्रॉम सॉरी रोहिणी कहती है केतन फ्रॉम ईस्ट ऑकलैंड. एवरी इंडियन हाउस होल्ड हैज मेडिसिन ड्रॉअर विद एक्सपायर्ड टैबलेट्स फ्रॉम 2017. यार ये डेंजरस है भाई, ये तो नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है. अगर ये हो रहा है देन दे नीड टू रियली लुक इन टू इट. क्योंकि गलती से अगर किसी ने उसकी बहुत तबीयत खराब हुई और एकदम से उसने ले लिया तो इट गोना बी डेंजरस यार. तो इस चीज़ का ध्यान दिया. बट थैंक यू यार रोहिणी, थैंक यू फॉर योर मैसेज. समीर कहते हैं हाय केतन, पेट्रोल सो एक्सपेंसिव नाउ दैट आई एम अवॉइडिंग अननेसेसरी राइट टर्न. दैट इज कूल. टीना कहती है फ्रॉम पापाकुरा, पीपल हु डोंट म्यूट देमसेल्फ ड्यूरिंग जूम कॉल्स क्रिएट नेशनल टेंशन. उसके बाद वैसे आपके साथ कभी हुआ है ऐसा, लाइक जूम मीटिंग में हो सडनली आप माइक या कैमरा बंद करना भूल गए एंड देन यू जस्ट हैविंग योर ओन टॉक इन योर हाउस? तो आप मुझे बताइएगा अगर ऐसा कुछ किया है तो 5599 पे. जतिन कहते हैं, आखिरी मैसेज ये जतिन कहते हैं, इंडियन पेरेंट्स स्टिल बिलीव्स रीबूटिंग वाईफाई सॉल्व्स एवरी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम. यार ये तो मुझे भी लगता है यार, ऐसा नहीं होता है क्या? मतलब जैसे इंटरनेट स्लो चल रहा है तो वाईफाई को रीबूट कर लो और सॉर्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होता है क्या? मुझे बताइए एनी टेक्नीशियन या 5599 द नंबर जहां पे आप मुझे बताइए प्लीज.
3: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं रोआ की। रोआ के जरिए आप बहुत सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, सॉरी सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट सुन सकते हैं। आपको पता ही है काफ़ी म्यूजिक स्टेशन की प्लेलिस्ट है, हम वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जो भी आपको गाना सुनना है वो वहाँ पे सुन सकते हैं आप कम्प्लीटली फ्री। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि भाई डेटा तो जाएगा। वेल येस, जस्ट टू मेक इट क्लियर, हमारी टीम ने जो आईटी टीम या जो भी है उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने पता किया है दैट आप एक स्टोरी जब डालते हैं अपने एक 20 सेकंड की जो स्टोरी होती है वो अगर आपको आप डालते हैं आपके सोशल मीडिया पर इज इक्विवेलेंट टू लिसनिंग टू अस ऑन रोआ फॉर 1 आवर। जी हाँ, एक घंटे तक आप सुन सकते हैं उतने डेटा से। क्या बात है यार, अमेजिंग है। वेल येस, ये चीज़ पॉसिबल है और इतना सारा डेटा यूज़ नहीं करता है। बट फॉर यू, आप क्या करें, रो ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर ऐप स्टोर से और उसके थ्रू आप डाउनलोड करके हमें सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी, साथ में पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। लेटेस्ट पॉडकास्ट है शैंकी सिंह का, काफ़ी अमेजिंग रिव्यू मिल रहे हैं उसमें। सो यस, WWE स्क्रिप्टेड है या नहीं ये बातें उसमें बताई गई है। साथ में आपको ये भी पता पड़ेगा कि इस रेसलर WWE सुपरस्टार रेसलर शैंकी सिंह का जो एक्सपीरियंस रहा है सलमान खान की फिल्म भारत में, उसमें उसने रोल किया, उन्होंने रोल किया है वो कैसा रहा, तो ये भी आप सुनिएगा। 7 फुट टॉल है यार ये, 7 फुट किसको बोलते हैं यार, हम तो खैर 6 भी नहीं है, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम नहीं अपनी बात कर रहा हूँ, 6 भी नहीं और वो मतलब 7 है। मतलब मेरे को लग रहा है मैं स्टूडियो की जो डोर है उसको अंदर आने से भी ना मुंडी एकदम नीचे करके आने पड़ता होगा। बट एनीवेज, आप देखिए इस पॉडकास्ट को, बहुत ही अमेजिंग है। ड्राइव लिखिए और 5599 में भेज दीजिए और वो आपको बताएंगे, प्लस बॉलीवुड के एक्सपीरियंस उनके साथ क्या रहे वो भी इनसाइड स्टोरीज बताएंगे। साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अमेजिंग मेरे को पॉडकास्ट लगा। मुझे तो इसलिए अच्छा लगा बिकॉज मैं तो पहले दिन, क्योंकि एडिट ही मैंने किया है तो मैं तो हर एक चीज़ देखी और इतने अच्छे से देखी कि मैं एक परसेंट भी कहीं पे ट्रैक लूज़ नहीं किया मैंने। सो यस, आप सुनिए 5599 पे, आप ड्राइव लिख के हमें टेक्स्ट भेज दीजिए ताकि आप तक लिंक पहुँच जाए। एंड यस, वीडियो प्रोड्यूस्ड बाय एज इन लाइक वीडियो एडिटेड बाय मी फ्रॉम इंस्पायर मीडिया वर्क्स। आप कोई भी मार्केटिंग या फिर रियल स्टेट या इवेंट्स वीडियो कवर करने हैं तो यस, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे इंस्पायर मीडिया वर्क्स ये सर्च करिए अपने इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी। बट यस, अभी के लिए BF लिखिए, 5599 पे भी आप टेक्स्ट भेज सकते हैं फॉर ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा के कन्वर्जेशन को सुनने के लिए। जी हाँ,

0: What a song, Crazy Habibi and the Sin Munda. Guru Randhawa का नया गाना है ये, बहुत ही amazing है. But yes, अभी latest खबर भी पढ़ लेते हैं. अभी नए गाने से याद है, नई news भी तो पढ़नी चाहिए. New Zealand के wine industry से एक major fraud case सामने आया है. Hawke's Bay की well-known winery group Sacred Hill Vineyards के former director Richard Fordy पर 18 charges लगाए गए हैं by the serious fraud officers. वैसे SFO बोले तो सीरियस फ्रॉड ऑफिस का एलिगेशन है कि फॉडी ने कंपनी के वाइन इन्वेंट्री की वैल्यू को आर्टिफिशियल इन्फ्लेट करके लैंडर वेस्पेक से फंडिंग करके सिक्योर करने की कोशिश की. अथॉरिटीज के मुताबिक क्वार्टरली स्टॉक वैल्यूएशन स्प्रेडशीट्स और कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स में इन्वेंट्री की वैल्यू को ओवरस्टेट की गई थी. ये एलिजिड ऑफेंडिंग 2017 से 2019 के फाइनेंशियल ईयर्स के बीच हुआ था. बाद में सेक्रेड हिल्स वाइनयार्ड और सेक्रेड हिल मार्लबोरो वाइनयार्ड रिसीवरशिप में चले गए थे. इसके बाद रिसीवर BDO ऑकलैंड ने मैटर को SFO के पास रेफर किया. इंटरेस्टिंग बात यह है कि जुलाई 2025 में रिचर्ड फेडी को कंपनीज एक्ट ब्रीचेस के बाद 9 साल के लिए कंपनी मैनेजमेंट से बैन कर दिया गया था. और SFO डायरेक्टर कैरन चैंग ने कहा कि विटिकल्चर जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर्स में कॉरपोरेट फ्रॉड न्यूजीलैंड की इकोनॉमी और इंटरनेशनल रेपुटेशन दोनों के लिए रिस्क क्रिएट करता है. सीरियस एलिगेशन ये है कि कंपनी के वाइन स्टॉक की वैल्यू को ज़्यादा दिखाकर फंडिंग हासिल की गई. अब मैटर कोर्ट में है और अगला हियरिंग डेट 23 जून रखी गई है. सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या रिजल्ट आता है कोर्ट की तरफ से.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बड़ा लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
1: हाँ.

0: चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.
1: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.
2: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा. न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी. जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा.
3: मुझे भी
2: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड. खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए.
4: With Ketan.
5: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
4: इसके पीछे
6: लंच के मंच पे.
7: वेलकम बैक. चलिए बॉलीवुड की खबर ले लेते हैं. YRF स्पाई यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म, यानी कि यशराज फिल्म्स की अपकमिंग फिल्म अल्फा को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया रूमर्स में कहा जा रहा है कि फिल्म में इंडियन और पाकिस्तान एजेंट्स की फ्रेंडशिप का या जॉइंट मिशन जो है उसे दिखाया जाएगा, लेकिन मेकर्स के क्लोज सोर्सेज ने इस रिपोर्ट को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर लिया. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर एक ट्रेडिशनल स्पाई नहीं बल्कि एक असैसिन बताया जा रहा है. फिल्म को एक ओरिजिन स्टोरी के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा जहां एक यंग गर्ल को बचपन से ही एक डेडली किलिंग मशीन बनने के लिए ट्रेन किया गया है. सोर्स के मुताबिक फिल्म में इंडिया पाक फ्रेंडशिप अगले या एंगल या जॉइंट ऑपरेशन स्टोरी लाइन नहीं होगा, इसीलिए बजाय कहानी के एक लोन वॉल्फ असैसिन पर फोकस करेगी जो अपनी मिशन को खुद एग्जीक्यूट करती है. वैसे इंडस्ट्री रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि अल्फा YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म है और इसमें आलिया भट्ट के साथ शर्वरी भी नजर आएंगी. फिल्म को डायरेक्टर शिव रवायल डायरेक्ट कर रहे हैं और ये फ्रेंचाइजी की यूजुअल स्पाई फॉर्मूला से थोड़ा अलग डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं. सो लेट्स सी यार क्या रहता है, बिकॉज मेरे को अभी तक तो लग रहा था शायद ये जो कौन सी फिल्म थी रणबीर कपूर की वो थी ना जिसमें धुरंधर नहीं क्या नाम था रणबीर कपूर की एक फिल्म थी. अरे दिमाग से निकल गया. मैं सर्च कर लेता हूँ रणबीर कपूर फिल्म. तो एनिमल यस. अच्छा एनिमल पार्क है वो नई वाली, राइट. ये अल्फा अलग है. ओके मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था कि मुझे लगा शायद अल्फा जो है वो है, बट नहीं वो एनिमल पार्क है जो सेकेंड आने वाली है. बट यस लेट्स सी यार क्या रहता है. एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर वीडियो मूवी जो एक फीमेल बेस है, राइट.

0: क्या?
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों?
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूँ क्या?
0: क्या?

0: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम
2: ड्राइविंग यू होम
3: द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला।
5: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
6: अच्छा आप दिलजीत हो?
5: आए आए बताओगे यार।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Smart.

0: with Kaitan.
1: Kia ora, namaste, sat sri akaal, aapka swagat karte hain aaj ke is lunchbox show mein. मेरा नाम केतन है और आप मुझे सुन रहे हैं हम रेडियो से 104.2 FM. आप सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए. बहुत ही खूबसूरत मेरे डोलना ये गाना चलेगा सबसे पहले अरिजीत सिंह की आवाज में, एंड देन मूव योर बॉडी हार्ड कोर की आवाज में. पर यस, आप एंजॉय करते रहिए. इस आर में भी काफी स्पोर्ट्स की बातें होंगी, कुछ लेटेस्ट खबर के साथ साथ टेक टॉक की भी बात होगी. कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में जो आप यूज कर सकते हैं. पर यस, बने रहिए, सुनते रहिए मुझे अंटिल थ्री. तब तक के लिए शुरुआत करते हैं इस गाने से, मेरे डोलना.
0: बचाओ के

0: मूवी बॉडी हार्डकोर की आवाज में आपने गाना सुना है। चलिए बात करते हैं हम लेटेस्ट खबर की। वेल, लेटेस्ट खबर यह है कि नॉर्थलैंड में एक ट्रेजिक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है जहां एक वुमेन को प्रॉपर्टी पर डेड फाउंड किया गया है और अब पुलिस ने इस केस को मर्डर इन्वेस्टिगेशन डिक्लेयर करते हुए एक पर्सन को चार्ज में लिया है। नॉर्थलैंड रीजन की बात है। वैसे पुलिस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन रैपिडली स्टार्ट की गई और सीन को सिक्योर कर दिया गया है जैसे ही बॉडी डिस्कवर हुई। अथॉरिटीज ने कंफर्म भी किया है कि मैटर में एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है और सस्पेक्ट को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा। अभी तक पुलिस ने डिटेल्ड सर्कमस्टांसेस पब्लिकली फुली डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन उनका कहना है कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट लग रहा है और पब्लिक सेफ्टी का इमीडिएट वाइडर रिस्क नहीं है। इन्वेस्टिगेटर्स, नेबर्स, विटनेसेस और फॉरेंसिक एविडेंस के थ्रू केस को बिल्ड कर रही है ताकि एग्जैक्ट टाइमलाइन और केस ऑफ डेथ एस्टैब्लिश हो सके। सो यस, इन सिंपल शब्द, नॉर्थलैंड में एक वुमेन की डेथ को लेकर मर्डर चार्ज फाइल हो चुका है और अब पूरे केस कोर्ट प्रोसेस और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंडर है। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच क्या अपडेट आता है इस बारे में।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: पटोटियों के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
1: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
0: सोना संसार पापा ट्विटर, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा ट्विटर।
2: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा ट्विटर। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
3: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIG SWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
4: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. 1 New Zealand. Let's get connected.
5: This is an announcement from Civil Defence. Between 6 and 7 p.m. on June the 14th, we're testing the emergency mobile alert. Therefore, we advise against partaking in hide-and-seek and other hiding-centric activities. For more, here's Barry Kane from Hidden Arts New Zealand. Barry, where did Barry go? Anyway, on June the 14th, between 6 and 7 p.m., listen out for the emergency mobile alert.
6: Ah! What was that?
5: Oh, Barry, you were behind that curtain. Very devious.
7: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने,
8: कभी भी कहीं भी, मस्त मलंग जोड़ो। लंच बॉक्स विद केतन।
9: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
8: इसके पीछे
7: हम
8: स्किप या रीप्ले।
10: चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी चीज की जो हमारे शहर में होने जा रहा है। इंडियन लिंक थिएटर कंपनी प्रेजेंट्स बलून डॉग। क्या है ये बलून डॉग? वेल, ऑकलैंड के स्टेज पर एक पावरफुल और इमोशनल थिएटर एक्सपीरियंस आने वाला है। बलून डॉग रिटन बाय जेकब राजन एंड जस्टिन लुईस और डायरेक्टेड बाय जस्टिन लुईस। वेल, अवार्ड विनिंग एक्टर जेकब राजन MNZM वापस आ रहे हैं इस वर्ल्ड प्रीमियर प्रोडक्शन के साथ, जो इंस्पायर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर की फेमस स्टोरी कबूलीवाला। वेल यस, ये जो काबुलीवाला है उससे ये जो फेमस स्टोरी है वो ली गई है। सेट इन मॉडर्न डे ऑकलैंड, ये स्टोरी है एक पाँच साल की छोटी बच्ची और एक लोनली माइग्रेंट वर्कर्स की अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप की, जो धीरे धीरे फैमिली के हिडन ट्रुथ्स और सोसाइटी के अनकंफर्टेबल रियलिटीज़ को एक्सपोज करती है। वैसे इस प्रोडक्शंस में मिलता है आप सभी को लाइव ओरिजिनल म्यूजिक्स, डांस, स्टोरी, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और इमोशनल थिएटर मैजिक भी। सो आफ्टर अ सोल्ड आउट प्रीव्यू, ये शो एक बार फिर ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करने जा रहा है, जहां थीम्स हैं ह्यूमैनिटी, कनेक्शन, करेज और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। वेन्यू है, आप नोट डाउन कर लीजिए, क्यू थिएटर ऑकलैंड, 3rd to 20th June, यानी कि कल से शुरू हो जाएगा 20 जून तक। टिकट आप ले सकते हैं iticket.co.nz पे जाके। सो यस, एक और चीज हमारे लिसनर के लिए, विन अ डबल पास। वो कैसे करना है आपको? बस बी बोले तो बलून डॉग का इनिशियल है ये BD विद योर आंसर टू एंटर द ड्रॉ। जी हाँ, तो काफी बढ़िया लगेगा आपको वैसे ये। जल्दी से मुझे BD लिख के 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो सकें। और ड्रॉ में शामिल हुए हैं और अगर आप जीत गए तो एक डबल पास आपको मिलेगा और आप वो डबल पास लेके क्यू थिएटर पहुंच जाइए 3 से 20 जून के बीच। सो जल्दी से BD लिखिए और मुझे 5599 पे भेज दीजिए।
8: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंचबॉक्स। और कुछ लाइफ से रिलेटेड वाली बातें करते हैं। रात को विविड ड्रीम्स के बाद सुबह थकावट फील होना एक्चुअली काफ़ी कॉमन होता है। काफ़ी एक ने मुझे सवाल भी किया था कि ऐसा क्यों होता है। वेल, इसका रीज़न जो है मेन वो है ड्रीम से ज़्यादा स्लीप साइकिल ऑफ ब्रेन एक्टिविटी टाइमिंग होता है। न्यूरोसाइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा ड्रीमिंग REM स्लीप यानी कि रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में होता है,

फ्रेगमेंटेशन, छोटी छोटी जगह की इंटरप्शन, यानी कि आप बहुत ही डीप स्लीप में सडनली कोई दरवाज़ा खटखटा दे बाहर असली में, या फिर आपकी नींद खुल जाए उसकी वजह से भी हो सकता है और ब्रेन प्रॉपरली रीसेट नहीं हो पाता उस चक्करों में। वैसे थकान का रीज़न ड्रीमिंग नहीं होता बल्कि स्लीप स्टेज से रॉन्ग टाइमिंग पे जगना होता है। दैट मीन्स कहते हैं कि डिस्टर्ब ना करो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई इंसान सो रहा होता है उसे डिस्टर्ब ना करो, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट उसके ब्रेन पे भी पड़ता है, जो उसका उठने के बाद जो माइंड होगा वो भी काफ़ी कंट्रोल करने लग शुरू हो जाता है, यानी कि आपका ब्रेन थक जाता है, आपका ब्रेन टायर्ड होगा, या फिर हो सकता है आपको इरिटेट भी बना दे, जैसे कि हम देखते हैं बच्चों को। एंड द सेम थिंग आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग नाउ दैट जब इहान सोता है तो वी मेक श्योर दैट वी डोंट डिस्टर्ब हिम, बिकॉज उसको अगर डिस्टर्ब कर दिया उसकी नींद खुल गई गलती से भी, जो कि बच्चों की होती है, काफ़ी काफ़ी कमज़ोर होती है उनकी नींद, काफ़ी कच्ची नींद होती है, कच्ची आई थिंक इज़ द राइट वर्ड, तो वो होने से उनकी एकदम नींद खुल जाती है और उसके बाद इतना चिड़चिड़ापन होता है, वो रोते रहते हैं, ऐसा करते हैं और हमें समझ में नहीं आता भाई कैसे क्या क्या करें, दूध पिलाएं तो भी वो नहीं पीते हैं, दे जस्ट प्ले अराउंड, तो ये सी सारी चीज़ें होती हैं। बट यस, आप मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस अगर ऐसा हुआ है तो आपका क्या रिएक्शन होता है, हाउ डू यू हैंडल इट, हाउ डू यू केयर, हाउ डू यू नो टेक केयर अबाउट इट, जब एकदम से कोई आपका आपके एकदम गहरी नींद से एकदम उठा ले एंड देन द होल थिंग इज़ गॉन, सो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जवाब होना चाहिए यहाँ पे। सो यस, डू लेट मी नो, आप 5599 पे मुझे बता सकते हैं। बट यस, कोई लाइफ में ऐसा बहुत ही वियर्ड सा, आई डोंट वांट टू कनेक्ट इट विद योर फैमिली और एनीथिंग, बट बहुत ही वियर्ड और वियर्ड वाला यू नो सपना आपके जहन में कभी आया है, कोई अगर है ऐसा तो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ 5599 पे और बताइए मुझे। हाँ, सो लेट्स सी कौन क्या मैसेज भेजता है, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट।

वेल यस, चलिए स्पोर्ट्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्क्वाड फाइनलाइज कर दी है, जिसमें एक इंटरेस्टिंग बैलेंस दिख रहा है। 17 होम बेस्ड प्लेयर और कुछ ओवरसीज बेस्ड एक्सपीरियंस प्लेयर का मिक्स। टीम सिलेक्शन का मेन आइडिया है ये राय कि डोमेस्टिक ईरानियन लीग यानी कि पर्शियन गल्फ प्रो लीग के इन फॉर्म प्लेयर्स को भी चांस दिया जाएगा। साथ ही यूरोप में खेल रहे की इंटरनेशनल को कोर स्ट्रक्चर में रखा जाएगा। रिपोर्ट्स ने यह भी सजेस्ट किया है कि ईरान की स्क्वाड स्ट्रेटजी का फोकस स्टेबिलिटी और फेमिलियरिटी पर है, यानी कि कोच से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल सिलेक्शन की जगह ऑलरेडी कोऑर्डिनेटेड ग्रुप के को प्रेफर किया जाएगा। टीम ने क्वालिफाइंग फेस में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है और इसी मोमेंटम को वर्ल्ड कप तक कैरी करना एम है। ईरान ट्रेडिशनली वर्ल्ड कप में डिसिप्लिन, डिफेंसिव सेटअप और क्विक काउंटर अटैक्स के लिए जाना जाता है और इस स्क्वाड में भी वही कोर आइडेंटिटी मेंटेन की गई है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो ईरान ने एक मिक्स स्क्वाड बनाई है जिसमें लोकल टैलेंट्स को बूस्ट किया जा रहा है और एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ बैलेंस बनाया जा रहा है ताकि वर्ल्ड कप में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिले और बेटर रिजल्ट निकले। लंच बॉक्स विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। 80s के रेट्रो गाने।

0: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
1: This is your invitation to a bloody important meeting. This National Blood Donor Week, put time in the calendar to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.
2: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
3: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
4: हम
2: Tech Talk.
5: वेलकम बैक आपका स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लंच बॉक्स शो में. टेक टॉक की बात करेंगे, पर उससे पहले एक थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं. यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे काफी टाइम हो गया है, बातें नहीं हुई हैं यहाँ पे.
6: गुड आफ्टरनून केतन,
5: कैसे हो आप? देखो इंट्रोड्यूस तो करने दो, वो तो होता है ड्रम बजेंगे टाटा टाटा.
6: देखो इंट्रोड्यूस होने किया जाता है जो कभी कभी आता है.
5: हाँ तो मेरे शो में तो कभी कभी आते हो.
6: सो कैसा रहा
5: बीच में? वीकेंड भी आ गया ना, लॉन्ग वीकेंड. हाँ, तो कभी कभी हो गया ना.
6: कभी कभी हो गया
5: क्योंकि मेरा शो कल रात को भी था, आप नहीं थे.
6: ओ हाँ,
5: आप ही लिख के आप ही भूल गए.
6: मेरा काम है रोस्टर पे नाम लिखना.
5: खुद ही भूल गए. अच्छा मैंने चेक कर लिया,
6: देखी जाएगी.
5: नहीं नहीं सही है. कैसा आपका वीकेंड?
6: बढ़िया बढ़िया यार. ये वेदर मतलब हम ऑफिशियली विंटर में आ चुके हैं, पता है, 1 जून से.
5: अच्छा
6: ऑफिशियली विंटर जून में शुरू हो चुकी है.
5: क्या था?
6: उससे पहले ऑटम थी.
5: अच्छा यस. हाँ. ये भी होता है
6: तो मतलब डेट्स के हिसाब से जैसे होता है. अच्छा. ना कि इस डेट से ऑफिशियली विंटर शुरू हो चुकी है. जून में ऑफिशियली विंटर शुरू हो चुकी है.
5: क्या बात है. वैसे आज ही मैंने एक अपडेट भी दिया था कि इस बार की जो ठंड है काफी गर्म रहने वाली है. मतलब इस बार की ठंड गर्म रहेगी और ड्राई भी रहेगी.
6: ओ ऐसा क्या?
5: हाँ और आज के दिन आया और आज ही बारिश हो रही बहुत.
6: हाँ.
5: बोले किस एंगल से ड्राई लग रही है भाई?
6: एंगल से ड्राई लग रही है.
5: खुद वेदर फोरकास्ट बोले हम भविष्यवाणी करें तो क्या लेके करें.
6: इनफैक्ट कल से मैंने नोटिस किया है, कल से ऑफिशियली जब ठंड शुरू हुई है कल से वार्म टेम्परेचर है.
5: हाँ एक्चुअली
6: इतनी ठंड नहीं लग रही है.
5: मतलब मैं आज ये पहन के आया हूँ भर भर के, जो ये आपको दिख रहा है जैकेट वैकेट,
6: वो
5: तो लग रहा है मैं कुछ ओवर तो नहीं हूँ.
6: हाँ वो वेदर देख के लगता है कि ठंड होगी, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो तो इट्स बिट ह्यूमिड एंड इट्स बिकॉज ऑफ द रेनी वेदर.
5: ये अप्रैल जैसा सीजन लग रहा है, लाइक ठंड जैसी नहीं लगी है.
6: हाँ, पड़े कि अभी देखते हैं धीरे धीरे.
5: बट यहाँ के नहीं यार, जो एक्सपीरियंस मैंने किया है आपने कहाँ किया है यार?
6: कौन सा वाला
5: ठंड? इन्वरकागल से आया ना मैं.
6: ओ तुम इन्वरकागल, रहने दो. जो एक्सपीरियंस मैंने किया है तुमने कहाँ किया है यार?
5: क्या
6: पंजाब की ठंड देखी है जाके तुमने?
5: पहुंच गए
6: वही तो.
5: इंडिया कहाँ पहुंच गया अभी तो लास्ट के 10 ऐसे तो मैं बोलूंगा
6: की ठंड पड़ती है.
5: मैं क्वींसटाउन रहा हूं अब बोलो, वहां पे तो बर्फ गिरती है, बर्फ गिरती है.
6: चलो
5: बट यहाँ पे है कोई who would like to share with us कि the coldest experience उन्होंने क्या है ठंड anywhere from the world?
6: कितना degrees तक, कितना minus degrees तक आप गए हैं? Extreme temperature आपने कितना देखा है ठंड में? Let's see.
5: हाँ,
6: 5599 पे मैसेज करके भेजो या कॉल भी लेते
5: call
6: हो
5: भी करेंगे.
6: ओके ठीक है,
5: आज तो कॉल उठाएंगे. 0800-004-866 पे आप मुझे कॉल करिए.
6: 0800-004-866 एक्सट्रीम ठंड आपने कितने टेम्परेचर की देखी? व्हाट अबाउट यू केतन, कितना टेम्परेचर रहा?
5: मैंने आई थिंक -18 और
6: -18. क्या बात कर रहे हो, कहाँ पे?
5: क्वींसटाउन में.
6: क्वींसटाउन में -18 कैसे गए?
5: मतलब एक वो बना हुआ ना कुछ जिसमें आइस का सब मिलता है.
6: वो तो मैंने भी देखा है.
5: मैंने एक्सपीरियंस किया है.
6: हाँ
5: मैंने,
6: लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट ऐसा नेचर वाली.
5: नेचर वाइज तो लाइक ओवरऑल -6 तो रात को बारिश हो रही थी तो हमारे क्या जब जहाँ मैं रहता था वहाँ पे बकेट या कुछ छोटे मोटे होते थे ना, तो वो बेसिकली जो रोड वाला पार्ट था वो इतना प्रॉपर नहीं था, तो वहाँ पे पानी भर जाता था रात में ऑब्वियसली. तो सुबह उठ के देखते थे वो पूरा एकदम जमा हुआ होता था.
6: ओह नो.
5: वो छोड़ो, कार हमको लिटरली 15 से 20 मिनट तक चालू रखनी पड़ती थी बिफोर वी गो टू वर्क.
6: ओके.
5: ना तो दिखता था, सेफ भी नहीं होता. वैसे किसी का मैसेज भी आया है -7 इन्वरकागल में, इन्होंने एक्सपीरियंस किया है. मोहितेश
6: मतलब इनको
5: इतनी ठंड लग रही है, इनको कॉल करके मैं नहीं बता सकता, कॉल करके लिख के भेज देता हूँ.
6: मेरे को लगता है -5 -4 तक तो मैं भी गई होंगी.
5: कहाँ पे?
6: इंडिया में.
5: इंडिया में जाता है इतना?
6: हाँ ना, पंजाब,
5: मतलब पंजाब में इतना जाता है?
6: जब एक्सट्रीम की ठंड पड़ती है तो बहुत ही कड़ाके वाली ठंड पड़ती है जो आपकी हड्डियों को लगती है, ऐसी ठंड पड़ती है। लाइक दिसंबर जैन इज, अभी थोड़ा चेंज हो चुका है वेदर वहाँ पे जब मैं लास्ट गई थी वहाँ पे, बट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप दिसंबर जैन वाज एक्सट्रीम एक्चुअली में।
5: बट आई फील पंजाब के, मैं गया नहीं कभी पंजाब में, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ की ठंड स्टिल हैंडल कर सकते कंपेयर टू व्हाट, मैं कंपेयर नहीं कर रहा ऑब्वियसली, बट मैं सिर्फ जो मैंने बातें सुनी है, जैसे मेरे साथ मेरा एक दोस्त है वो पंजाब से,
6: जहां पे स्नो होगी वहां पे थोड़ा
5: बेटर होता है, उतनी ठंड नहीं पड़ती एक्चुअली,
6: उतनी ठंड नहीं पड़ती है,
5: क्योंकि जो मेरा दोस्त है वो पंजाब से ही है, तो उसने मुझे बताया, वो मेरे साथ ही इन्वकागिल में रहा है, तो वो बोलता है कि इन्वकागिल की जो ठंड है इज वर्स्ट बिकॉज वेट ठंड है।
6: मेक सेंस,
5: वहां पे बारिश नहीं होती इंडिया में ठंड के टाइम,
6: वो ड्राई ठंड है।
5: सेकंड जो मेरा अभी ऑकलैंड फेस करेगा, और सेकंड इज विंडी बहुत है इन्वकागिल।
6: ओह यस,
5: दैट इज द रीजन व्हाई आई एक्चुअली डोंट वांट टू स्टे इन इन्वकागिल ड्यूरिंग विंटर टाइम। समर इज गुड, समर इज गुड, बढ़िया। दैट्स या,
6: आप भी शेयर कीजिए आपने एक्सट्रीम टेम्परेचर कब देखा है, कितना देखा है।
5: हाँ जी, 5599 नंबर जहां पे आप मुझे बता सकते हैं आपके।
6: तुम्हारा टेक का हो गया?
5: टेक का हो गया, ढूंढना पड़ेगा।
6: ओके,
5: और टेक के बाद टेक्नोलॉजी की बात को छोड़ के हम नेचर वाली टेक्नोलॉजी की बातें करने लग गए थे।
4: It's Valentine's Day. Groove.

0: आवाज गूंजेगी। हम
1: थ्रोबैक। वेल, जाने का टाइम आ चुका है, बट जाने से पहले एक अपडेट देता हूँ रिगार्डिंग टेक, जो मैंने बताया नहीं था उस टाइम। न्यूजीलैंड की एआई स्टार्टअप डेटा मास्क एक्चुअली उन्होंने एक फ्रेश फंडिंग राउंड में $7 million रेस की है, और कंपनी के फाउंडर ने क्लेम किया है कि उनका प्रोडक्ट एआई स्पेस में इवन ओपन एआई के न्यू फ्री टूल से बेटर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक डेटा मास्क एक डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी फोकस्ड प्लेटफॉर्म है जो कंपनीज के सेंसिटिव डेटा को मास्क या एनोनिमस करता है ताकि वो सेफली एआई सिस्टम्स में यूज हो सके। आइडिया सिंपल है, रियल कस्टमर डेटा लीक या मिसयूज के जो रिस्क है उसके बिना एआई ट्रेनिंग पॉसिबल बन सके। फाउंडर का आर्ग्यूमेंट ये है कि जब जनरेटिव एआई टूल्स रैपिडली इवॉल्व हो रहे हैं तब बिजनेसेस को सबसे बड़ा चैलेंज डेटा सेफ्टी प्लस कंप्लायंस का है, और यही पर डेटा मास्क आप अपना एज क्लेम करता है। उनका कहना है कि उनका सिस्टम एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी और कंट्रोल प्रोवाइड करता है जो जेनरिक एआई टूल से ज्यादा रिलायबल हो सकता है। कंपनी ने यह भी रिपोर्ट की है कि रीसेंट ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रही है, कस्टमर्स ग्लोबल लेवल पर ऐड हो रही है, और यूएस मार्केट अब उनकी मेजर रेवेन्यू सोर्स बन रही है। वेल, एक ये पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया, मैंने एक पॉडकास्ट सुना था एआई का ही, और उसमें एक शख्स ने बोला था कि एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा, एआई को जो यूज करने वाला है वो आपकी जॉब खाएगा। तो अगर आपके जहन में हो रहा है कि यार एआई आने वाली, अब हमारी नौकरी जाने वाली है, ये सब है, एआई हमारी जॉब खा लेगा, सो यस, एआई विल नॉट गोइंग टू स्टील योर जॉब, इट विल बी द पर्सन हु हैज अपडेटेड हिमसेल्फ फॉर एआई, या फिर जो कंट्रोल कर रहा है वो आपकी जॉब खाएगा। सो यस, अगेन वी आर इन द सिचुएशन जहां पे अभी भी ह्यूमन ही कंट्रोल कर रहे हैं एआई को, सो आप भी जितना जल्दी हो सके अपने आप को अपडेट करें, सीखें, कोई कोर्स कर लें वहां से जितना भी हो सके, क्योंकि कोर्सेज भी इतने महंगे नहीं है ऑनलाइन जितने भी आते हैं, वो सीख लीजिए, अपने आप को अपडेट करिए ताकि एटलीस्ट यू विल नो कि एआई क्या क्या पॉसिबिलिटीज कर सकता है। और अभी तो एआई ऑनेस्टली बताना हर एक फील्ड में आ चुका है, सो इट्स बेटर फॉर यू टू क्विकली अपडेट योरसेल्फ एंड लर्न सो दैट कल के कॉम्पिटिशन में आप पीछे ना रह जाएं। बट यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम 12 से 3, तब तक के लिए मैं निकलता हूं, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।

0: with Ketan.
1: मुझे पसंद है लड़का.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
0: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक.
3: Good afternoon, I'm KM Adams with the latest at 3. In Northland, a homicide investigation is underway following the death of an Opononi woman over the weekend. A 26-year-old man has been charged with murder, arson and a variety of other charges. A scene examination of an address and Whanganui continues today. TSB and Heartland Bank are set to join forces. Under a proposed merger, Heartland Group would buy all of TSB's shares for $620 million. State Highway 2 at Waiawaka Gorge is closed for the rest of today. State Highway 3 through the Awakino Gorge has reopened after a geotechnical assessment. At the top of the South Island, State Highway 6 is open to all traffic under a 50k temporary speed limit. Customer-facing workers are claiming violence and aggression is becoming normalised. These concerns launched a national survey. ShopCare's Selena Armstrong says many working in retail or call centre jobs have accepted abuse as part of the job.
4: We know that's not resilience. It's a real warning sign, and it means that harm is occurring and going unaddressed.
3: 20 minutes is all it took for the general public tickets to sell out for the Crusaders Blues Super Rugby Pacific qualifying final on Saturday. Further limited tickets go on sale in a couple of hours. The Crusaders are 4 from 4 in their new home. And star Chiefs playmaker Damian McKenzie is on track to return for Saturday night's home playoff against the Reds. McKenzie had been sidelined since mid-May after suffering concussion.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
5: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 19.6 डिग्रीज है और आज को ओवरनाइट 12 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है.
0: The beat of Bollywood.
6: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: Coffee break with Sandy.
5: 3:02 हो चुके हैं और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ है कॉफी ब्रेक में और उसके बाद मेरा साथ यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा. सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? हाउ वॉज योर लॉन्ग वीकेंड? लॉन्ग वीकेंड के बाद क्या आपने सीख लीव ली है या फिर नॉर्मल है, बैक टू वर्क आ चुके हैं या वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं? व्हाट इज द सिनेरियो शेयर कर सकते हैं यहाँ पे. एंड वेदर के बारे में देख रही थी कि जून शुरू हो चुका है, लाइक वी आर ऑफिशियली इनटू द विंटर्स राइट नाउ. लाइक ऑफिशियली विंटर शुरू हो चुका है, लेकिन ठंड की ओर तो अगर देखा जाए तो अलग ही टेम्परेचर हो चुका है. वार्म टेम्परेचर हो चुका है, इट्स लाइक 19.6, लाइक ऑलमोस्ट 20 डिग्रीज आउटसाइड, ऐसा टेम्परेचर हो रखा है. ये ऑफिशियली विंटर की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है. बट यार कल पता चला था जब रेनी वेदर रहा था तो लग रहा था कि यस सर्दियां आ चुकी है, बिकॉज यहाँ पे सर्दियों में मैक्सिमम टाइम बारिश ही रहती है. वेल आपको कुछ शेयर करना है अभी यहाँ पे ज़रूर शेयर कर सकते हैं. कुछ वीकेंड पे आपने किया, बिंज वॉच किया, कहीं पे गए, हाउ वाज इट? 5599 इज़ द नंबर.

3:06 हो चुके हैं एंड मैसेज आया है, आकांक्षा वेंट टू जू विद फैमिली ओवर द लॉन्ग वीकेंड. नाइस, जू बहुत ही सही रहता है अपने बच्चों को अगर आप वहाँ पे लेके जाते हैं, बिकॉज बच्चों के बीच में एनिमल्स को लेके बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है. सो जू इज़ वन प्लेस जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं जिन एनिमल्स को वो टीवी पे कार्टून्स वगैरह में देखते हैं. दो वहाँ पे काफ़ी एनिमल्स अभी गायब भी हो चुके हैं, जैसे कि एलिफेंट जो वहाँ पे पहले अंजलि थी उस एलिफेंट का नाम था, सेकंड एलिफेंट का मुझे नाम याद नहीं है उसका क्या नाम था. एंड दे आर माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया बाय द वे, वो भी ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं. बट द मेन रीज़न फॉर देम टू गो टू ऑस्ट्रेलिया वॉज कि एलिफेंट्स कभी भी अकेले नहीं रह पाते हैं. सो उनको यू नो डिप्रेशन हो जाता है एक्चुअली में जब एलिफेंट कोई अकेला हो, तो इसलिए उनका हर्ड में रहना, अपने साथियों के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड देर वॉज ओनली वन एलिफेंट लेफ्ट ओवर हेयर, सो इसीलिए इस रीज़न से एक्चुअली में उसे ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर दिया गया है. बट जू इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग प्लेस, वहाँ पे स्पेशली बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें हैं. वहाँ पे अभी वो डायनासोर डिस्कवरी ट्रैक जो है इज़ ऑन इट्स वे बैक एज वेल. सो वेंसडे 10 June से वहाँ पे कुछ 20 प्री हिस्टोरिक डायनासोर्स फ्रॉम 15 डिफरेंट स्पीसीज, नॉट लिटरली डायनासोर्स ऑफ कोर्स, बट जो बनाए गए हैं, इट विल बी देयर. दे मूव एंड रोर एज वेल बाय द वे. सो या जुरासिक पार्क टाइप ऑफ फीलिंग इन अ मिनी वर्जन आप वहाँ पर जाके ऑकलैंड जू में जाके लेके इंजॉय कर सकते हैं 10 June से. सो दिस डायनासोर डिस्कवरी ट्रैक विल बी देयर 10 June से. वैसे ये ओपन होता है एवरी डे 9:30 AM टू 4:30 PM. सो कुछ पब्लिक हॉलीडेज में कभी कभी वो बंद होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द जू इज़ ओपन ओनली. सो काफ़ी अट्रैक्शंस वगैरह भी होती है. मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि जब भी आप ऑकलैंड जू में जाने का प्लान बनाओ, देर इज़ दिस वेबसाइट जहाँ पे उनकी वेबसाइट ही है जहाँ पे आप एक्टिविटीज़ चेक कर सकते हैं, बिकॉज कुछ कुछ एनिमल इनकाउंटर्स की एक्टिविटीज़ होती है डिफरेंट टाइमिंग्स पे. सो इफ़ यू वॉन्ट टू गो अलॉन्ग विद दैट टाइमिंग टू एक्सपीरियंस इट, तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग्स जो है ये कर सकते हैं.

0: Dia.
1: Streaming on Rover.
2: At Big Save, we work hard every day to keep our furniture and bed prices low, so you can always get New Zealand's best value furniture and beds. And today, you can save big. Save big on lounge suites. Lounge suites now from $19.99. Save big on sofas. Sofas from $6.99. Save big on beds. Get the snow bed. Queen, king or super king, only $9.99. Save big on recliners. Get two recliners for $6.99, only at Big Save.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz.
4: Otara, oh yeah.
5: South Auckland's buses just became a lot better.
4: Grey South Road, now even greater.
5: With better bus routes, more frequent buses, and more.
4: Weymouth Road, way better buses.
5: Search AT, Better South Auckland Buses for more.
6: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार.
7: क्यों? क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
8: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 08

0: Hollywood's most wanted.
1: Gundi ghar jao ya seedha andar aao.
2: Main laun apna A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
3: 3:17 हो चुके हैं. वैसे शिरेल का मैसेज आया है, उनके अंकल आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सतीश, अ वेरी वेरी हैप्पी 60th बर्थडे टू यू. नायडू वर्क्स, सतीश नायडू उनका नाम है, हु वर्क्स फॉर शार्प्स NZ. सो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. आपकी फैमिली मेम्बर्स की ओर से आपके ढेर सारी विशेज यहाँ पर आई है. मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपने कुछ देखा है ओवर द वीकेंड, कुछ बिंज वॉच किया है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. एक मैसेज आया है, सपना, इन्होंने मैसेज किया है कि इन्होंने देसी ब्लिंक देखा एंड इनके मी टाइम के दौरान ओवर द लॉन्ग वीकेंड इट वॉज वेस्ट ऑफ टाइम. मेरा मन किया देसी ब्लिंक के ऊपर क्लिक करने के लिए. सो देसी ब्लिंक क्या है बेसिकली, अगर आपने पहले दुबई ब्लिंक देखा है तो दुबई ब्लिंक में क्या होता है कि जो बहुत ही रिच फैमिलीज़ है दुबई की, उनके लाइफस्टाइल क्या करते हैं वो सारी चीज़ें बेसिकली इस सीरीज़ में होता है. तो ऐसे ही देसी ब्लिंग है. सो देसी ब्लिंग में बहुत सारी जो हमारे सेलिब्रिटीज़ है बेसिकली, जो पैसे वाले हैं, उनके लाइफ के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, एंड नॉट एग्जैक्टली कई पैसे वाले हैं लेकिन फिर भी है. फिलहाल उसमें करण एंड तेजस्वी जो है ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, बिकॉज अपेरेंटली दे वर कपल जब वो बिग बॉस में आए थे. बिग बॉस में जाने से पहले वो कपल नहीं थे, लेकिन बिग बॉस में ही वो कपल बने. उसके बाद बाहर आए, दे वर एवरीवेयर. अभी वो देसी ब्लिंग में है बिकॉज वहाँ पे प्रपोज़ किया गया है तेजस्वी को, करण ने वहाँ पे किया है. एंड देन उसकी जो एक्स है अनुषा, वो वहाँ पे स्टोरीज डाल रही है. सो क्वाइट मेस चीज़ें हो रही है बेसिकली. तो मैंने तो ये रील स्टोरीज वगैरह में देखा है, लेकिन मैंने देसी ब्लिंग का मन किया था क्लिक करने का, बट देन लाइक वेस्ट हो सकता है. बट थैंक्स अपना रिव्यू के लिए. आपने अगर देसी ब्लिंग देखा है, बिकॉज कईयों को इंटरेस्ट होता है ऐसे रियलिटी शोज़ देखने में, तो जैसे बिग बॉस होता है, तो आप भी बताइए यहाँ पे. अगर आपने देसी ब्लिंग देखा है तो आपका कुछ डिफरेंट व्यू है इसके बारे में, वो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. वेल, मैंने ओवर द वीकेंड क्या देखा इसके बारे में भी शेयर करूँगी. एंड एक वॉक भी मैंने की बेसिकली. इट्स अ वॉक ट्रेल, वेरी ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ईजी कह सकते हैं बेसिकली इसको. तो इसके बारे में भी शेयर करूँगी. स्टे ट्यून्ड.

है जवानी तो इश्क होना है, जो कि वरुण धवन की आने वाली मूवी है। इसी मूवी का ये गाना रीमेक गाना एक्चुअली में आप यहाँ पे सुन रहे थे। 3:22 फिलहाल हो चुके हैं। एंड ट्रेल्स के बारे में बातें करते हुए, वैसे एक ट्रेल है जो कि ओवर द वीकेंड मैंने की थी, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, अपर निहो टूपू डैम वॉक। सो डैम एक्चुअली है वहाँ पे, इसे देखने के लिए पहुँचे थे। वेताकले रेंजेस में ये है। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं सीनिक वॉक है वेस्ट ऑकलैंड में। सो ये जो है इसका डिस्टेंस तकरीबन 5-6 किलोमीटर रिटर्न का है, तो आपको 1.5 से 2.5 आवर्स रिटर्न लग सकता है, डिपेंडिंग आपकी स्पीड के ऊपर एंड कुछ और चीज़ों के ऊपर भी। डिफ़िकल्टी इसका ईजी टू मॉडरेट है, सो मोस्टली ग्रेवल वहाँ पर रास्ता है एंड कहीं कहीं पे थोड़ा स्लिपरी भी हो सकता है। फैमिली फ्रेंडली है बिकॉज मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ को बच्चों के साथ वहाँ पे जाते हुए देखा था, लेकिन फिटनेस लेवल फिर भी थोड़ा बहुत चाहिए। बिल्कुल टॉडलर्स को लेके आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। हाईलाइट क्या है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो रास्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल सी वाटरफॉल आती है, सो यू कैन एक्चुअली गो डाउन वहाँ पे पत्थर के ऐसे रस्ते बने हुए हैं वाटरफॉल को इन्जॉय करने के लिए। दो समर में वो वाटरफॉल आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, अभी पानी ठंडा है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब आप आगे जाते हैं हिस्टोरिक डैम की ओर आप बढ़ते हैं, सो वहाँ पे जो रस्ते में जो वाटर का पूरा सीन है, इट्स वेरी काम, वेरी वेरी काम। वाटरफॉल के आगे जो पानी है बहुत ही ज़्यादा काम है, पता ही नहीं चलेगा कि रास्ते में पानी बह रहा है, इतना ज़्यादा काम है। लेकिन जब आप चलते जाओगे तो एंड में पिकनिक स्पॉट भी आता है, लेकिन उससे पहले डैम आती है। सो डैम जो है उसकी खुद की एक हिस्टोरिक हिस्ट्री भी है, इट्स ओवर 100 ईयर ओल्ड एक्चुअली में। ये जो डैम है ये 14 अप्रैल 1923 में ओपन हुई थी। सो ऑकलैंड की सेकेंड ओल्डेस्ट वाटर सप्लाई डैम है ये। सो 23 में इसने अभी अपना 100th birthday सेलिब्रेट किया था। सो अपर निहो टूपू जो है ये हाईएस्ट एलिवेशन डैम है इन ऑकलैंड्स वाटर सप्लाई नेटवर्क। तो जब आप उस डैम के वहाँ पे टॉप पे पहुँचते हो तो यू गेट दैट फीलिंग कि आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे खड़े हो उसकी एलिवेशन की वजह से। एंड ऑल्सो कोल्डेस्ट डैम एज वेल। ऑन एन एवरेज ये जो डैम है ये अराउंड 22 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर सप्लाई करती है डेली टू ऑकलैंड्स। So that's enough to fill roughly 9 Olympic-sized swimming pools every day. So it's completely off-grid. Cool iska factor ye hai ki small hydro turbines and solar panels jo hai ye generate karte hai electricity to run its communication, lighting, control, wo sari ki sari cheeze. Aur is dam ko banane ke liye 8 saal lage the, jo construction thi shuru hui thi World War I ke time pe. लेबर शॉर्टेज हुई, मटेरियल शॉर्टेज हुआ, फ्लडिंग हुई, डिफ़िकल्ट अरेंज थे, लेकिन धीरे धीरे डैम कंप्लीट हुई। 8 साल लगे। एंड वहाँ पे जाके जब आप इस डैम को देखोगे ना, आपके माइंड में डेफिनेटली ये थॉट आएगा कि यार मतलब उस समय पर भी ऐसी कंस्ट्रक्शन की जा सकती थी विदाउट मच टेक्नोलॉजीज, विदाउट मच फैसिलिटीज अवेलेबल, बिकॉज नीचे वहाँ पे ट्रैम का रास्ता है। अभी फ़िलहाल मेरे को नहीं लगता वो ट्रैम एक्टिव है, अगर एक्टिव भी होती होगी तो कुछ काम के लिए एक्टिव होती होगी। सो ट्रैम का रास्ता है जहाँ से मटेरियल वहाँ पे वो लेके जाते थे। सो एक ट्रेजिक कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री भी है इसकी। कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ब्लास्टिंग एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से एक रॉक इट फ्लू अबाउट 100 मीटर इनटू द साइट ऑफिस, जहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो थे वहाँ पे इंजर्ड हुए थे और एक कॉन्ट्रैक्टर की वहाँ पे जान भी गई थी उस समय पर। But yeah, it's a must visit dam, I will say, because जाने का रास्ता is very easy. So पीहा रोड की ओर जब आप जाते हैं तो वहीं पे रास्ते में ये डैम आपको नज़र आएगी। So wear sturdy shoes because काफ़ी sections जो है डैम्प होते हैं, especially अगर इस weather पे जाने के लिए आप सोच रहे हैं तो rainy weather तो रहते ही है। Go and take your water and snacks because वहाँ पे कोई facilities नहीं आपको मिलेगी कुछ खाने पीने के लिए। सो चेक द करंट ट्रैक कंडीशंस बिफोर यू हेड आउट, इसके लिए सही रहेगा वो। लेकिन हाँ, डैम के आगे जाके और आप 5-6 मिनट वॉक करते हो तो वहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा एरिया उन्होंने बना के रखा है जहाँ पे पिकनिक स्पॉट है। सीनिक नहीं है वो एरिया जहाँ पे पिकनिक स्पॉट वाला एरिया है, जस्ट कि वहाँ पे बहुत सारे बेंचेस बनाए हैं, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे बैठ के थोड़ी सी ब्रेक ले सकते हैं, देन यू कैन हेड बैक। सो बेसिकली वो डेड एंड है और वहाँ से देन आप वापस जाते हो। सो अगेन अगर आप जाना चाहते हैं, इसका नाम है अपर निहो टूपू
डैम वॉक जो कि वेताक्री रेंजेस में है। ट्रेल चेक।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
2: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड।

दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

रेडियो जी ट्रैक ऑफ सुनो निगम आप यहाँ पर सुन रहे थे ओरिजिनल वर्जन एक्चुअली में आप यहाँ पर सुन रहे थे। 20 मिनट बाकी है 4 बजने में 4 बजे ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो जाएगा। एंड नाउ इज अ चांस टू विन अ टिकट। ट्राइविजन एंटरटेनमेंट ट्राइविजन इवेंट्स आपके लिए एक एंटरटेनमेंट नाइट लेके आने वाले हैं जिसमें कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर ये लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। द ग्रेट कॉमेडी नाइट जहाँ पे कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव परफॉर्म करेंगे। ऑकलैंड में पहली बार, न्यूजीलैंड में पहली बार ये दोनों आने वाले हैं। सो काफ़ी टिकट्स जो है ये जा भी चुकी है, तो अपनी टिकट्स भी जल्दी से खरीद लीजिए अगर आपको इंतज़ार नहीं करना है। बुक माई इवेंट डॉट को डॉट एन जेड पे जाके। बट नाउ इज़ अ टाइम टू विन अ टिकट, गेट इन द ड्रॉ टू विन अ टिकट। 18 जुलाई को ये जो इवेंट होने वाला है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में, अगर आपको टिकट जीतनी है तो आपको करना क्या है, ड्राइव स्पेस आपको ये बताना है कि कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर दोनों ने साथ में मिलकर कौन से कॉमेडी शो में काम किया है। कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर ने साथ में मिलकर कौन से कॉमेडी शो में काम किया है, बस इतना सा जवाब आपको देना है ड्राइव कीवर्ड के साथ ऑन 5599। और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पर इस इवेंट की टिकट आपके नाम हो सकती है, जो कि विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है। यू नो टिकट्स के लिए जब आप खरीद रहे होंगे टिकट तो रिमेंबर आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है। बट फॉर नाउ यहाँ पे जीतने के लिए बहुत ही सीधा सा सवाल है कि कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर ने दोनों ने मिलके कौन से शो में साथ में काम किया है, दोनों ने कौन से शो में कॉमेडी की है साथ में। बेसिकली 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ लिख के भेज डालिए।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 19.3 डिग्री और आज का ओवरनाइट 12 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। मौसम आज का ऑलमोस्ट फाइन है, हल्की से बारिश होने के चांसेस रहेंगे। इट्स वार्म टेम्परेचर, सनसेट आज का 5:14 पर।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Ooper. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
3: चार बज के दो मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. अभी से लेके 7 बजे तक मेरा और आपका साथ रहने वाला है. रुजबे इज नॉट वेल टुडे, सो रुजबे इज नॉट हियर. लेकिन होपफुली वो जल्दी से ठीक हो जाएगा और आपके साथ दोबारा से शामिल हो जाएगा. सो कैसे हैं आप और आपका आज का डे कैसा जा रहा है सो फार? हाउ इज द ट्यूजडे गोइंग ऑन? यू नो शॉर्ट वीक कई बार बहुत ही जल्दी निकल जाता है, लेकिन आपके काम पे कैसा होता है? अगर आपका काम ऐसा है जहाँ पे आप एडमिन वर्क काफ़ी ज़्यादा करते हैं, क्या ऐसा होता है आपके साथ कि जब लॉन्ग वीकेंड आता है तो आपका काम भी उतना ज़्यादा पाइलअप हो जाता है, या फिर इट इज़ जस्ट टू ईजी फॉर यू? शेयर कीजिए. 5599 इज़ अ नंबर जहाँ पे ये आप शेयर कर सकते हैं. वैसे एक फ्री ई वेस्ट ड्रॉप ऑफ होने वाला है बहुत ही जल्दी. यू नो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप अगर ई वेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके रिलेटेड काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, काफ़ी प्लेसेस होते हैं जो ऐसा ओपन रखते हैं कि जहाँ पे आप जाके ई वेस्ट जो है ये आप डंप कर सकते हैं अपने घर से, जिसमें वायर्स वगैरह, पुराने लैपटॉप, फ़ोन वगैरह, ये सब अगर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपको डंप करनी है तो. पहले ये कहाँ पर होने वाला है इसके बारे में भी बताऊँगी. अगर आपके पास भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन से याद आया, बाय द वे मैंने नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी, इसका नाम है लेडीज़ फर्स्ट. इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी. सो लेडीज़ फर्स्ट में ये बंदा है जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है, वो CEO है, बनने वाला है एक्चुअली में, लेकिन देन वो किसी लेडी की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसा उसका ऐसा करेक्टर दिखाया है. लेकिन अचानक से क्या होता है कि लाइफ जो है उसके साथ एक गेम खेलती है. वो कहीं पे गिरता है, जब उसको होश आती है तो उसके आसपास की सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, मतलब सोसाइटी चेंज हो जाती है. सोसाइटी ऐसी बन जाती है जहाँ पे हर जगह पे लेडीज़ ही रूल कर रही हैं, मतलब अभी जो काम लेडीज़ कर रही हैं वो मैन कर रहे हैं, और जो मैन कर रहे हैं वो लेडीज़ कर रही हैं. टोटल उल्टा फेर हो जाता है सोसाइटी का. सो अगर आप ऐसा गुड टाइम पास चाहते हैं तो इट्स अ नाइस मूवी. एक्चुअली में 1.5 आवर की ये मूवी है जिसका नाम है लेडीज़ फर्स्ट.

4:12 हो चुके हैं फिलहाल, ड्राइव शो आप यहाँ पे सुन रहे हैं। यू नो फिनलैंड का नाम हमेशा से रहा है वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज में। नाउ अभी समझ में आता है कि फिनलैंड वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री क्यों है। एंड वन अनदर रीजन इज बिकॉज वहाँ पे लोगों को एजुकेट करने के लिए फ्री कोर्सेज जो है, ये नए नए सब्जेक्ट के ऊपर भी फ्री कोर्सेज होते हैं। जैसे न्यूजीलैंड में भी काफ़ी सारे फ्री कोर्सेज होते हैं, अगर आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपस्किल करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे आपको ढेर सारे यहाँ पे फ्री कोर्सेज मिलेंगे। लेकिन फिनलैंड ने अभी क्या किया है, एआई को लेके फ्री कोर्स किया था। कुछ टाइम पहले इन्होंने अपने जितनी भी जनता है फिनलैंड की, इसके लिए फ्री एआई का जो कोर्स है ये ऑफिशियली लॉन्च किया था, जो कि लोग वहाँ पे जाके कर सके। बिकॉज एआई इज समथिंग जिसको आज के टाइम पे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एआई अगर आपको आता है तो आप अपने काम में और भी बेहतर हो सकते हैं, और डेली लाइफ में आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं, एआई हर फील्ड में आने ही वाला है। वो होता है ना कि टाइम से ही उस चीज़ को सीखना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट आया तो इंटरनेट टाइम से ही हर किसी ने सीखना शुरू कर दिया, बिकॉज इंटरनेट के ज़रिए काम ईजी होते गए। AI इंटरनेट जैसा नहीं है, नेक्स्ट लेवल है, बट स्टिल इसी वे से AI के थ्रू एजुकेशन, AI को अपनाना, एजुकेशन लेना इसकी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिनलैंड ने सोचा, अपनी पूरी जनता के लिए इसने फ्री कोर्सेज कर दिए। बट नाउ फिनलैंड ने क्या किया है, इंटायर वर्ल्ड के लिए ओपन अप कर दिए हैं अपने कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री। सो दिस इज़ योर चांस एक्चुअली। ओवर 2 मिलियन पीपल अक्रॉस मोर देन 170 कंट्रीज हैव ऑलरेडी लर्न द बेसिक्स ऑफ AI, नॉट थ्रू द फिनलैंड, बट वैसे भी बेसिक्स ऑफ AI थ्रू काफ़ी फ्री कोर्सेज। इन्होंने क्या किया है, एक कोर्स ओपन अप किया है जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ AI। वहाँ की यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी, जो कि फिनिश फर्म्स है, इन्होंने इस यूनिवर्सिटी में इन्होंने काम किया, और ये जो फ्री कोर्स है ये इन्होंने क्रिएट किया कम्प्लीटली फ्री। कोई कोडिंग मैथमेटिक्स किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा वो भी $0 में। द वन टू स्टार्ट विद इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू AI, जो कि आप अपने अपने पेस पे करते हो, जहाँ पर AI क्या है, मशीन लर्निंग क्या होती है, नेटवर्क कैसा वर्क करता है, इस चीज़ के बारे में है। देन द सेकेंड पार्ट इज बिल्डिंग AI विच गोज डीपर फॉर anyone who wants it. So फिनलैंड ने टीच किया 1% ऑफ इट्स पॉपुलेशन विद द फंडामेंटल्स, देन दे ओपन टू द वर्ल्ड इन 26 लैंग्वेजेस। तो मैं एक्चुअली में मैंने इनकी वेबसाइट चेक की है, वेबसाइट का नाम है elementsofai.com, एज सिंपल एज दैट। तो मैं गई इनकी वेबसाइट चेक करने के लिए कि ये रियलिटी है कि नहीं है। एक्चुअली में रियलिटी है, वहाँ पे आप अपनी कंट्रीज सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जो कंट्रीज लिस्ट में है उस लैंग्वेज में अगर आप सीखना चाहते हो तो वो लिस्ट में आप स्क्रॉल कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे आपको समझ में आती है वो इस लिस्ट में लैंग्वेज नहीं है। बट ग्लोबल के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, विच इज़ ग्लोबल इंग्लिश आई गेस, तो वहाँ पर क्लिक करके यू कैन स्टार्ट योर कोर्सेज। देन पार्ट वन मेरे को सामने दिखा रहा है इंट्रोडक्शन टू AI, एंड पार्ट टू इज़ बिल्डिंग AI। तो मैंने इंट्रोडक्शन टू AI के ऊपर क्लिक किया, इट आस्क फॉर द लॉगिन। सो जब आप लॉगिन करेंगे देन यू हैव अ चैप्टर, चैप्टर वन है व्हाट इज़ AI, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर 3, 6 चैप्टर्स है बेसिकली इसके, एंड 6 चैप्टर्स में पढ़ाई भी है और कुछ एक्सरसाइजेस भी है, मतलब कि सवाल भी है। इट्स गुड एक्चुअली, मेरे को लगता है कि अगर फ्री में कोई नॉलेज आपको मिल रही है तो वाई नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप में से कोई है जिसने AI कोर्स फ़िलहाल किया है एंड यू हैव व्यूज़ अबाउट इट, इसके बारे में आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, तो कॉल कीजिए 0800 हम पर। अगर आपने AI कोर्स रिसेंटली किया है, कहीं से भी किया है, ऑनलाइन आपने खुद पढ़ा है इसके बारे में, प्रॉपरली आपने ये कोर्स किया है, तो ज़रूर यहाँ पर कॉल करके बताइए 0800 हम पे। यू नो एक्चुअली में हम अनफिल्टर्ड में हमने एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया है इसको लेके, जो बहुत ही जल्दी आपके साथ हम रिलीज़ करेंगे। अभी यू नो टाइम लेके हर एक पॉडकास्ट हम प्रॉपर एडिट करके आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये जो पॉडकास्ट है हमने AI के बारे में रिकॉर्ड किया है, एक ऐसे पर्सन के साथ जो कि न्यूजीलैंड में एक्सपर्ट है AI में, एंड इन्होंने फुल ऑन इन्फॉर्मेशन दी है कि AI आपकी लाइफ में थ्रेट है
या बेनिफिट है फुल उन्होंने बताया है, स्पेशली न्यूजीलैंड की मार्केट को लेके हम चलते हैं अगर। एंड अगर आपको एआई के बारे में पढ़ाई करनी है तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो बहुत ही जल्दी ये पॉडकास्ट भी आपके लिए लेके आएंगे, बट फॉर नाउ वी हैव ऑलरेडी वन पॉडकास्ट जो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जब आप हमारे पॉडकास्ट सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि यू आर इंटरेस्टेड, तो बाकी पॉडकास्ट भी हम आपके लिए लेके आते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आपको ये करंटली पॉडकास्ट सुनना है जो हमने शैंकी सिंह, दिलशेर शैंकी फ्रॉम WWE के साथ रिकॉर्ड किया है, टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स अराउंड WWE, ये अगर आपको सुनना है तो ड्राइव इज अ कीवर्ड आपको ऑडियो भी मिल जाएगा। एंड अगर आप देखना चाहते हैं पॉडकास्ट तो आपको वीडियो भी मिल जाएगा, जो कि हमारे खुद के केतन कुमावत इन्होंने एडिट किया है।

सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
1: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
0: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
1: Available at selected branches. T's and C's apply.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
0: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं. फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है. इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम. परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV. जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स. आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले. फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994939 और विजिट legalassociates.co.nz.
7: The Beds R Us King's birthday sale is on now with up to 60% off selected sleepyhead beds like Serenity Breeze, Queen Size, now from 1499. Don't miss the King's birthday sale at Beds R Us Manikau and Pukekohe.
8: Are you ready to go home?
9: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only 799. On sale now.
10: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
11: 421 at the moment यहाँ पे हो चुके हैं. थोड़ी देर पहले जिस AI कोर्स के बारे में बात कर रहे थे, जिस वेबसाइट पे ये फ्री अवेलेबल है, मैसेज भी आया है. इस वेबसाइट का नाम है elementsofai.com. सो अगर आप चेक करते हैं और अगर आप कंप्लीट करते हैं तो डू लेट मी नो अबाउट इट.
12: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
13: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
14: Now,
10: brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी की थी जो कि साइन की थी रणवीर सिंह ने, बट देन दे सेड कि कुछ भी डिफरेंस, अब क्रिएटिव डिफरेंस था क्या था वो नहीं पता है, कहानी क्या थी, बट ही बैक्ड आउट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, एग्जिट कर लिया प्रोजेक्ट को, एंड जिसकी वजह से वहाँ पे जो फ्रिक्शन थी शुरू हुई, बिकॉज फरहान अख्तर का कहना था कि फाइनेंशियल कंपनसेशन जो है ये रणवीर सिंह को देना पड़ेगा, जो उन्होंने एक अमाउंट बताई. अब रणवीर सिंह कह रहे थे कि मुझे इतनी बड़ी अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इतनी प्रोडक्शन हुई नहीं थी इस मूवी की शूटिंग के लिए, लेकिन वो कुछ कंपनसेशन देने को रेडी है. तो फरहान अख्तर हार नहीं माने, उन्होंने बोला कि नहीं मुझे इतनी ही कंपनसेशन चाहिए बिकॉज इतना प्रोजेक्ट का में काम हुआ था. सो बेसिकली फाइनेंशियल कंपनसेशन डिस्प्यूट जो थी वो वहाँ पे शुरू हुई बिटवीन द एक्टर एंड एक्सल एंटरटेनमेंट. एक्सल एंटरटेनमेंट जो है ये फरहान अख्तर की प्रोडक्शन कंपनी है. सो इन दोनों के बीच में ये उस समय पर डिस्प्यूट शुरू हुआ जो कि ओवर द टाइम चलता आ रहा है. बहुत सारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स साथ में बैठे, सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन रिजॉल्व नहीं हुआ. अब रिसेंटली लास्ट वीक में जो न्यूज़ थी वो ये आई थी कि द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉयज़, जिसका नाम है FWICE, इन्होंने डिसाइड किया है कि वो रणवीर सिंह को कुछ साल के लिए बैन कर देंगे जब तक कि वो कंपनसेशन नहीं करते या फिर एक सिचुएशन में नहीं आते. सो इन्होंने ये एक्चुअली में है क्या, ये जो फेडरेशन है ये एक्चुअली में वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिप्रेजेंट करती है फिल्म एंड टीवी वर्कर्स को इन इंडिया. सो वहाँ पे जो ये रिप्रेजेंट करती है थाउजेंड्स ऑफ प्रोफेशनल्स को, जिसमें टेक्नीशियंस आते हैं जो कैमरा, लाइटिंग, साउंड ये सब संभालते हैं. इनके अंदर स्पॉट बॉयज़ भी आते हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट भी आते हैं, उनकी यूनियन है बेसिकली हम ये कह सकते हैं. एडिटर्स, सेट डिज़ाइनर्स, कॉस्ट्यूम स्टाफ ये सब आते हैं, जूनियर आर्टिस्ट, क्रू मेम्बर्स. तो इनका की रोल क्या होता है कि टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट एंड वर्किंग कंडीशंस एंड इंडस्ट्री की गाइडलाइंस को सेट करना, वेज स्टैंडर्ड्स को सेट करना, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पर इंटरवीन करना बिटवीन वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर्स. दे कैन इशू बैन्स और वार्निंग्स अगेंस्ट प्रोडक्शंस या इंडिविजुअल्स इन एक्सट्रीम केसेस. एंड सो काफ़ी बार जो इंडस्ट्री में स्ट्राइक्स होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ पर दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन जो आगे आके सॉल्व करने की कोशिश करती है जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे कि सॉरी अभी हुआ है बिटवीन एक्टर एंड प्रोड्यूसर, कॉल्स फॉर द बैन. ये बैन को इम्पोज कर सकते हैं बट वो लीगली गवर्नमेंट बैन नहीं होता है. सो प्रैक्टिस में दे कैन इम्पोज अ बैन बट इट्स नॉट अ लीगल गवर्नमेंट बैन इन इंडिया के हिसाब से. सो व्हेन दे से कि वो किसी एक्टर को या फिर डायरेक्टर को बैन करने वाले हैं, सो इट्स मेंबर्स, वर्कर्स आर इंस्ट्रक्टेड, जो उनके मेंबर्स होते हैं, नॉट टू वर्क विद दैट पर्सन. तो उसमें चाहे वो क्रूज आ गए, टेक्नीशियंस आ गए, जूनियर आर्टिस्ट आ गए, तो वो सब जो है उस पर्सन के साथ, उस एक्टर या डायरेक्टर के साथ कभी भी कोलैबोरेट, जब तक उन्होंने वो टर्म बोली है जैसे कि 5 साल, वो 5 साल तक उनके साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते, उनके साथ कोई भी काम एक्चुअली में वो नहीं कर सकते हैं. ये एक कलेक्टिव बॉयकॉट होता है बाय फिल्म वर्कर्स, नॉट अ लीगल प्रोहिबिशन नहीं होती है ये. दे लीगली cannot stop an actor from working in the films या OTT में, उनको रोक नहीं सकते हैं. वो सिर्फ अपने members को कह सकते हैं कि तुम लोग इस person के साथ अभी काम इतने साल तक काम नहीं करेंगे, उनके contract cancel नहीं कर सकते हैं, उनको punishment through courts या police नहीं दिलवा सकते हैं. So अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये last week में हुआ. अब यहाँ पर उसके बाद news आती है over the weekend, I think Friday को news आई थी कि सलमान खान ने अब फाइनली इंटरफेयर किया है बिटवीन रणवीर सिंह एंड फरहान अख्तर, दोनों के झगड़ा जो है ये सॉल्व करने के लिए. बट वो एक र्यूमर निकली, जो सोर्सेज है उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सलमान खान ने अभी तक उनको अप्रोच नहीं किया है, जो मुझे लगता है कर देना चाहिए. बिकॉज मुझे लगता है कि अगर वो सलमान खान या शाहरुख खान, इन दोनों में से कोई एक फिगर इंटरफेयर करती है ना, ये फटाफट सॉल्व हो जाएगा. नाउ ये जो हुआ है इस किस्से के बाद, टीपी अग्रवाल प्रोड्यूसर जो है, इन्होंने पटिशन फाइल की है अगेंस्ट FWICE, जिन्होंने बॉयकट किया है रणवीर सिंह को. इन्होंने कोर्ट में एक्चुअली में जो पटिशन है ये फाइल की है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का राइट नहीं बनता है किसी भी एक्टर को बॉयकट करने के लिए
अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने राइट्स

प्रोडक्ट्स वहाँ पे यूज़ करने के लिए। सो टी पी अग्रवाल जो है ये एक वेटरन प्रोड्यूसर भी है एंड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का ये पार्ट भी रह चुके हैं, जैसे कि ही बीन प्रेजिडेंट ऑफ फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया 4 सेपरेट ओकेजन्स में एंड ही वॉज ऑल्सो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के भी ये प्रेजिडेंट रह चुके हैं। तो बेसिकली बहुत सारी प्रोडक्शन कंपनीज को ये रिप्रेजेंट करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि कोर्ट नोटिस जो है ये इश्यू किया गया है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है ये कोलैबोरेशन के ऊपर ही तो थ्राइव करती है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो मैटर है उसका जो नेचर है वो प्रॉपर लीगल एंड प्रोफेशनल चैनल के थ्रू जाना चाहिए, ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना चाहिए कि भाई कल से इस पर्सन के साथ हम काम नहीं कर सकते हैं और बाकियों को भी बोल रहे हैं कि इसके साथ काम नहीं करना है, कंसिडरिंग वो एक्टर फिलहाल बॉलीवुड में काफ़ी अच्छा कर रहा है। सो फिलहाल उन्होंने अभी इंटरफियर किया है और ये जो कंट्रोवर्सी है, जो कहानी है, एक न्यायी मोड़ ले लिया है। डोंट नो ये जो चीज़ें हैं ये सॉल्व होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है, और मे बी अगर होती भी है तो वही माइट सी फरहान अख्तर एंड रणवीर सिंह टुगेदर इन डॉन 3। मुझे तो वही सोल्यूशन लग रहा है कि दोनों को जो है अब डॉन 3 कर ही लेनी चाहिए, एक डॉन 3 मूवी ही ये सारा का सारा किस्सा अभी सॉल्व कर सकती है।

0: Bukit Koi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Puri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
4: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
3: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे
0: पड़ा है।
1: 6 to 10 a.m.
0: Hum Accurate Traffic.
5: Innovative Interiors, your luxury wardrobe specialist.
6: A few showers, northwesters and a low of 12 for Auckland. Getting heavier on the southern, it's pretty slow. Sylvia Park through to Green Lane for traffic heading into the city. Southbound, not too bad. 38 to Manukau, 57 to Drury at the moment. On the southwestern, heavy from Massey Road to Mangere Bridge and slow Puhinui through to the southern interchange.
5: Innovative Interiors, crafting wardrobe elegance. Discover more at innovativeinteriors.co.nz.
7: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा। कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।

0: 46 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड आपके सुपर सिटी में एक बहुत ही बढ़िया थिएटर प्रोडक्शन होने वाला है। क्या आप कभी थिएटर देखने गए हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिनेमा, आई एम टॉकिंग अबाउट थिएटर जहाँ पे प्लेज होते हैं, लाइव प्ले वहाँ पे होते हैं। अगर आप गए हैं एंड यहाँ पे आप ज़रूर जा सकते हैं, जिसके बारे में मैं अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ, आप और भी इंजॉय करेंगे। और अगर आप कभी नहीं गए हैं तो आई विल से कि आपको ना एक बार थिएटर एक्सपीरियंस करना चाहिए। अगर आपने थिएटर एक्सपीरियंस कर लिया ना, उसके बाद आप बार बार बहुत सारे प्लेज में जाना चाहेंगे। सो इंडियन इंक थिएटर कंपनी है यहाँ पे न्यूजीलैंड में, ये आपके लिए एक प्ले लेके आ रही है, थिएटर प्ले जिसका नाम है बैलून डॉग। बैलून डॉग जो है इसे जैकब राजर ने लिखा है जस्टिन लुइस के साथ, और डायरेक्ट किया है जस्टिन लुइस ने। ये अवार्ड विनिंग परफॉर्मर है जैकब राजन। इनकी एक इंटरव्यू गुरुज ऑफ चाय एक प्ले हमने यहाँ पे प्रमोट किया था, तब इनका इंटरव्यू यहाँ पे हमने किया था। सो इज रिटर्निंग टू द स्टेज इन द वर्ल्ड प्रीमियर ऑफ बैलून डॉग। सो 21st सेंचुरी ऑकलैंड में ये जो है ये सेटअप है, एंड ये जो न्यू प्रोडक्शन है इट इज़ इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर्स स्टोरी काबुलीवाला। अगर आपने रविंद्रनाथ टैगोर की ये स्टोरी कभी पढ़ी है काबुलीवाला, और इसके ऊपर एक्चुअली में कुछ शॉर्ट मूवीज़, शॉर्ट सीरीज़ ऐसे बनी भी है काबुलीवाला के ऊपर, बहुत ही पुरानी कहानी है ये। सो रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी है काबुलीवाला, इसको यहाँ पे एक्चुअली में प्रोड्यूस किया गया है। 21st सेंचुरी ऑकलैंड में सेटअप है, ब्यूटीफुल टेंडर टेल है जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड फ्रेंडशिप होती है बिटवीन अ 5-year-old गर्ल एंड अ लोनली माइग्रेंट वर्कर। सो बेसिकली ऑकलैंड का दे दिया गया है नज़रिया। जो ओरिजिनल कहानी है ना रविंद्रनाथ टैगोर की काबुलीवाला, उसमें क्या है कि काबुलीवाला वो जो आता है सामान बेचने के लिए, उसके साथ फ्रेंडशिप होती है एक छोटी सी बच्ची की, तो उसके ऊपर कहानी बेस्ड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है कि देर इज़ अ फ्रेंडशिप बिटवीन अ 5-year-old एंड लोनली माइग्रेंट वर्कर। सो जहाँ पे कुछ अनकम्फर्टेबल ट्रूथ सामने आते हैं अबाउट द फैमिलीज एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। सो इसका प्रीव्यू सीजन एक्चुअली में सोल्ड आउट था इस थिएटर का। सो आप भी इसके लिए ज़रूर जा सकते हैं। इसका नाम बैलून डॉग है। इट्स अ पावरफुल सेलिब्रेशन ऑफ करेज, कनेक्शन एंड बियॉन्ड कल्चर, क्लास एंड सर्कमस्टांसिस जो चीज़ें होती है। सो ये की थिएटर में हो रहा है, क्यू थिएटर जिसे कई बार बोलते हैं, की थिएटर में 20th of June तक, एक्चुअली में 3rd से लेके 20th of June तक ये जो थिएटर प्रोडक्शन है ये रहने वाला है एवरी डे वहाँ पे। सो अगर आपको इसकी टिकट खरीदनी है iticket.co.nz पे आप जा सकते हैं। इट्स iticket.co.nz, वहाँ पे जाके अगर आप बैलून डॉग सर्च करते हैं यू विल बी एबल टू बाय द टिकट। एंड यहाँ पे अगर आप टिकट जीतना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको BD स्पेस अपना नाम लिख के भेजना है 5599 पर, और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे आप इस थिएटर के लिए डबल पास जीत सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कहानी एक्चुअली में रहने वाली है। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल होती है, तो उन्हीं की कहानी काबुलीवाला के ऊपर एक्चुअली में ये बेस्ड है थिएटर। तो ये थिएटर एक्सपीरियंस अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पे, व्हाट यू हैव टू डू इज टू गेट इन द ड्रॉ BD एज इन की बैलून डॉग, BD स्पेस अपना नाम लिख के भेज डालिए 5599 पर, और आपका नाम इस ड्रॉ में शामिल हो जाएगा जहाँ पे डबल पास आपके नाम हो सकता है।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now.

5:02 हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। कैसे हैं आप? यू हमिंग अलोंग विद सैंडी। आज रुजबे यहाँ पे नहीं है, ही इज़ नॉट कीपिंग वेल, लेकिन जल्दी ही वो यहाँ पे ठीक होके जल्दी वापस आ जाएगा। सो कैसे हैं, आपका डे कैसा गया है आज का, उसके बारे में आप यहाँ पे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। ऑफिशियली इनटू विंटर हम जा चुके हैं। जून इज़ द स्टार्टिंग ऑफ ऑफिशियल विंटर, लेकिन विंटर वाले आज ही हाल एक्चुअली में नहीं लग रहे हैं। मैंने आर्टिकल देखा है एंड आई थिंक इसके कुछ बिट्स हमने पहले भी आपके साथ शेयर किए हैं। ये जो आर्टिकल है इसमें कुछ जॉब्स के बारे में बताया गया है, रियल जॉब्स जो कि आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती है, एंड यू कैन ऐड टू द लिस्ट, जैसे कि मिल्कमैन। मुझे नहीं पता कि इंडिया में अभी भी वो मिल्कमैन होता है कि नहीं होता है, लेकिन जो मिल्कमैन हमेशा यू नो बाहर दरवाजे के बाहर बॉटल्स रख के जाता था, ये एक्चुअली में अब नहीं रहा है। इंडिया में हो सकता है, आपको अगर पता है मिल्कमैन दूध वाला, वो अभी इंडिया में होता है कि नहीं होता है, या फिर सारे पैकेट पे ही आ चुके हैं कि बाज़ार से पैकेट्स या केन्स जो है ये वो लेके आएंगे। सो अगर आपको पता है इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं अभी भी दूध वाले, तो मैसेज या फ़ोन करके यहाँ पर बता सकते हैं। एंड अनदर जॉब जो कि टोटली ही डिसअपेयर हो चुकी है, इसका नाम है लेक्टर। तो लेक्टर क्या करते थे, दे यूज टू रीड द न्यूज़ अलाउड इन द फैक्ट्री सो वर्कर्स कुड डू द शिफ्ट प्रॉपरली। सो बेसिकली उस समय पर न्यूज़ जो वर्कर्स है उनका ध्यान भी लगा रहे, वो थोड़ा बिजी भी रहे, तो जब तक वो काम कर रहे हैं एक लेक्टर होता था वहाँ पर जो कि उनको लाउडली न्यूज़पेपर से न्यूज़ पढ़ के सुनाता था, उनको अपडेट करता था। सो कूल राइट, बेसिकली लाइव रेडियो कह सकते हैं हम उसको। एंड देन देयर वाज अनदर जॉब, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था, पिन सेटर। यू नो पिन सेटर कौन थे, जब आप बॉलिंग पिन्स खेलते हो, पिन बॉलिंग के लिए आप जाते हैं, तो वहाँ पे जो पिन्स होती हैं उनको रीसेट करने वाले होते थे, सो या उन्हें पिन सेटर बोला जाता था। देन देयर वाज नॉकर अपर। नॉकर अपर क्या करते थे, they used to get paid to wake workers before alarm clock were cheap. So basically वो खिड़कियों के पास जाते थे, खिड़की अपने डंडे से ओपन करते थे एंड उस डंडे से ही जो पर्सन है उसको वो उठाते थे। ये नौकर अपर का काम होता था, नॉक करके अप करना, मतलब जगाना बेसिकली। एंड या ऐसे कुछ एक्चुअली में रूल्स है यहाँ पे, लैम्प लाइटर हुआ करते थे, used to lit the street lamps one by one before electric light took over. So these were few jobs जो कि अब नहीं है। Human computer भी तो यार, हम पहले हर चीज़ जो है अपनी हैंड पे जैसे कैलकुलेट करते थे। When was the last time you did the calculation on your hand? मैंने देखा है काफ़ी लोग अभी भी अपने हैंड के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। So well, मैं तो फटाफट कैलकुलेटर निकालती हूँ most of the times. अगर छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं है तो यूजली व्हाट आई डू इज़ कि कैलकुलेटर पे ही जाके सब कुछ कैलकुलेट करती हूँ। व्हाट डू यू डू, डू यू डू योर हैंड पे आप कैलकुलेट करते हो, यू नो ऐसा टच करके हैंड को, उंगलियों को टच करके कैलकुलेट करना टोटल नंबर कितना हुआ, या फिर आप कैलकुलेटर ही यूज़ करते हैं? व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू यूज़ योर हैंड टू कैलकुलेट समथिंग, टू डू द मैथ? एक्चुअली में आपने कब अपने हाथों पर ऐसे कैलकुलेट किया था? एंड आई एम नॉट श्योर कि आज के टाइम पे स्कूल में बच्चों को ये सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं। इफ़ यू आर अ पेरेंट लेट मी नो, स्कूल में हाथ पे कैलकुलेट करना, मतलब हमने तो सीखा है, लेकिन आजकल के स्कूल में ये सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं, ये भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। एंड एनी अदर जॉब जो कि इस लिस्ट में नहीं है, जो डिसअपेयर हो चुकी है, वो भी आप ऐड कीजिए।

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Accurate traffic.
2: Would you trade in your house?
3: Rain developing tonight for Auckland, a low of 13 degrees. On the southern, getting slower, Sylvia Park through to Green Lane, heading north and heading south. It's pretty heavy from Ellerslie to Sylvia Park. 58 minutes to get through to Drury from the centre of town. On the southwestern, heavy Mangere Bridge, west to Hillsborough Road. The city taking 34 minutes to the airport.
2: Trade in your house with Generation Homes. Visit generation.co.nz for more information. It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code Big Switch. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
4: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
7: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है, क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें, गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाढ़ के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.govt.nz/floods.
8: The Beds R Us King's birthday sale is on now with up to 60% off selected sleepyhead beds like Serenity Breeze, Queen Size, now from 1499. Don't miss the King's birthday sale at Beds R Us Manukau and Pukekohe.
9: Ma, ek chupati hoti hai na? Haan, ek chupati mujhe bhi.
10: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
9: हाँ, एक चुपाती मुझे भी।
10: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।

0: आती है स्लीप इजी क्वीन बेड्स फ्रॉम ओनली 799 ऑन सेल नाउ.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: 5:19 हो चुके हैं. ओवर द वीकेंड वैसे बहुत ही सैड न्यूज हमें यहाँ पे पता चल रही थी ऑकलैंड फैमिली के बारे में, हु लॉस्ट देयर सन. वेल, गुरशब्द सिंह इस इनके बेटे का नाम है. 8 साल का ये बच्चा था हु लॉस्ट हिज लाइफ. एंड इसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशंस है ये अभी ऑन है. सो स्कूल ने भी रिसेंटली इसके बारे में स्टेटमेंट दी है कि यू नो 8-year-old बॉय हु डाइड ट्रेजिकली एंड ही वॉज ऑलवेज अ ब्राइट किड, ये स्कूल ने एक्चुअली में इसके बारे में बोला है. सो गुरशब्द सिंह जो कि 8 साल का बच्चा था, ही ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में वो था. एंड हुआ क्या था, अगर आपने ये न्यूज़ में वैसे इसके बारे में देखा ही होगा, अगर आपने मिस आउट किया है, तो व्हाट हैपेंड वाज कि वैन में समहाउ, जो वैन इसे कैरी कर रही थी, बच्चों को कैरी कर रही थी, उसमें से समहाउ ही गॉट एस्केप्ड. एंड ड्राइवर को पता नहीं चला, ही वॉज अनअवेयर फॉर सेवरल मिनट्स जब वो लड़के ने वैन छोड़ी थी. सो उसके पेरेंट्स का कहना है कि इट वॉज़ अ लॉन्ग ड्राइव वे बट ही इज़ वेरी क्विक. उसको अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो वो उसको छुपना अच्छा लगता था, ही वुड एस्केप, ही वॉज़ अ वेरी क्लेवर बॉय, उन्होंने ये बोला है. सो दे डोंट वॉन्ट टू ब्लेम एनी वन फॉर दिस बट दे वॉन्ट कि बेटर मेजर्स होने चाहिए, बेटर चीज़ें होनी चाहिए, असिस्टेंस होनी चाहिए, स्पेशली फॉर द किड्स विद द स्पेसिफिक नीड्स. उनके लिए जो सिचुएशंस है ये मे भी थोड़ा से चेंज होने का वक्त है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वैन या बस में वो बच्चे जा रहे हैं या फिर बहुत छोटे बच्चे हैं या फिर स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, स्पेसिफिक नीड्स के साथ है बच्चे, तो मे भी 2 लोग वहाँ पे होने चाहिए, बिकॉज ड्राइवर का ध्यान हमेशा पीछे क्या चल रहा है इसके ऊपर नहीं रहेगा. तो अगर एक सेकेंड पर्सन वहाँ पर होता है जो उनको मैनेज कर रहा है या कर रही है, वो एक अच्छा आइडिया हो सकता है. पेरेंट्स का कहना है कि दे आर नॉट ब्लेमिंग एनीवन बट दे वॉन्ट द कम्युनिटी एंड पेरेंट्स टू नो कि अगर यू नो ऐसी सिचुएशन है, हुई है, तो ऐसी सिचुएशन आगे जाके भी किसी और के साथ हो सकती है. वेल, पुलिस इसके बारे में अभी और भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है. सो द किड, वो वैन से एस्केप हुआ, ही वेंट इन टू सम प्रॉपर्टी एंड वहाँ पे पूल में, किसी की बैकयार्ड पूल में एक्चुअली में उसकी डेथ हुई, वहाँ से उसकी बॉडी मिली थी. इट्स वेरी सैड एक्चुअली, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी सैड जिस वे से ये सब कुछ हुआ है. एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ऐसा पहला भी हुआ है. इनफैक्ट 2025 में, नवंबर 2025 में एक आर्टिकल आया था जो कि मैंने देखा है. इट वॉज इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया में देर वॉज दिस 8-year-old किड एंड द वियर्ड थिंग इज़ कि उसका नाम भी गुरशब्द सिंह ही था, द सेम नेम. एंड He was on autism spectrum and उसकी डेथ भी एक backyard, किसी घर के backyard pool में हुई थी. It's a very weird coincidence though, जो कि 2025 में गुरशब्द सिंह की डेथ हुई और अभी भी. And this kid, such a bright kid. Well, family is of course heartbroken. उसकी बहन है 10 साल की. Well, उसने भी अपनी memories, अपने भाई के साथ की जो memories है, इसके बारे में उसने बातें की है, share की है. सो बट दे डोंट वॉन्ट टू ब्लेम एनी वन. उनका जो अभी मकसद है वो ये है कि मे बी इसके बारे में अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए कि बच्चे जिस वे से घर आते हैं जाते हैं, तो ड्राइवर को भी वो ब्लेम नहीं करना चाहते कि यू नो कि ड्राइवर जो है, अगर वो वैन चला रहा है तो अगर कोई बच्चा क्लेवर होता है वो कभी भी एस्केप हो सकता है. सो मे बी एक और असिस्टेंस जो है वो वहाँ पर इस सिचुएशन को बेटर वे से डील हो सकती थी और आगे जाके डील हो सकती है. आपका इसके ऊपर क्या टेक है? आपको क्या लगता है कि बेटर मेजरमेंट्स इन सच सिनेरियोस क्या हो सकते हैं? ऐसा पहले भी हो चुका है, सो ऐसे सिचुएशंस के लिए बेटर मेजरमेंट्स क्या हो सकते हैं? 5599 पे आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और यू कैन कॉल ऑन 0800 00. हम
2: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड.
4: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आओ.
5: Brought
2: to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: देसी और नॉट सो देसी।
1: सो देसी और नॉट सो देसी में एक बिहेवियर आपके सामने हम यहाँ पे शेयर करते हैं और आपको बस गेस करना होता है, शेयर करना होता है कि इज दिस अ देसी बिहेवियर और दिस इज़ नॉट सो देसी बिहेवियर, कि ऐसा हर कोई करता है। इसके बारे में बस आपको यहाँ पे शेयर करना होता है। सो आज का जो बिहेवियर है ना वो ये है, और ये आप में से काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी का आपसे ये सवाल पूछना कि हाउ मच डू यू अर्न, आप कितना कमाते हैं। ये देसी बिहेवियर है या फिर ये नॉट सो देसी बिहेवियर है? ऐसा सिर्फ अपने देसी लोग ही करते हैं बेसिकली, या फिर ऐसा बाकी लोग भी करते हैं जिसे हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, वहाँ के लोग भी करते हैं। कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, शेयर कीजिए कि आपके साथ अगर कभी ऐसा हुआ है कि आप कितना कमाते हैं। हुए ही होगा आपके साथ कभी ना कभी लाइफ में किसी पॉइंट पे। हाय, गुड इवनिंग एहफाज, कैसे हैं आप?
2: गुड इवनिंग, अच्छा आप कैसे?
1: बढ़िया बढ़िया। हुआ है आपके साथ ये?
2: हाँ बहुत बार हुआ है, और पर ये सारी चीजें देसी के बिहेवियर में ही है। मुझे अभी तक किसी नॉन देसी ने ये नहीं पूछा।
1: हमेशा देसी नहीं पूछा है क्या?
2: हाँ देसी नहीं पूछा है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि बाकी लोग होते हैं ना वो इस चीज को बहुत सीक्रेट रखते हैं।
1: हाँ।
2: और वो उसको इतना यानी ये नहीं समझते शेयर करने जैसा, या उसको अगर आप उसको किसी को ये पूछते हुए भी सुनो, जैसे मैंने किसी बंदे को किसी और को भी पूछते हुए सुना है, तो वो लोग सीधा आंसर करते कि दिस इज कॉन्फिडेंशियल, दिस इज बिटवीन मी एंड माय कंपनी, आई कांट शेयर।
1: या एक्चुअली में, और ये बात यही भी आके रियलाइज हुई है न्यूजीलैंड में, ये बात आके रियलाइज हुई है कि भाई ये नहीं पूछना चाहिए। ये सवाल कभी नहीं पूछना चाहिए।
2: या
1: मेरे को लगता है ये बहुत नॉर्मल कल्चर है साउथ एशियन कंट्रीज में, हम कह सकते हैं बहुत नॉर्मल है।
2: हमारे यहाँ पे आदत, हमारे यहाँ पे जैसे होता है ना आदत होती है कि फिर वो, और नहीं भी पूछो तो अपने यहाँ तो ऐसा होता है कि आगे से बंदे बता देते हैं।
1: हाँ कितना कमाते हो, या फिर आप क्या पोजीशन क्या है जहाँ पे आप काम करते हैं, पोजीशन क्या है
2: आपकी? यहाँ मुझे नहीं लगता कि ये, मैंने तो नहीं देखा है, मैंने आज तक एक भी बंदे को 10 साल में नहीं देखा है।
1: यहाँ पे ये है कि आपके पास काम है, वेरी गुड, आप काम कर रहे हो कमा रहे हो वो बस वो मैटर करता है।
2: हाँ बट एक चीज है, जैसे मान लो मैंने, यानी जो न्यूजीलैंड के लोग है प्रॉपर, जैसे कीवी लोग है या जो भी यहाँ के लोग है, उनके मुंह से मैंने ये कभी नहीं सुना। बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम साउथ एशियन कम्युनिटी जो है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई और कंट्री है, जैसे मेरा एक, जैसे एक है हमारे कंपनी में कुछ लोग जो दूसरे कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से, तो उनके मुंह से मैंने पर ये सुना है।
1: कौन सी मतलब कंट्रीज बता सकते हैं यहाँ पे?
2: साउथ अफ्रीका से है मेरे कंपनी से, काफी मेरे फ्रेंड्स है।
1: ओके।
2: हाँ तो उन लोगों को मैंने सुना है ये सब गॉसिप करते हुए, बट यहाँ के लोगों को नहीं सुना।
1: वाओ, तो जो साउथ अफ्रीका से हैं वो साउथ अफ्रीकन इंडियंस हैं या फिर मतलब फ्रॉम, ओके प्रॉपर साउथ अफ्रीका? ओके

0: okay to share within the company, not outside.
1: Yes.
0: Within the company, so that आपको पता चलता है कि आप कहीं मतलब exploit तो नहीं हो रहे हो, मतलब आप जितना deserve करते हैं आपको उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उस reason
1: से. हमारे company में तो ऐसा ही बोला जाता है कि company के company में भी share नहीं करना है,
0: it's confidential. Wow, very nice. Yeah, very nice. Thank you, FR. Thanks for calling.
1: All good. Have a good evening.
0: You too. Bye bye. एक मैसेज भी आया है, इनका कहना है कि आई हैव एक्सपीरियंस इट बट आई हैव बीन आस्क्ड बाय अ कीवी गाय एंड बट दे से बिट डिफरेंट, दे विल से यू मस्ट बी ऑन अ गुड मनी. शैलेश सही बोल रहे हो आप, मतलब उनका तरीका डिफरेंट होता है, सवाल एक ही है देखा जाए तो उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. दे विल नॉट आस्क फॉर द अमाउंट या फिगर कि वो क्या है, वो आपको वैसा टॉल कर, यू मस्ट बी ऑन गुड मनी, यू मस्ट बी अर्निंग गुड, ये समथिंग लाइक दिस, इस वजह से कई बार वो कह देते हैं. इसमें भी पॉइंट है. सो देसी और नॉट सो देसी, मेरे पास एक देसी आंसर भी आया है कि देसी ही ऐसा करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एंड नॉट सो देसी भी ऐसा करते हैं, ये आंसर भी आया है. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आप भी यहाँ पर ज़रूर शेयर कर सकते हैं. एंड थोड़ी देर पहले हमने जो न्यूज़ के बारे में बात की थी एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्रेजिक इंसिडेंट जो कि यहाँ पर ऑकलैंड फैमिली ने अभी फेस किया है विद देयर किड हु पास्ड अवे, एक का मैसेज आया है निश का. इन्होंने बोला है, माय ब्रदर हैज़ ऑटिज्म स्पेशल नीड्स एट एज 21. हिज आउटिंग्स स्टॉप्ड. इट डिसहर्टन्स मी दैट देयर इज नॉट इनफ फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड एंड मोर फोकस इज रिक्वायर्ड फॉर द डिसेबल्ड. या सो ये यू नो काफ़ी सारी जगह पे इसके बारे में एक्चुअली में बात हो रही है. एंड गुरशब्द के पेरेंट्स जो कि who lost their kid, उनका भी एक्चुअली में यही कहना है. उन्होंने यही बोला है कि वो सिस्टम पे, कंट्री पे, किसी भी चीज़ के ऊपर वो ब्लेम नहीं करना चाहते. वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ये आगे किसी और बच्चे के साथ ना हो. इसके ऊपर प्रॉपर मेजर्स होने चाहिए, इसकी अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए, इसके ऊपर काम होना चाहिए. एंड मुझे लगता है दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और शायद इतना आई नो वो अभी एक लॉस से गुजर रहे हैं, ग्रीफ से गुजर रहे हैं एंड इसके ऊपर जब तक स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं होते हैं तो शायद ज़्यादा नहीं हो पाएगा. सो वेल काफ़ियों ने यहाँ पे मैसेज भी किए हैं इसके बारे में. थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: 5:43 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं एंड आपके सुपर सिटी में बहुत ही जल्दी कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. ट्राइविजन इवेंट्स का ये जो इवेंट है ये रहने वाला है द ग्रेट कॉमेडी नाइट विद कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में. नौ अगर आप यहाँ पे डबल पास जीतना चाहते हैं इस इवेंट के लिए तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है. ड्राइव स्पेस आपको बस अपना नाम लिख के फिलहाल भेजना है 5599 पर. सो ड्राइव स्पेस अपना नाम लिख के भेजिए 5599 पर. यू विल गेट इन द ड्रॉ जहाँ पे आप डबल पास इस इवेंट के लिए जीत सकते हैं. ऑल्सो रिमेंबर ऑटो रिप्लाई में आपको हमारे पॉडकास्ट का लिंक भी मिल जाएगा जिसमें ऑडियो लिंक भी है, वीडियो लिंक भी है. सो अगर आप पॉडकास्ट वॉक करते करते सुनना चाहते हैं तो ऑडियो लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए. अगर आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं जहाँ पे शैंकी सिंह को आप देख सकते हैं फ्रॉम WWE तो वीडियो लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं. सो यू कैन एक्चुअली चेक द ऑडियो एंड बाद में चेक करने के लिए कि कौन है शैंकी सिंह तो वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं. जस्ट टू लुक एट हिम हाउ ही लुक्स इज अ 7 feet tall बाय द वे. और इस पॉडकास्ट में सब बातें उन्होंने की है WWE के बारे में, ट्रूथ अबाउट WWE, क्या वो स्क्रिप्टेड होता है या रियल है. बहुत इंटरेस्टिंग जो उन्होंने बताया है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. एंड ऑल्सो द ब्रूटल जर्नी, WWE में सेलेक्ट होना कोई ईजी बात तो नहीं होता है, तो उसके लिए करना क्या क्या पड़ता है वो उन्होंने बताया. इंजरीज रिस्क के बारे में, यू नो अक्सर हम देखते भी हैं मूवीज़ में कि अगर किसी को इंजरी होती है एंड देन दैट पर्सन उसके लिए वहाँ पर खेलना इज़ इट सेफ और नॉट, तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी उन्होंने बताया है. ऑल्सो भरत मूवी में जब उन्होंने सलमान खान के साथ काम किया वो भी बिट उन्होंने वहाँ पे शेयर किया है. एक्चुअली में इसमें उन्होंने ट्रूथ बताया है कि वाई सलमान खान इज़ ऑलवेज लेट टू हिज सेट्स, रियल ट्रूथ उन्होंने वहाँ पे रिवील किया है. सो यू मस्ट लिसन दैट एज वेल. बाकी काफ़ी अनटोल्ड स्टोरीज, लॉकर रूम रियलिटीज़ WWE की, बड़े से बड़े लोग जो है WWE के इन रियल कैसे हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ इन्होंने शेयर किया इस पॉडकास्ट में. सो दिलशेर शैंकी एक्चुअली फ्रॉम WWE, ही वॉज हेयर इन ऑकलैंड. वैसे वो इंडिया के हैं लेकिन वो ऑकलैंड में थे क्योंकि मेलबर्न में वो कुछ फाइट्स खेल रहे थे तो यहाँ पर आए थे, तब उन्होंने ये सब कुछ शेयर किया. सो अगर आप ड्राइव लिख के भेजते हैं, आपको ड्राइव शो नहीं लिख के भेजना है, आपको सिंपल ड्राइव लिख के भेजना है, तो ऑटो रिप्लाई में ये लिंक आपको मिल जाएगा. ऑडियो एंड वीडियो दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा और साथ में आपका नाम ऑफकोर्स इस ड्रॉ में भी शामिल हो जाएगा जहाँ पे द ग्रेट कॉमेडी नाइट, इसके लिए डबल पास आपके नाम हो सकता है.

5:49 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. एंड बाय द वे, आज 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में सोनाक्षी सिन्हा स्पेशल आप सुनने वाले हैं, बिकॉज सोनाक्षी सिन्हा इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे. वैसे आर माधवन ने कल अपना बर्थडे 1 जून को सेलिब्रेट किया, तो आर माधवन का स्पेशल कल यानी कि 3rd को आपके लिए हम लेके आएंगे. बट टुडे बिकॉज सोनाक्षी सिन्हा का बर्थडे है, सो जिस टाइप के गाने उस आवर में, नेक्स्ट आवर में आप सुनने वाले हैं, दीज आर फ्यू सॉन्ग्स. इसकी तो ट्यून से ही पता चल जाता है कि ये कौन सा गाना है. देन देयर इज दिस वन. एंड आल्सो दिस वन. सोनाक्षी सिन्हा ने एल्बम भी की है, तो ये गाना भी

वेल दीज आर फ्यू सॉन्ग्स, लेकिन अगर आप कोई सोनाक्षी सिन्हा का गाना सुनना चाहते हैं विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, तो आप भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 5599 पर. 6 बजे के बाद ये और भी कुछ गाने आपके लिए रहने वाले हैं.

0: आज आप तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे।
1: हम
2: पावर ड्राइव एट 5
1: ब्रॉट टू यू बाय फोकस किचन्स, क्वालिटी किचन्स विद मॉडर्नाइज्ड कस्टमाइज्ड डिजाइंस फॉर योर ड्रीम किचन।
2: Accurate traffic.
3: Kitchen Mania trade prices this month.
4: Rain developing tonight for Auckland at a low of 13 degrees. Reports coming through of a crash on the southwestern affecting westbound traffic between Massey Road and Beta Drive. On the southern, fairly good run to Drury now, taking only 44 minutes. It is slow northbound from Sylvia Park to Green Lane, but slow across the Harbour Bridge to Oniwa.
3: Order your new Kitchen Mania kitchen this month and get trade prices. T's and C's apply.
5: To attract meaty deals on fresh quality sea meat and land meat, I deliver a meeting call. Meat! Meat Week on Now at Pack and Save.
6: Want $500 to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
7: This is a message on preparing for earthquakes from the Natural Hazards Commission.
8: Whoa!
9: Whoa!
8: Whoa!
9: Whoa!
7: When it comes to earthquakes, a bit of prep can make a big difference. Things like securing tall or heavy furniture or making your risky chimney safer can turn a
8: whoa
7: into a
9: whoa.
7: Don't wait for the whoa. Protect your whānau. Search Quake Safe Your Place to learn more.
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
11: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
12: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
13: मुझे भी।
12: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
1: Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Good evening, I'm KM Adams with the latest at 6. The National Party concedes it jumped the gun in its postnatal policy announcement. Instead of an immediate three-night hospital stay, leader Christopher Luxon says it will be phased in over 3 years.
15: So it will be a staggered rollout. So initially it's about one, get the legislation in place so a legal rights established. Two, to make sure we open it up to new mums. And then three, to all mums.
14: A 26-year-old Northland man has appeared in court charged with murder, arson and burglary following the discovery of a woman's body several kilometres from her ransacked home. Her body was found last night at a property in Whirinaki, 6 kilometres from her home in Opononi. Improvements to the country's supermarket duopoly issue are being described as baby steps. The Commerce Commission's annual report shows major chains continue to have an 80% hold. Head of groceries Alice Hume says it'll be some time before competitors solidify a place in the market.
16: Changing competition where there's a significant market dominance takes time, and that's what this report is showing.
14: Another sellout crowd for the Crusaders this Saturday afternoon as they take on arch rivals the Blues in a Super Rugby Pacific qualifying final. Some showers are forecast for Roland Garros as the quarterfinals start to play out at the French Tennis Open overnight. The men's draw has opened up for German second seed Alexander Zverev. Also in action, Elena Svitolina, who won Auckland's ASB Classic tournament in January.
2: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
10: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस.
17: सूचित किया जाता है महेंद्र शरण, शैलेंद्र शरण, उषा मरण, सुमन शर्मा और प्रवीणा वर्मा की मां, सुवा फीजी के स्वर्गीय राम शरण की पत्नी उमावती शरण की मृत्यु ऑकलैंड हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार को 1 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइन क्रिमेशंस में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं और 021-1191-107 पर. सूचित किया जाता है महेंद्र शरण, शैलेंद्र शरण, उषा मरण, सुमन शर्मा और प्रवीणा वर्मा की मां, सुवा फीजी के स्वर्गीय राम शरण की पत्नी उमावती शरण की मृत्यु ऑकलैंड हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार बुधवार को 1 बजे एंड्स फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइन क्रिमेशंस में किया जाएगा. जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप कॉल कर सकते हैं ऑन 021-1191-107 पर.
10: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी.
1: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
18: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: 6:04 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. यू हैविंग अलोंग विद सेंडिया. जुरुज़बे इज अवे बट होपफुली ही विल बी बैक टुमारो. सो आज ट्रेंड मेकर्स में सिंस इट इज सोनाक्षी सिन्हा बर्थडे, सो सोनाक्षी सिन्हा स्पेशल हम कर रहे हैं. अमेजिंग गाने हैं वैसे सोनाक्षी सिन्हा के बॉलीवुड में. सोनाक्षी सिन्हा यू नो बॉलीवुड में ये बंदी ने डेब्यू किया, बॉलीवुड फैशन इंडस्ट्री से बॉलीवुड में एंट्री की, बॉलीवुड में काम किया. एंड अभी वो बॉलीवुड में कम लेकिन रील्स में ज़्यादा दिखाई देती है. सो सोनाक्षी सिन्हा के यू नो बहुत सारे रील्स काफ़ी वायरल होते हैं जहाँ पे अलोंग विद हर हस्बैंड वो प्रैंक वीडियोस बहुत ज़्यादा करती है. तो नाउडेज शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल. सो फैशन से बॉलीवुड टू कंटेंट क्रिएटर. वेल सोनाक्षी सिन्हा की वैसे बात की जाए तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जिस वे से फैशन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर से वो एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस बनी. सो इसके पीछे कहानी है. कहानी ये है कि हुआ क्या था. देर वॉज दिस फैशन शो जहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा वहाँ पर थी, वहाँ पर सलमान खान था. सलमान खान नोटिस्ड हर लैक्मी फैशन शो में वहाँ पर, एंड बातें हुई काफ़ी सारी. ही सेड कि यार अगर तुम्हारा ना फेस वैल्यू बहुत है, तुम्हारा फेस एक ना बॉलीवुड एक्ट्रेस की तरह है, तुम्हें एक्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन अगर तुम अपने वेट के ऊपर थोड़ा काम करोगी तो यू कैन बी अ रियली गुड एक्ट्रेस. उसके बाद ये बातें हो गई और उसके बाद एक वेडिंग होती है. अमृता अरोड़ा इसकी वेडिंग थी एंड इसकी शादी में सलमान खान एंड ब्रदर अरबाज खान बोथ वर देयर एंड दे बोथ वर वर्किंग ऑन दबंग दैट टाइम. एंड उस समय पर सोनाक्षी सिन्हा टिल दैट टाइम शी नियरली लॉस्ट 30 kg फ्रॉम अ फर्स्ट अपियरेंस. तो उसके बाद सलमान खान ने बोला कि अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और तुम्हारी एकदम क्लासिक ट्रेडिशनल इंडियन लुक है जो कि हमारे करेक्टर रज्जो के साथ बहुत ही सही रहेगी. सो बस उसके बाद घर गए, शत्रुघ्न सिन्हा से भी बात हुई, जैसे अरेंज मैरिज होती है वैसे फुल बात हुई एंड साइन किया सोनाक्षी सिन्हा को फॉर द मूवी दबंग.

मूड मूवी का गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे, जो कि सोनाक्षी सिन्हा की अनदर मूवी थी। वैसे नूर मूवी की कहानी बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ थी, जहाँ पे जर्नलिस्ट के ऊपर भी ये जो मूवी है ये बेस थी। सो उसे ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली में एक स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ किया था, करण गिल, जो कि यहाँ पे ऑकलैंड में भी आ चुके हैं। सो ही प्लेड अ लॉयल सार्केस्टिक बेस्ट फ्रेंड इस मूवी में। एंड इसमें काफ़ी सारे डायलॉग्स जो थे एक्चुअली में एक क्वाइट हैवी हिटिंग मोनोलॉग भी था सोनाक्षी सिन्हा का, मुंबई यू आर किलिंग मी, इसके ऊपर। एनीवे, सोनाक्षी सिन्हा के बारे में बात करते हैं, तो वैसे जो ये गाना आप सुनने वाले हैं नेक्स्ट कमिंग अप, दैट वाज अ कोलैबोरेशन विद यो यो हनी सिंह फॉर अ एल्बम सॉन्ग। 2014 में यो यो हनी सिंह, उस समय पर ऑफकोर्स इनके बैक टू बैक सुपर हिट गाने आ रहे थे, द सॉन्ग्स लाइक ब्लू आइज, ब्राउन रंग, अग्रेजी बीट ऑलरेडी हिट थे, एक हाउस होल्ड नेम तो ऑलरेडी यो यो हनी सिंह बन चुके थे। नाउ दिस वाज अ कोलैबोरेशन विद अ बॉलीवुड एक्ट्रेस, बिकॉज उस समय पर 2014 के बाद सोनाक्षी सिन्हा का करियर भी उस समय पर पीक पे था। सो अनलाइक मैनी म्यूजिक वीडियोज, ये जो म्यूजिक वीडियो थी इसमें सोनाक्षी सिन्हा एंड यो यो हनी सिंह का जो करेक्टर है ये एक स्टोरी टेलिंग था, एक सिनेमैटिक स्टोरी लाइन इसमें दिखाई गई थी। एंड यू नो जो प्लॉट था इसमें एक कहानी दिखाई थी कि एक लड़की जो है वो घर से भाग जाती है, तो लड़का उसको क्या क्या बताता है, उस पूरी की पूरी स्टोरी लाइन में ये बताया गया था। एंड 2014 वाज अ टाइम जिस समय पर यूट्यूब बूम कर रहा था, मतलब यूट्यूब कंजम्पशन जो थी ये एक्सप्लोड होना शुरू हो चुकी थी। जो कुछ भी YouTube पे रिलीज़ हो रहा था वो ट्रेंड बनता जा रहा था। एंड उस समय पर ये जो गाना है जब YouTube पे आया इसको मिलियंस ऑफ व्यूज़ उस समय पर मिले थे, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा एंड यो यो हनी सिंह ने बाद में अगेन एक और गाने के लिए कोलैबोरेट किया, लेकिन वो गाना खैर इतना नहीं चला जितना ये चला।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. If you're in the loop with ANZ, you now earn cash back with your Visa debit. So if you spend on things like food,
2: noodles,
1: or fashion,
2: gorgeous,
1: or even a shiny new appliance,
2: shiny,
1: money loops back. Get in the loop for cashback shaped around you. Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
3: Discover the magic at Go Bananas Child Care, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Child Care is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Child Care Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 फॉर सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
7: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
8: मुझे भी।
7: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
9: Everything you love about Auckland is about to get closer than ever before when the City Rail Link opens this year. New stations will make getting into the city and across Auckland easier and more convenient because all those trains, buses and ferries, they're connecting to make one super simple network. Day out with the family? Explore somewhere new. Heading to the game? Sweet as! The new City Rail Link will make it all happen. Search ATCRL to discover more. So, where will you go?
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: 6:25 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं ट्रेंड मेकर्स में सोनाक्षी सिन्हा के हिट गाने आज आप यहाँ पे सुन रहे हैं. सोनाक्षी सिन्हा चाहे आज मूवीज में इतनी एक्टिव नहीं है, बट देयर वाज वन टाइम जब वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी एंड शी वाज गिविंग बैक टू बैक हिट्स. जैसे कि उसने ब्लॉकबस्टर मूवीज दी थी. ये तो मूवीज के अभी जो आप गाने सुनने वाले हैं दे वर डायरेक्टेड बाय प्रभु देवा. सो प्रभु देवा जो कि डांस में मास्टर हैं, शी पिक द राइट पर्सन बिकॉज सोनाक्षी सिन्हा का डांस बहुत अच्छा है. तो उन्होंने मसाला एंटरटेनर्स जो कि मास एंटरटेनर्स मूवी होती है, ऐसी प्रभु देवा की मूवीज हमेशा से रही है. सो राउडी राठौड़ एंड आर राजकुमार, इन दोनों मूवीज में उन्होंने कास्ट किया सोनाक्षी सिन्हा को. राउडी राठौड़ जो कि सोनाक्षी सिन्हा ने अक्षय कुमार के साथ ये मूवी की थी, दैट गॉट रिलीज इन 2012, ऑल्सो वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड हिट ऑफ द ईयर. ये मूवी टॉप एक्शन, पंच डायलॉग्स के लिए, कॉमेडी के लिए, गानों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा जानी गई थी. और इसमें सोनाक्षी सिन्हा का रोल था पारो का. एंड देन आर राजकुमार जो कि शाहिद कपूर के साथ सोनाक्षी सिन्हा ने काम किया था एंड सोनू सूद के साथ. इट वाज अगेन अ कमर्शियल सक्सेस. इसमें उसने चंदा का रोल किया था. आप पैटर्न देख रहे हो सोनाक्षी सिन्हा के करेक्टर्स का, मतलब बहुत ही ऐसा ट्रेडिशनल नाम और ट्रेडिशनल रोल्स रहे हैं उसके, जैसे कि रज्जो, पारो, चंदा. ये उसके करेक्टर नेम्स जो है बहुत सारी मूवीज़ में ऐसे उसके करेक्टर नेम्स रहे हैं. एंड बहुत डिफरेंट एक्टर्स के साथ सोनाक्षी सिन्हा ने काम किया है अपने करियर में. सलमान खान के साथ, अक्षय कुमार के साथ, रणवीर सिंह के साथ, शाहिद कपूर के साथ, एंड इवन आर राजकुमार के जो गाने थे दे वर डांस नंबर्स. इट वाज अ एक्शन मूवी बट जो इसके गाने थे वो डांस नंबर थे, जिसके कारण ये जो मूवीज़ थी इट हेल्प सोनाक्षी सिन्हा की इमेज एस्टैब्लिश हुई एज अ क्वीन ऑफ देसी मसाला एंटरटेनर. सो दिस वाज बिटवीन 2010 एंड 2014. उस मूवी का ही एक्चुअली में दिस इज ऑफ राउडी राठौड़ का ये गाना सुनने वाले हैं और उसके बाद आर राजकुमार से.

6:35 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। सोनाक्षी सिन्हा का बर्थडे है तो सोनाक्षी सिन्हा स्पेशल इस आवर में आप सुन रहे हैं, जहाँ पे उनकी मूवीज के हिट गाने आप यहाँ पर सुन रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा का देखा जाए तो करियर स्पैन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, उन्होंने ब्रेक्स में लेके कुछ काम ज़रूर किए हैं, OTT में भी वो आई हैं, बट कंसिस्टेंट सिनेमा उन्होंने नहीं किया है। बट जितना भी किया है वो याद भी रखा गया है, जो कि मूवीज़ के गाने आपके लिए हमने जैसे कि यहाँ पे प्ले किए हैं। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में भी सोनाक्षी सिन्हा वैसे रही है, पहले उन्हें वेट एंड बॉडी शेविंग बैटल्स काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी जब उनकी मूवीज़ रिलीज हुई थी अर्ली इन हर करियर। उस समय पर शी फेस रिलेंटलेस एंड वेरी टॉक्सिक ट्रोलिंग एक्चुअली में अपनी बॉडी वेट को लेके, जिसके बारे में सोनाक्षी सिन्हा ने काफ़ी बार लोगों को जवाब भी दिया। ये उसका राह था कि वो कभी ऐसा नहीं होता था कि किसी ने कुछ बोला है एंड वो चुप बैठी है, तो शी ऑलवेज यूज टू गिव बैक। एंड उसके बाद कुछ और ब्लंडर्स भी हुए थे, जैसे कि KBC में इन 2019 शी कुडंट आंसर अ क्वेश्चन एंड

जिसके बाद मैसिव इंटरनेट जोक्स जैसे कि बनते हैं, विच इज़ वेरी फेमस, वैसे बने. एंड देन रिसेंटली बिकॉज ऑफ हर इंटरफेथ मैरिज, इसकी वजह से भी शी बीन इन न्यूज़ इन मिड 2024 बिकॉज शी हैड अ प्राइवेट वेडिंग विद अ लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड एंड एक्टर ज़हीर इकबाल. And they did the marriage under the Special Marriage Act. So it became the talk of the nation as well. So uske bare mein, you know, काफ़ी चीज़ें आई, rumors आई कि शायद family नहीं मान रही है, कुछ ऐसे लोगों ने अपनी ओर से बनाया दो family शादी में शामिल है. लोगों को ऐसा media circus कई बार बनानी होती है, तो वो बनी वहाँ पर उस समय पर. बट एनी वे, सोनाक्षी सिन्हा के करियर के बारे में बात करते हैं, जो गाना भी आप सुनने वाले हैं लुटेरा मूवी से है. यू नो सोनाक्षी सिन्हा ने अभी तक जैसे मसाला मूवीज़ की थी जहाँ पे शी वॉज एंटरटेनर, नाउ लुटेरा जो थी दिस इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ बोथ सोनाक्षी सिन्हा एंड रणवीर सिंह. रणवीर सिंह ने भी अपने इंटरव्यू में इसके बारे में बोला था कि जो प्यार लुटेरा मूवी के लिए वो डिज़र्व करते थे उनको नहीं मिला, वो मूवी कमाल की थी. इट वॉज़ रिलीज इन 2013 एक्चुअली में, विक्रमादित्य मोटवानी इन्होंने इसको डायरेक्ट किया था. एंड मूवी जो है ये 1950s के इंडिया के बैकड्रॉप में बनी थी, जहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम होता था, तो ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए वैसा इसमें दिखाया गया था. सो वहीं पे एक पीरियड रोमांस ड्रामा दिखाया गया था जहाँ पे पाखी का करेक्टर किया था सोनाक्षी सिन्हा ने, शी वॉज़ अ ज़मींदार्स डॉटर एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें. द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी वॉज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाई A very famous story of O. Henry, The Last Leaf. So, Sonakshi Sinha ki ye career best performance batai gayi thi because Lutera jo thi, it was completely different side of her. Subtle acting thi, loud commercial movie performance nahi thi, minimal dialogues se, heavy emotional expression tha isme, jiske karan jo Pakhi ka mature, vulnerable, heartbreaking jo character tha, wo saamne aaya. सो मूवी को स्टनिंग सिनेमाटोग्राफी, पीरियड डिटेल्स के लिए काफ़ी प्रेज दी गई इस मूवी को. इसका म्यूज़िक काफ़ी अच्छा रहा, द केमिस्ट्री बिटवीन रणवीर एंड सोनाक्षी वॉज एक्चुअली रियली रियली गुड. तो वेल, इसी मूवी का ये गाना है मोनाली ठाकुर की आवाज़ में.

0: 6:43 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। वैसे कम्युनिटी में क्या क्या हो रहा है ये भी बता देती हूँ। ग्रैंड कीर्तन संध्या हो रही है जिसमें रोनल सिंह रोनू एंड जैनेश सेवक इस परफॉर्मिंग, जो कि इसी फ्राइडे को वैदिक सेंटर में होगी पापाटोई में 7:30 PM ऑनवर्ड्स। टिकट सिर्फ $20 की है जो आपको जेस फ्रेश मार्ट शर्ली रोड पापाटोई से मिल जाएगी। एंड ऑल्सो मुस्कान केयर ट्रस्ट आपके लिए ग्लो रेड फॉर द थैल एंड जेड लेके आ रहे हैं। सो थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया, वेल इस कंडीशन की अवेयरनेस हो रही है एंड इस कंडीशन में जो पेशेंट्स होते हैं दे रिलाई ऑन रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आपको मौका मिले ब्लड डोनेट करने के लिए, अगर आप इस काबिल है कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सो ब्लड डोनर्स की हमेशा तलाश रहती है। सो जो मुस्कान केयर ट्रस्ट है ये एक्चुअली में आपको इन्वाइट कर रहे हैं टू सपोर्ट द इंटरनेशनल सिकल सेल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन ड्राइव जो कि 20 June को होने वाली है मेनकाउ न्यूजीलैंड ब्लड सेंटर में। तो वहाँ पे आप जा सकते हैं अगर इस डोनेशन के बारे में, इस ब्लड डोनेशन के बारे में आपको और भी जानना है तो muskancaretrust.org.nz पे आप जा सकते हैं। सो बेसिकली वहाँ पे आप काफियों की हेल्प बन सकते हैं, काफियों की मदद कर सकते हैं। थैलेसीमिया के ऊपर वैसे हमने एक पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया है, सो विद टाइम वो पॉडकास्ट भी आपके लिए हम लेके आएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट एक्चुअली में। मुझे थैलेसीमिया क्या होता है नहीं पता था एंड ये साउथ एशियन कम्युनिटी में कितनी ज़्यादा है इसके बारे में भी नहीं पता था। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होती है। इस चीज़ को बहुत ईजिली अवॉइड भी किया जा सकता है और इसको मैनेज भी किया जा सकता है। सो वी हैव रिकॉर्डेड दिस पॉडकास्ट, सो ये भी आपके लिए बहुत ही जल्दी लेके आएंगे। बट फॉर नाउ करंट हमारा जो पॉडकास्ट आपको सुनना है, रिमेंबर जब आप हमें प्यार देते हैं हमारे करंट जो पॉडकास्ट है इसके ऊपर, तब और पॉडकास्ट भी आपके लिए लेके आने के लिए हमें मोटिवेशन मिलती है। स्पॉटिफाई पे वैसे अगर आप करंट पॉडकास्ट सर्च करते हैं अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रुस्बे में, तो जो हमने शैंकी सिंह से बात की है इसकी वीडियो आपको स्पॉटिफाई में वैसे दिखाई देगी, अदरवाइज जो आप ड्राइव लिख के भेजेंगे तो उसमें वीडियो ऑडियो दोनों लिंक्स हैं।
1: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Hum, accurate traffic.
2: Beat fuel prices with AT.
3: Rain developing tonight for Auckland, a low of 13 degrees. It's not too bad on the roads now. On the northern, only 38 minutes to get to Silverdale. It's busy north of the Harbour Bridge around Oniwa. On the southern, a quick run to Drury, 34 minutes. Slow northbound, Sylvia Park to Green Lane. On the southwestern, reports of a crash between Massey Road and Beta Drive.
2: Beat pump prices by taking public transport. Tag on with any smart card and go.
4: There are days when you nail parenting, but with no food in the fridge, this isn't one of them.
5: Dash! Savior of the lunchbox.
4: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
5: Dash!
6: Farmer's massive King's Birthday Sale is now on. Up to 40% off women's clothing and lingerie, and up to 40% off men's clothing and underwear. Plus, great deals on beauty. Savings fit for a king at Farmer's. Conditions and exclusions apply.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
10: ओकलैंड तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। वंस अपॉन अ टाइम विद द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद शाहजमान अली खान सैटरडे 25 जुलाई एट द ट्रस्ट एरिना। बुक योर टिकट्स ऑन dryticket.co.nz। फॉर स्पॉन्सरशिप्स कॉल करम हुंडल ऑन 02751464777।

2nd June it is and Sonakshi Sinha ka birthday hai to Sonakshi Sinha ke movie ke hit gaane aaj aap yahan pe sun rahe hain. Ittefaq movie ka abhi abhi aap gaana yahan pe sun rahe the jo ki one of Sonakshi Sinha's most underrated movie hai. You know ye movie ne help kiya Sonakshi Sinha to depart a usual commercial role. मिस्ट्री थ्रिलर है जो उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा अक्षय खन्ना के साथ की थी. सो इट्स अडैप्शन ऑफ 1969 क्लासिक ऑफ द सेम नेम, तो आप ज़रूर चेक कर सकते हैं. सो इस मूवी में यू नो सोनाक्षी सिन्हा का जो रोल था वो उसकी एक्टिंग रेंज बताती है, जस्ट लाइक लुटेरा मूवी. सो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अ ग्लैमरस कमर्शियल मसाला काइंड ऑफ हीरोइन, शी प्लेड अ करेक्टर जो कि लेयर्ड और मिस्टीरियस करेक्टर है. लुटेरा के बारे में काफ़ी तारीफ हुई थी, वैसे ही इस मूवी के बारे में भी काफ़ी तारीफ हुई थी. कमिंग अप तेवर मूवी का गाना है जिसमें उन्होंने अर्जुन कपूर के साथ एंड मनोज बाजपेयी के साथ काम किया था. इस मूवी के बाद दोनों के बीच में अफेयर की र्यूमर भी आई थी ऑफ अर्जुन कपूर एंड सोनाक्षी सिन्हा, लेकिन किसी ने उसके ऊपर कभी भी कुछ कमेंट नहीं किया. दोनों की जोड़ी को एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था. पहले से नोट पे आपको मैं यहाँ पे कहती हूँ टाटा बाय बाय. वैसे आपको पता है सोनाक्षी सिन्हा का एक फैक्ट आपको बताती हूँ जाते जाते, शी इज़ अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एज वेल. 2016 में शी एंटर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर अनयूजुअल फीट. सो शी पार्टिसिपेटेड इन एन इवेंट जहाँ पे मोस्ट पीपल पेंटेड देयर फिंगर नेल्स साइमल्टेनियसली, यहाँ पे उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. इमेजिन. इसी रोड पे आपको कहती हूँ टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आपसे मेरी मुलाकात अभी कल होने वाली है 3 बजे कॉफी ब्रेक में, एंड देन 4 बजे ड्राइव शो में. बाय.

0: अमी ने बनाया जो जो हमी से बिखर गया,
1: आओ नई ईंटों से वही आशियाना बनाए।
2: Happy hour on Hum. Keep calm because Punjabi swag is on.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम शॉप एंड स्कैन टू विन अ शेयर ऑफ $800,000 एट वूलवर्थ्स। Just buy 3 participating products and scan your everyday rewards card for your chance to win instant money off your shop. In store only at Woolworths. T's and C's apply.
2: From a change in geopolitics to changes in the weather to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing in association with RNZ News. Change is in the air.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
3: Moisture और ventilation का problem लगता है।
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
6: Okay, listen up team, we've got a bloody important game next week, so I expect everyone at training on Thursday, no exceptions.
7: Sorry coach, we've got a bloody important meeting then.
6: What bloody important meeting?
8: We're giving blood and plasma as a blood group.
6: Oh, what didn't you say?
9: This National Blood Donor Week, get your blood group together to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz now to see if you can donate, book and then send that bloody important meeting invite. Give blood. Give plasma. Save lives.
10: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
11: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. The National Party has backtracked on its postnatal announcement to make all mums immediately entitled to a 3-night hospital stay. Leader Christopher Luxon saying it will be phased in over the next 3 years. A 26-year-old man appeared in court today charged with murder following the discovery of a Northland woman's body, which was found last night in Whiranaki, 6 kilometres from her home. And a southern right whale has this afternoon been freed from a craypot line off Stewart Island. The mammal had been tangled in the line for at least 4 days. The craypot had anchored the whale to one spot. In sport, the Crusaders will again be backed by a sellout crowd as they take on the Blues late on Saturday afternoon in the Super Rugby Pacific qualifying final. And Rugby League with Machinery House, the NRL, former Kiwis playmaker Kieran Foran's success as interim head coach of the Sea Eagles has been rewarded, Manly confirming Foran in the permanent role until the end of the 2029 season. And some showers forecast for Roland Garros as the quarterfinals start to play out at the French Tennis Open overnight.
10: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari good brands nahi hai.
10: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
13: गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं मैं क्रिश, आ गया हूं आपका साथ देने के लिए। लॉन्ग वीकेंड के बाद अब फाइनली ट्यूसडे आ गया है और आई एम श्योर काम निपटाने के बाद आप घर पर पहुंच चुके हैं, आराम कर रहे हैं। और आज नाइट कैफ़े में मैं आपका स्वागत करता हूं और शुरू करने जा रहा हूं आपके लिए द मोस्ट अवेटेड, जो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और काफ़ी अच्छे फीडबैक आपसे मिल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, थैंक यू, अबाउट आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ कोक स्टूडियो रीलोडेड। वेलकम टू कोक स्टूडियो रिलोडेड, आपका स्वागत करता हूँ। इस्तकबाल है आप सभी का, हमारे प्यारे लिसनर्स जो कोक स्टूडियो भारत और कोक स्टूडियो पाकिस्तान के गाने पसंद करते हैं। आज कुछ नए गाने भी लेकर आए हैं या ऐसे गाने जो आपने कम सुना है वो भी आपके लिए पेश करेंगे। एक के बाद एक आपके फेवरेट कोक स्टूडियो आर्टिस्ट के गाने भी रहेंगे। कुछ और भी जानकारी आज हम लेकर आए हैं जो कोक स्टूडियो पर हम करेंगे आपके साथ में, आपका नॉलेज बढ़ाएंगे अबाउट दिस अमेजिंग कॉन्सेप्ट जिसमें रीजनल म्यूज़िक को बढ़ावा दिया जा जा रहा है और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है और अलग अलग विभिन्न आर्टिस्ट के गाने को भी लेकर आया जा रहा है। तो ये सभी कुछ होगा, लेकिन कुछ गाने पहले आपको सुनाते हैं। वेलकम टू कोक स्टूडियो रीलोडेड।

0: Cork Studio Reloaded on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Coke Studio Reloaded, aapke liye main pesh kar raha hoon. Aur aaj main lesser known facts aapko bataunga aur interesting insights bataunga about Coke Studio Reloaded. Pehle to Reloaded ka matlab new season nahi hai, but a rebirth of existing music. A music industry terms mein, Reloaded is often used jab koi album ya project ko release kiya jata hai with remixes ya alternate versions ya bonus tracks. Rather than a completely new material. Jaise DJ projects on cue reloaded ko use kiya jata hai, is term ko use kiya jata hai to refresh earlier tracks with new production layers. So in the context of Coke Studio style branding, reloaded ka matlab hai ya signal karta hai, repackaging ya reinterpreting already released musical ideas jo full creative mode mein aata hai. और शायद ये फुल क्रिएटिव रिबूट ना हो, लेकिन बहुत क्रिएटिविटी के साथ ये भरा होता है. इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोक स्टूडियो रिलोडेड ये एक ऑफिशियल ग्लोबल सीजन टाइटल नहीं है. बहुत ही जल्दी इस पर जानकारी रहेगा आपके लिए. फिलहाल कोक स्टूडियो भारत और कोक स्टूडियो पाकिस्तान के प्यारे गाने आपके लिए हम शामिल करने जा रहे हैं. बैक टू बैक सॉन्ग्स आप सुने. दो गानों के बाद में और भी जानकारी के साथ मैं आपके साथ जुड़ता हूँ. कृष का साथ है

Studio Reloaded. कोक स्टूडियो रिलोडेड आप सुनते हैं ट्यूजडेज को 8 टू 9 पीएम के बीच नाइट कैफे के अंदर. ये बहुत ही प्यारा सेगमेंट होता है जो मुझे बेहद अच्छा लगता है आपके लिए प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना. कोक स्टूडियो रिलोडेड ये एक ऑफिशियल ग्लोबल सीजन टाइटल नहीं है, जैसे अनलाइक ऑफिशियल फ्रेंचाइजेस जैसे कोक स्टूडियो पाकिस्तान या कोक स्टूडियो भारत. रिलोडेड इज नॉट ए स्टैंडर्डाइज कोक स्टूडियो सीजन नेम वर्ल्ड वाइड, और इंस्टेड ये काफ़ी फैन यूज्ड या मार्केटिंग स्टाइल लेबल है जो sometimes use kiya jata hai for remix versions of Coke Studio songs ya anniversary compilations ya phir best of collections ya reimagined performances jo hote hain. To if you see Coke Studio Reloaded, it usually refers to reinterpretations, na ki koi new official franchise branch yahan par hai. Kuch der mein main aapko ye bhi bataunga ki Coke Studio's biggest hidden trend kya hai, और क्या इसका सबसे हिडन बात है, फैक्ट है, इस पर मैं आपको जानकारी दूंगा जो लेसन नो वन फैक्ट्स में इंक्लूड किया गया है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, कुछ और प्यारे कोक स्टूडियो रिलोडेड गाने आपको सुनाते हैं.

मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर

0: Cafe on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki duniya mein already bahut sare perfect polished Instagram friendly stories hain aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw, emotions hote hain real aur conversations hote hain bina mask ke.
3: Raja, mantri, chor, sipahi sab yahan aate hain.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
4: At Big Save, we work hard every day to keep our whiteware prices low, so you can always get New Zealand's best value, washing machines, dryers, fridges and dishwashers. And today we have big whiteware deals. Get a Robinhood 6.5kg washing machine only $3.98, or a Samsung 310-litre fridge only $8.99. Need it today? No worries. We have heaps of stock. Take it home today. Only at Big Save.
5: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just $289. Heat pump dryer just $599. All-in-one washing machine and dryer $799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
2: TradeDepot.co.nz. Night Cafe on Hum. Coke Studio Reloaded.
6: अमेजिंग कोक स्टूडियो सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कोक स्टूडियो रिलोडेड प्रोग्राम जारी है. आज 2 जून है और ट्यूसडे नाइट का ये सफ़र हमारे साथ है. कोक स्टूडियो का जो बिगेस्ट हिडन ट्रेंड है विच एंड दैट इज़ रिसाइकलिंग थ्रू कोलाबोरेशन. द को आइडिया बिहाइंड कोक स्टूडियो इज़ की ग्लोबली इज़ ऑलरेडी रिलोडिंग म्यूज़िक इन अ क्रिएटिव सेंस. मतलब इसलिए नाम इसका हो जाता है कोक स्टूडियो रिलोडेड बिकॉज इट टेक्निकली रिलोड्स म्यूजिक इन अ वेरी क्रिएटिव सेंस, जिसमें ओल्ड फोक सॉन्ग्स को मॉडर्न अरेंजमेंट्स मिलते हैं. क्लासिकल सिंगर्स पेयर्ड विद पॉप या रैप आर्टिस्ट और प्रीवियसली नीच ट्रैक्स को मेनस्ट्रीम हिट्स बना दिया जाता है. इसलिए रिलोडेड इज ऑलमोस्ट ए मेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ द होल कोक स्टूडियो फिलोसफी. तो जैसे कुछ गाने को रीवर्क करके मेक इट इमोशनली एंड सोनिकली न्यू, ये कोक स्टूडियो गानों का काम है, जो अभी तक आई एम श्योर आपको पता चल रहा होगा. कुछ और गाने सुनाते हैं आपको और आप इस बार ध्यान से सुनिएगा कि क्या आपको लगता है कि जो हिडन ट्रेंड के बारे में मैंने बात किया है, क्या आप इन गानों में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. ज़रूर बताएं हमें 5599 पर टेक्स्ट करके.

0: इश्क भी आरा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बडिया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में, पर जिंदगी में सुकून।
1: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम।
2: Talk Studio Reloaded आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा। Reloaded इफेक्ट ये स्ट्रॉन्गर हुआ आफ्टर डिजिटल फर्स्ट सीजन्स। अर्लियर Talk Studio के फॉर्मेट टीवी स्टाइल प्रोडक्शंस थे विद फ्यूअर रिलीजेस पर सीजन, लेकिन न्यू वर्जन्स जो है पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश अब ज़्यादातर यूट्यूब फर्स्ट रिलीजेस के लिए जा रहे हैं, सिंगल ट्रैक ड्रॉप्स इंस्टेड ऑफ एपिसोड्स और हाई सिनेमेटिक म्यूजिक वीडियोज़ ये बना रहे हैं, और ये शिफ्ट एवरी रिलीज को स्टैंड अलोन रिलोडेड मोमेंट खाता है rather than part of a season. आज के लिए Talk Studio Reloaded में बस इतना ही, अगले हफ्ते मिलते हैं with more information and more songs.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

0: Night Cafe on Hum.
1: ए वॉल्यूम कम कर पापा जब जाएगा
2: ऊ भाई फू फुगड़ी फू यू लाइक मी एंड आई लाइक यू टू ऊ भाई फू फुगड़ी फू यू लाइक मी एंड आई लाइक यू टू ऊ भाई फू फुगड़ी फू यू लाइक

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: अनफिल्टर्ड ड्राइव के बारे में तो आपने सुना होगा, रिज़्बे और सैंडी के साथ बहुत ही वंडरफुल इंटरव्यू होते हैं अलग लोगों के साथ. WWE में क्या होता है, क्या ये स्क्रिप्टेड ड्रामा है या रियल फाइटिंग है, इस पर कुछ बातें होंगी. और इनका इंटरव्यू हुआ है WWE के फॉर्मर सुपरस्टार शंकी सिंह, एक 7-foot-tall रेसलर है ये, और हु मेड इट फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन ऑफ हरियाणा टू ग्लोबल WWE स्टेज. कुछ ऐसी बातें यहाँ पर होगी जो आप सुनना चाहेंगे. द ट्रूथ अबाउट WWE, क्या वो स्क्रिप्टेड है एंड व्हाट्स रियल. ब्रूटल जर्नी ऑफ गेटिंग इनटू WWE फ्रॉम इंडिया. लाइफ बिहाइंड द सीन्स एट द परफॉर्मेंस सेंटर. रिस्क, इंजरीज और फिजिकल टोल ऑफ एंटरटेनमेंट रेसलिंग. साथ ही में इनका टाइम विद सलमान खान जब इन्होंने फिल्म भारत में काम किया इनके साथ में, और अनटोल्ड स्टोरीज और लॉकर रूम रियलिटीज़ और थिंग्स जो फैंस को कभी पता नहीं चलता है. इनका ट्रेनिंग अंडर द ग्रेट खाली ये कैसा रहा, टू परफॉर्मिंग ऑन ग्लोबल स्टेजेस, इस पर भी बातें होंगी. तो आप टेक्स्ट करते हैं ड्राइव 5599 पर तो ऑडियो और वीडियो एपिसोड के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा. ये वीडियो प्रोडक्शन हो रहा है बाय इंस्पायर मीडिया, बाय इंस्पायर मीडिया वर्क्स, जो मार्केटिंग, रियल एस्टेट और इवेंट वीडियोस करते हैं. आप केतन से बातें कर सकते हैं फॉर फर्दर डिटेल्स. कुछ देर में ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट पर बातें करेंगे आपके लिए. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: का मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम
1: नाइट कैफे जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। रात 12 तक हमारा साथ रहेगा। विंटर के दौरान मेंटल वेलबींग रखना बहुत ज़रूरी है। विंटर ब्लूज़ जो कहते हैं, ये भी बहुत कॉमन होता है। लेस सनलाइट मूड और एनर्जी लेवल्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर काफ़ी लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। जब भी सनलाइट कम होता है, ग्लूमी डेज होते हैं, डार्क डेज होते हैं, तो ये मूड अफेक्ट करता है। जब मैं लंदन घूमने गया था विंटर के दौरान, आई बिलीव इट वॉज बिफोर लास्ट ईयर, तो शॉर्ट डेज में और ग्लूमी डेज और डार्क डेज में थोड़ा बहुत अलग लगता है, क्योंकि आपका हॉलिडे भी अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि मूड अलग हो जाता है ड्यूरिंग दोज टाइम्स। तो ये एक्सप्लेन करता है कि लेस सनलाइट से मूड और एनर्जी लेवल्स भी चेंज होते हैं। तो आप बाहर जाए ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स, इवन इफ़ इट्स क्लाउडी, रेगुलर मूवमेंट भी बहुत हेल्प करता है, जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या लाइट एक्सरसाइज। सर्कुलेशन को बूस्ट करता है और मूड को भी बना के रखता है। एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल भी आप रखें, जो आपके बॉडी को अडेप्ट करने का मौका देगा टू शॉर्टर डेज। और सोशली कनेक्टेड रहे, ये भी बहुत मैटर करता है, मोर इन विंटर देन पीपल रियलाइज। तो आप ये भी टिप्स अपना कर देखें। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। नाइट कैफे जारी है आपके लिए।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दूसरी तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: A lot of injuries happen on the weekend, so if you're out and about or just out in the backyard, have a and ask yourself, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.co.nz.
5: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट, squirrel.co.nz.
6: टाइम चेक।
7: हम स्टूडियो में, इट्स 10 PM.
6: To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
8: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. The government is tightening rules around council voting. Minister Simon Watts has announced changes to the Local Government Act to allow only elected councillors to vote on council committees. A 26-year-old man appeared in court today in relation to the death of a woman in Northland. An investigation is underway after her body was found at a Whananaki property overnight. Improvements to the country's supermarket duopoly issue are being described as baby steps. The Commerce Commission's annual report shows major chains continue to have an 80% hold. Head of groceries, Alice Hume, says it'll be some time before competitors solidify a place in the market. In sport, football updates brought to you by Hisense, and the World Cup begins on Friday week. Tomorrow at midday, the All Whites play a warm-up match against Haiti. Some injury concerns around midfielders Ryan Thomas and Joe Bell. Neither will play tomorrow. And in the NRL, it took a while, but the Sea Eagles have rewarded interim coach Kieran Foran for the run of 7 wins in 9 matches. Foran has the gig until the end of the 2029 season.
0: Sports News.
6: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
6: Night Cafe. Aapka Moment. Krishka Magic. Only on Hum.
7: You're listening to Night Cafe, only on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. और Night Cafe में मैं आपका स्वागत करता हूँ. Welcome back everyone. इस घंटे पर भी बहुत कुछ हम लेकर आएंगे. Energy और productivity tips during winter, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि किस तरह से winter के फेस से आप निकल पाएंगे या आप अपने आप को protect कर पाएंगे through this period जो अभी हमारे समक्ष आ चुका है, और किस तरह से आप कोल्ड एंड फ्लू से बच पाएंगे, या फिर मेंटल हेल्थ को किस तरह से आप बना कर रखेंगे, विंटर ब्लू से बच पाएंगे, ऐसा कुछ मैं टिप्स लेकर आया हूँ. इट मे वर्क डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पीपल, लेकिन ऐसा ही टिप्स मुझे मिला है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा इसी घंटे पर. इन पर्टिकुलर एनर्जी और प्रोडक्टिविटी टिप्स पर मैं आपको जानकारी दूंगा, साथ ही में बॉलीवुड में क्या कुछ हो रहा है इस पर जानकारी भी हम लेकर आए हैं आपके लिए. अनन्या पांडे का डांस मेंटर ने स्लैम किया है सेलेक्टिव आउटरेज ओवर भारतनाट्यम फ्यूजन जो अभी सुर्खियों में है, इस पर भी जानकारी इसी घंटे पर मैं आपको दूंगा.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: होप यू एंजॉयड द बैक टू बैक सॉन्ग्स जो 30 मिनट्स के लिए हमने आपके लिए पेश किया. अमेजिंग लिस्ट ये भी था, अनुराधा पौडवाल, शान, श्रेया घोषाल, वरुण जैन और साथ में नूरन सिस्टर्स को आपने सुना और कैरलिसा मोंटेरो को आपने सुना शेखर के साथ में. तो ऐसे बहुत सारे प्यारे गाने थे, उम्मीद करता हूँ कि आपने इन्जॉय किया होगा. वैसे विंटर के बारे में बातें हो रही है तो एनर्जी और प्रोडक्टिविटी टिप्स के बारे में मैं आपको बता दूँ. कोल्ड वेदर कैन मेक यू फील स्लगिश, जो हर टाइम फील होता है जब विंटर आ जाता है. तो अपने डे को आप शुरू करें विद समथिंग वार्म और लाइट मूवमेंट भी होना काफ़ी हेल्पफुल है. ब्रेक टास्क इंटू स्मॉलर चंक्स ताकि आप लो एनर्जी बर्नआउट को अवॉइड कर सके और वार्म लाइटिंग इंडोर्स भी एनवायरमेंट्स को काफ़ी लेस हार्श फील करा सकता है और फोकस इम्प्रूव कराएगा. अगर आप मील प्लान्स कर रहे हैं तो प्लानिंग मील्स और आउटफिट्स अहेड ऑफ टाइम, ये भी डेली फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ कुछ और प्यारे गाने आपके लिए. कुछ ही देर में ब्रेकफास्ट कैचअप के बारे में बातें करेंगे, एक और पॉडकास्ट जो आप सुन पाएंगे विजय और पूजा के साथ में.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
4: Night Cafe. आपका moment. Krish का magic. Only on Hum.
6: You are listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। पॉडकास्ट आप सुन पाएंगे हमारे अनाउंसर्स द्वारा। अनफिल्टर्ड ड्राइव के बारे में मैंने आपको बताया और ब्रेकफास्ट कैचअप एक और पॉडकास्ट है जो आप सुन पाएंगे। कन्वर्सेशंस विद विजय और पूजा, अलग अलग मुद्दों पर बातें होती है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो। अगर आप टेक्स्ट करते हैं BF5599 पर तो आप कैचअप कर पाएंगे ऑन द पॉडकास्ट। तो BF टेक्स्ट करें ना भूलें 5599 पर, जहाँ पर ब्रेकफास्ट कैचअप पॉडकास्ट के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, लिंक मिलेगा, डिटेल्स मिलेंगे और क्या कुछ बातें होती है, क्या किन टॉपिक्स पर बातें होती है, कन्वर्सेशंस होती है विद विजय

नाइट कैफे जारी और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। रात 12 तक हमारा साथ रहेगा। और ह्यूमन ऑर्गनॉइड्स ने रिवील किया है कि किस तरह से इरिवर्सिबल नर्व डैमेज को रिवर्स किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम की ये रिसर्च है, इस पर जानकारी मैं आपको अगले घंटे पर दूंगा। साथ ही में बलून डॉग ये एक इवेंट होने को है, इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट ये लग रहा है जो हमारे पास है आपको बताने के लिए। आपको बस हमारा साथ देना है। ये सभी कुछ अगले घंटे पर लेकर आएंगे। टॉप ऑफ द आवर पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए रहेगा और फिर 30 मिनट्स ऑफ नॉनस्टॉप म्यूजिक भी लेकर आएंगे तुरंत उसके बाद।

0: Coffee on Hum. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
1: नाइट कैफे जारी है और हमारे जितने भी प्यारे लिसनर्स हैं, वेलकम बैक टू द शो. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं और मिडनाइट तक हम आपके साथ देंगे. हमारा फाइनल आवा आ गया. देखते देखते बहुत तेज़ी से टाइम भागता जा रहा है. 8 PM ऐसा लग रहा था अभी शुरू हुआ था और अभी 11 PM होने को आया. इट्स पास्ट 11 नाउ. न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद में आपके लिए हम शुरू करने जा रहे हैं नॉन स्टॉप म्यूज़िक फॉर 30 मिनट्स. नेहा कक्कर को आप सुन पाएंगे. मोहित चौहान अय्यर रहमान का ये पहला गाना आप सुनेंगे. अलका याग्निक का भी एक गाना है, बहुत प्यारा. कविता कृष्णमूर्ति, आइकॉन सचिन जिगर, अरिजीत सिंह, सूची, ऐसे कलाकारों की आवाज़ में गाने हैं. याद रहे इस घंटे पर कुछ साइंस रिलेटेड जानकारी लेकर आएंगे. साथ ही में आपको बताएंगे अबाउट इंडियन इंक थेटा कंपनी का एक बलून डॉग इवेंट आने जा रहा है. ये भी रहेगा आपके लिए.

से ऑन हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

0: Cafe on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। सामाजिक सूचनाएं भी आप तक हम लेकर आते रहते हैं। दिव्य शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना है कि रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एवेन्यू मनुकाऊ में आयोजित किया गया है 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ। ये 13 जून को होने जा रहा है। सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है और प्रोग्राम की शुरुआत होगी सुबह 7 से लेकर 8 बजे। स्थापना पूजा होगी, फिर 8 AM to 6:30 PM चालीसा पाठ होगा विभिन्न मंडलियों द्वारा। हवन और आरती भी यहाँ पर होगी, प्रसाद और महाप्रसाद की भी प्रबंध की गई है यहाँ पर आपके लिए, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और भी जानकारी के लिए 021-0299-1219 पर आप संपर्क कर पाएंगे। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

नाइट कैफे यहीं पर खत्म होता है दोस्तों, आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच। अब मुलाकात होती है कल वेंसडे नाइट, हम लेकर आ जाएंगे, बहुत कुछ रहेगा प्रोग्राम में। अपना बहुत ही ख्याल रखें, कृष का बहुत सारा प्यार, गुड नाइट एवरीवन।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी, कॉल 9984699 34 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।

0: address pe on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन

0: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
1: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
0: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
1: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
2: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
3: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
4: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी गुड ब्रांड्स भी है।

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
5: Kyun? Kya hua?
4: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne documents mange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 AM।
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: Playing Bollywood's biggest hits.

चाहे आप हमके दें चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755 मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: समझे हैं? हाँ?
1: बढ़िया।
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड।
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: Moisture और ventilation का problem लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
4: Night flight on.

0: radio.
1: Streaming on Rover.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz।
5: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम,
6: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम,
7: किनिया किनिया गल्ला वे तू कर दा।

भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

फिरो, अपने वस्त्र नहीं अपना मन ही फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कर...

आपकी महान करुणा के लिए धन्यवाद। इन श्रोता मित्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय में एक नई उमंग भर दो, आपके आनंद को अपने में ये भरपूरी से पाए, आपके आश्चर्य कर्म करने वाले हाथों में हम इन्हें सौंपते हैं। इनके दिल में जो बोझ है, जिस समस्या का ये सामना कर रहे हैं, उस पर इन्हें विजय बनाओ। इनके आत्मिक जीवन में, परिवार में, व्यवसाय में और जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु हम आपकी शांति को घोषित करते हैं। अविश्वास या निराशा लाने वाली, आशीषों को रोकने वाली तमाम दुष्ट शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम बांधते हैं। प्रतिदिन ये आपकी अनंत आशा में बढ़ते जाए, यीशु के नाम में।

0: सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट। हम टाइम चेक, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
2: Morning, I'm Grace Culkin with the latest at 6. Baby steps in the supermarket competition are being celebrated. A report shows some smaller retailers are starting to pop up, but large chains remain king. Finance Minister Nicola Willis says there are good pickings at the moment.
3: We do have players right now who'd say, well, we are that third player and we want to see them expand further to have more of a share of the New Zealand market.
2: A 40-year-old man will appear in court after fleeing from police spanning Auckland to Hamilton. The vehicle was snapped speeding in Manurewa on Monday. However, officers didn't pursue it. The registration was recorded after it was seen heading south before being spotted in Hamilton East. The driver again fled, struck a member of the public's car and ran into a property before being coaxed out after an hour. Household lending's on the rise, driven by personal and vehicle loans. Centrix found non-mortgage lending's risen more than 14%. Spokesperson Monica Lacey says fewer borrowers are falling behind on repayments.
4: Individuals who own homes have had a bit of relief with lower interest rates, so they've probably had a little bit more money to play with and been able to keep on top of their bills.
2: Local Government NZ worries new legislation will have an impact on good decision making. Cabinet wants to stop unelected members and council committees from getting a vote. In sport, Kane Williamson is savouring one last visit to Lords. The Black Caps face England at the home of cricket in tonight's first test, which is set to be the veteran batter's last at the historic ground.
5: Yeah, it is, and you're delaying my lunch, actually, which isn't very good of you.
2: Play set to start at 10 p.m. Men's second seed Alexander Zverev is through to the French Open semi-finals as he chases his first Grand Slam tennis title.
0: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
6: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
7: सुवफीजी के स्वर्गीय राम शरण की पत्नी यानी महेंद्र शरण, शैलेंद्र शरण, उषा मारन, सुमन शर्मा और प्रवीण वर्मा की मां उमावती शरण की मृत्यु ऑकलैंड अस्पताल में हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-1191-107 पर संपर्क कर सकते हैं। सुवफीजी के स्वर्गीय राम शरण की पत्नी यानी महेंद्र शरण, शैलेंद्र शरण, उषा मारन, सुमन शर्मा और प्रवीण वर्मा की मां उमावती शरण की मृत्यु ऑकलैंड अस्पताल में हो गई। अंतिम संस्कार आज 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 021-1191-107 पर संपर्क कर सकते हैं।
6: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
8: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: आज के मौसम के लिए कहा गया है कि ज्यादातर बारिश जो है ये होगी और शाम के समय तो वैसे साफ मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन मॉर्निंग फॉग ये भी आज प्रिडिक्ट किया जा रहा है। सनराइज होगा अगले घंटे 7:25 AM पर, सनसेट 5:13 PM पर, करंट टेम्परेचर 14.3 डिग्रीज, हाई ऑफ 18 एक्सपेक्टेड है बाद में, जबकि ओवरनाइट टेम्परेचर 10 डिग्रीज तक रहेगा।
10: Greens and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast catch up.
7: 4 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर, नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 FM और रोवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सबसे पहले आपको।
9: गुड मॉर्निंग आप सभी को भी, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
7: होपफुली कल का दिन आपका बढ़िया गया होगा और अब एक नई सुबह के लिए, एक नए दिन के लिए आप तैयार होंगे और इस नए दिन में आपके साथ हम शामिल रहेंगे इस दिन के शुरुआती सफर के लिए, चार घंटों के लिए जो चलता रहेगा हम पर।
9: Absolutely. तो उम्मीद है कि आज के इस दिन का मजा उठाने के लिए आप एकदम रेडी, बिकॉज वी आर रेडी। एंड ब्रेकफास्ट कैचअप जो कि हमारे सफर की शुरुआत की, हमारे सफर की शुरुआत ब्रेकफास्ट कैचअप के साथ ही हम करते हैं, तो वी विल डेफिनेटली बी डूइंग अ क्विक कैचअप खबरों के साथ, क्या कुछ हुआ है विल लेट यू नो। ग्लोबल हेडलाइंस में बातें करेंगे दुनिया भर की खबरों में क्या कुछ जो है ये सामने आया है आज सुबह सुबह। एंड ऑफ कोर्स आज का सनी साइड अप, ये आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं ब्यूटीफुल स्टोरी येट अगेन, जो आपका यू नो दिन जो है बना दे पॉजिटिविटी से भरा और ह्यूमैनिटी से भरा, आपके लिए हम लेकर आएंगे।
7: तो तमाम चीजें हैं और इन सभी चीजों के बारे में बारी बारी से हम बातें करते रहेंगे। सफर अगर आप शुरू कर रहे हैं अपना अभी, तो ऑल द बेस्ट आपको हम कहना चाहेंगे, या फिर थोड़ी देर बाद है तो मेक श्योर अपनी तैयारियों के साथ अपने घर से आप रवाना हों।

0: Sunny Side Up.
1: 12 मिनट हुए हैं 6 बजकर आज का जो सनी साइड अप और जो स्टोरी है इट ड्वेल्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ योर लव्ड वंस. क्या अहमियत लोग हमारी ज़िंदगी में रखते हैं. तो सिडनी की एक फैमिली की ये कहानी है जो परिवार अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लगा हुआ था और सेलिब्रेशंस या फंक्शंस जो हैं जो भी आप कहना चाहें शुरू होने से दो दिन पहले जो दुल्हन थी उसकी बूढ़ी दादी को स्ट्रोक जो है ये हो गया. शी सफर्ड अ स्ट्रोक और शी वॉज कन्फाइंड टू अ रूम आईसीयू रूम इंटेंसिव केयर यूनिट में उनको भर्ती करना पड़ा और उसकी वजह से ये तो कन्फर्म हो गया कि दादी जो है ये फंक्शंस नहीं अटेंड कर सकती थी. और दुल्हन जो थी वो उनका बहुत लगाव था अपनी दादी से. शी वॉज जस्ट हार्ट ब्रोकन स्टेटिंग दैट शी कुडंट सेलिब्रेट वाइल हर ग्रैंड मदर ले इन अ स्टेराइल हॉस्पिटल वार्ड. अब परिवार वालों को भी ये एहसास हुआ कि एक और घर की जो बुज़ुर्ग हैं वो अस्पताल में हैं, दूसरी तरफ ये फंक्शन अब दो ही दिन रह गया है, क्या कर सकते हैं. तो हॉस्पिटल वालों से उन्होंने बातें जो है ये की एंड दे वे रियली एम्पैथेटिक अबाउट व्हाट द सिचुएशन वाज लाइक. तो उन्होंने क्या किया, फैमिली जो है वो एक छोटे से बाउल में हल्दी लेकर गए इंटेंसिव केयर यूनिट में. मैसिव पार्टी या फिर गाना बजाना शोर शराबे के बजाय दुल्हन जो है बिस्तर के कोने पर बैठी और जो हल्दी है वो धीरे से अपनी दादी के आगे किया और कांपते हुए हाथों से दादी ने अपनी पोती के चेहरे पर पहली हल्दी जो है ये लगाई.
2: जस्ट एज अ रिचुअल की वो शादी का पहला रिवाज उन्होंने किया.
1: हाँ, और दैट शी वाज नॉट फॉरगॉटन एंड दैट शी वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट वेडिंग.
2: इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी एंड आई वुड टेल यू व्हाई. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं हमारे फैमिलीज में अगर एल्डर्स हों तो सर्टेन ओकेजन में उनका इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत होता है बिकॉज दे नो लाइक सर्टेन चीज़ें रिलेटेड टू आवर कल्चर के चाहे ऐसा होता है ऐसा होता है एंड बहुत एंथुजियाज्म के साथ वो यू नो गाइड करते हैं, वो बताते हैं ऐसा करते वैसा करते हैं. बट इन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस कहीं ना कहीं हम हमारे एल्डर्स को भूल जाते हैं. बहुत से ऐसे ओकेजन्स होते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे शायद हम उनको उस तरह से इन्वॉल्व नहीं करते हैं. दे विल बी सिटिंग ऑन अ चेयर इन अ कॉर्नर एंड अदर्स विल बी हैविंग फन जबकि उनके बारे में कोई याद ही नहीं कर पाता कि वो भी है वहाँ पर. दे ऑल्सो डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन, दे ऑल्सो डिजर्व टू एन्जॉय दैट सेलिब्रेशन एंड इट्स गुड टू सी कि ऐसे में ये कहानी सामने आई है जहाँ पर इट वॉज सच अ हार्ड सिचुएशन फॉर द फैमिली. तो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भी और कहीं ना कहीं जो दादी है उनको ये याद दिलाने के लिए भी कि यू आर स्टिल पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस. शादी हो रही है आपके बिना वो उतना मज़ा नहीं है बट डेफिनेटली आपको हम इसमें यू नो बनाए रखे हैं, जोड़े रखे हैं एंड वीड लव फॉर यू टू बी पार्ट ऑफ इट. इट्स डेफिनेटली अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी.
1: तो सनी साइड अप हर सुबह आपके लिए अंदर ब्रेकफास्ट शो विद विजयन पूजा हम लेकर आते हैं. 16 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर, थोड़ी देर बाद ग्लोबल हेडलाइंस हम आपके लिए लेकर आएंगे.

0: रावण में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
4: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: Here's five ways to beat rising fuel prices. Your hop card, credit card, debit card, smartphone or smartwatch. Because you can tag on to buses, trains and most ferries with any of them. Just turn up, tag on and save when you ride with Auckland Transport.
7: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
8: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden queen size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Global Headlines.
12: आज सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस में इसराइल और लेबनान के बीच US स्टेट डिपार्टमेंट में हाई स्टेक बातचीत चल रही है, जहां लेबनीज अधिकारियों के मुताबिक हेजबोला ने बेरूत पर हमले रोकने के लिए US के सीज फायर प्रपोजल को मंजूर कर लिया है। ईरान और वाशिंगटन के बीच बातचीत जारी है, पर ईरान के एक निगोशिएटर ने इसराइल के अटैक्स न रुकने पर हालात और बिगड़ने की वार्निंग दी है। जबकि US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का कहना है कि इस न्यूक्लियर डील में महीनों लग सकते हैं। इस बीच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर गर्मा गर्मी और बहस हुई, जहां ट्रंप ने इसराइल पर लेबनान ऑफेंसिव को कम करने का दबाव बनाया ताकि ईरान के साथ चल रहे नेगोशिएशंस खराब ना हो। वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेस आज बाद से लेकर 7 जून तक भारत के वर्किंग विजिट पर रहेंगी, जहां उनके साथ एक हाई लेवल मिनिस्टीरियल डेलीगेशन भी मौजूद होगा। एक समिट के पोस्टपोन होने के बाद उनका यह नया दौरा स्केड्यूल किया गया है। भारतीय सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि वाइस प्रेसिडेंट वेनेजुएला और इंडिया के बीच संबंधों को पुनर्स्थापित करने पर बातचीत करेंगे। फिजी में फिजी वुमेन्स क्राइसिस सेंटर में प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने पहुंचकर लोगों को पब्लिक प्लेस में प्रदर्शन न करने की हिदायत दी और कहा कि यह पब्लिक सेफ्टी के लिए एक खतरा हो सकता है। फिजी विलेज की एक रिपोर्ट के अनुसार सेंटर की कोऑर्डिनेटर शमीमा अली ने पुलिस के इस कार्रवाई और पब्लिक ओडा एक्ट के यूज की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोगों के पीसफुल प्रोटेस्ट करने के डेमोक्रेटिक राइट पर रोक बताया है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच दूसरा ओडीआई जो है ये फिलहाल खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और 9 खिलाड़ी खोकर अपने इनिंग्स में 231 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम बैटिंग कर रही है और 36.3 ओवर्स में 7 खिलाड़ी खोकर 164 रन बनाने में कामयाब हुई है। इस मैच को जीतने के लिए 81 बॉल्स में पाकिस्तान को 68 रन की जरूरत है। ये रहे हैं सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
9: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
2: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ,
13: मैं लाऊं अपना ए गेम।
9: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: ऐसे लाजवाब और दिलकश गानों का ये बहुत ही आपका मनचाहा सफर जारी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है ये मैं पढ़ रहा था, तो सोचा आज सुबह सुबह आपके साथ भी ये शेयर कर लेते हैं। तो ये एक इंडियन बंदा है हु लिव्स इन नॉर्वे। उन्होंने सोशल मीडिया पर जाकर कुछ शेयर किया, जिसके बाद लोग जो हैं ये नॉर्वे की, वहाँ के लोगों की, वहाँ के कल्चर की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो आप हैं ना?
1: अरे हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी, आप अभी आप बोल रहे हैं, मैं बीच बीच में बोलूंगी तो आप डिस्टर्ब होंगे, इसलिए आई एम आल्सो पेशेंटली लिसनिंग, ताकि लोग भी पेशेंटली सुन सके ना।
0: इंस्टा पर आदित्य नाम के इस शख्स ने जाकर एक वीडियो शेयर किया है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और ये वीडियो जो है एक फ्लावर शॉप का है। फ्लावर शॉप जो है, अब दुनिया भर में हर जगह आपको फ्लावर शॉप्स मिलेंगे, तो ऐसी क्या बात है इस फ्लावर शॉप की जो नॉर्वे में है। द स्पेशल थिंग अबाउट दिस फ्लावर शॉप इज कि ये वीडियो उन्होंने रात को लगभग 10 बजे के वक्त बनाई।
1: अच्छा।
0: और उस समय पर शॉप के अंदर कोई शॉपकीपर नहीं था।
1: देन
0: द शॉप वॉज बेसिकली रनिंग ऑन ट्रस्ट कि लोग आएंगे, उनको अगर फूल की जरूरत है वो फूल लेंगे और पैसे जो हैं
1: वो रख कर चले जाएंगे।
0: हाँ, बेसिकली उन्होंने कहा कि द शॉप इज क्लोज्ड बट ऑल द फ्लावर्स आर केप्ट आउटसाइड। जितने पॉट्स थे उन्होंने लाकर बाहर रख दिए। एंड व्हाट दे डू इज दे ट्रस्ट पीपल इफ यू

0: really want to buy something, you can just pick it up. और उनके पास एक माउंट है जहां पर यू नो यू कैन जस्ट गो एंड पे इट. और उनको भरोसा है कि अगर आप फूल उठाते हैं या कोई भी चीज़ वहां से उठाते हैं तो उसके लिए आप पैसे भर देंगे.
1: यू नो ये स्टोरी जो है नॉर्वे की है, वहाँ की तारीफ तो हो ही रही है, बट यहाँ न्यूजीलैंड में भी ऐसा बहुत सी जगह पर हुआ है. इनफैक्ट यहाँ का भी एक वीडियो ऐसे वायरल गया जहाँ पर सम ऑफ द इंटीरियर एरियाज में जहाँ पर आई थिंक पीपल सो जो लोकल्स है वो अपने घर के बाहर ऐसे एक बेंच जैसा बना देते हैं या फिर एक शेल्फ जैसा बना देते हैं जहाँ पर दे पुट द फ्रूट्स एंड वेजीज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजीज वो ऐसे रख देते हैं एंड फिर प्राइस लिख देते हैं और फिर बाजू में एक डिब्बा जिसके ऊपर लिख देते हैं कि यहाँ पे आप पैसे ड्रॉप कर सकते हैं. एंड नो वन इज देयर, पीपल गो पिक अप द स्टफ एंड पुट द मनी इन एंड दे लीव. लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है जहाँ पर लोग सुपरमार्केट और रिटेल स्टोर्स के अंदर घुसकर ट्रोली ट्रोली भरकर सामान जो है बिना पैक करे निकल जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकते रहते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं कम से कम, तो उस सिचुएशन में शायद अभी ये चीज न्यूजीलैंड पर उतना फिट ना बैठे, बट इट हैज हैपेंड हियर एज वेल.
0: तो ऐसी है, और भी कई कहानियां हैं जो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे. समय की ओर देखिए, अभी 27:30 रह गए हैं 7 बजने में.
1: फिलहाल चलिए आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो हमारे पास आए हैं उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच. आज सबसे पहले मिस्टर मारामाटा, इनका मैसेज आया, इन्होंने कहा राम राम, जय श्री कृष्ण एवरीवन, हैप्पी वेंसडे, हैव अ ग्रेट डे. हमारी ओर से भी मिस्टर मारामाटा आज के इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं.
0: मैंडी, गुड मॉर्निंग गाइस, आपका मैसेज आया है, आपको भी इस दिन इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं.
1: एंड इनके अलावा आज देखा जाए तो हमारे पास एक और एक बड़ा प्यारा सा मैसेज आया है परमा महाराज जी की ओर से, हर सुबह की तरह इन्होंने भी आज हमें याद किया है. थैंक यू सो मच परमा जी, जय श्री राम, पूजा और विजय जी, गणेशा's ब्लेसिंग्स अपॉन यू ऑल, जय हो, आपको भी जय हो. थैंक यू आपके मैसेज के लिए.
0: गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हैव अ ब्लेस्ड डे अहेड, एंजॉय. कोमल, आपको भी अ वेरी हैप्पी वेंसडे.
1: और कोमल के साथ साथ आज बॉबी मान जी, इनका मैसेज आया है, मॉर्निंग पूजा एंड विजय, गणेशा's ब्लेसिंग्स एंड मे इट मेक दिस डे मेमोरेबल, एंजॉय, इन्होंने कहा है. थैंक यू सो मच बॉबी जी, आपको भी आज की सुबह की बुधवार की बहुत सारी शुभकामनाएं.
0: गुड मॉर्निंग विजय जी, पूजा जी, विशिंग यू अ वंडरफुल डे टुडे, जय श्री गणेश. विमलेश और प्रिया, आपको भी इस दिन की इस सुबह की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हम देना चाहेंगे.
1: एंड ऑल द वे फ्रॉम फीजी आइलैंड से हमें फिलहाल सुबह सुबह सुन रहे हैं अतीश्वर, ये काम पर जा रहे हैं, ड्राइविंग टू वर्क एंड लिसनिंग टू हम इन फीजी थ्रू रोवर ऐप. सो थैंक यू सो मच, आपके भी साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: Accurate traffic.
5: Mill Dalhousie and land packages.
6: Good morning. It's showery and cloudy today with a high of 18. A crash on the southwestern northbound has been sorted, but it's still slow around Cavendish Drive. On the northern, it's 51 minutes from Silverdale to the city, 25 from Constellation Drive. On the northwestern, half an hour from Massey. On the southern, it's half an hour from Monaco and an hour 10 from Drury.
5: Award-winning builders, wide range of homes. Milldale's Show Home Village, open daily. Everything's right here.
7: Fuel ke daam roz badh rahe hain aur smart drivers ab switch kar rahe hain. Future hai efficient driving ka aur Vecity Omoda Jeku ke saath ye shift aur bhi easy ho jata hai. Introducing the powerful J7 Super Hybrid System. Performance bhi, efficiency bhi aur all electric J5 EV. Zero emissions, maximum savings. Aaj hi Vecity Auto Group pahunche aur Jimmy Taylor aur unke expert team se mile. For more info, visit vecityautogroup.nz or search for Vecity Auto Group on socials.
8: If you want a good restaurant, you look for a queue. If you're looking for a new show, you watch what everyone's talking about. And when you're choosing a KiwiSaver fund, you look for the smart money. With thousands of Kiwis switching to the ANZ KiwiSaver High Growth Fund, search ANZ KiwiSaver to see if it's right for you. ANZ New Zealand Investments Limited is the issuer and manager of the ANZ KiwiSaver scheme. Find a copy of our product disclosure statement at anz.co.nz.
9: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
10: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
10: Available at selected branches. T's and C's apply.
4: To attract meaty deals on fresh quality sea meat and land meat, I deliver a meeting call.
11: Meat!
4: Meat Week on now at Pack and Save.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: 23 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में. 7 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में. एक और आपको हमने पिछले कुछ दिनों में बताया है कि कैसे सलमान खान, रणवीर सिंह और क्या नाम है, फरहान अख्तर, इनके बीच मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वहीं पर सलमान खान खुद जो है कि बड़े परेशान हैं इन दिनों.
3: क्या हो गया?
2: क्योंकि कुछ लोगों ने एक फिल्म जो है ये बनाई है और इस फिल्म को लेकर सलमान खान की लीगल टीम ने एक फॉर्मल नोटिस जो है फिल्म के मेकर्स को इशू किया है और उनसे कहा है कि इमीडिएटली वो स्टॉप कर दे इस फिल्म का जो रिलीज है और जितना भी प्रमोशनल मटेरियल है वो स्टॉप कर दें.
3: एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? ऐसा क्या हो गया?
2: इस फिल्म का नाम है काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी. और अब ऐसा समझा जाता है या माना जाता है कि ये पिक्चर जो है इज वाइडली इंस्पायर्ड जो सलमान खान का काफी समय से चल रहा था ब्लैक बक पोचिंग केस.
3: अच्छा, उससे इंस्पायर्ड है.
2: हाँ, या फिर कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश की गई है शायद. और नोटिस जो सलमान की लीगल टीम ने इशू किया है उसने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर जो हैं इस फिल्म के उनको चेतावनी दी है कि अगर दे डू नॉट कॉम्प्लाई तो फर्दर लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिए जा सकते हैं. और प्रोजेक्ट जो है इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं अमित जानी, जिन्होंने पहले भी कंट्रोवर्शियल रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर फिल्में बनाई हैं इंक्लूडिंग द मर्डर ऑफ टेला कन्हैया लाल. और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं काला हिरन को भरत एस श्रीनाथे. मैंने इनका नाम तो नहीं सुना. हालांकि उनको एक लीगल नोटिस दिया गया है लेकिन फिल्म मेकर्स जो हैं उन्होंने अभी हाल ही में फिल्म का जो फर्स्ट लुक पोस्टर है या फर्स्ट लुक पोस्टर है वो रिलीज कर दिया. Which shows a mysterious central character against a striking red and blue background. अब उसके बाद चलकर ये भी कहा जा रहा है कि later, maybe in a couple of weeks, इस फिल्म का टीजर जो है ये भी ड्रॉप हो सकता है.
3: Let's see what's the situation like. आने वाले दिनों में definitely शायद थोड़ी और details जो है ये सामने आए and then people would definitely be able to figure it out कि क्या ये सच में ऐसा सिचुएशन ही है जहां पर सलमान खान को इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा वरीड होना चाहिए. बट अभी फिलहाल के लिए जो भी सिचुएशन है, लाइक इफ इट्स लीगल, बेसिकली दे वास्ट इट लीगली कि ये स्टॉप हो जाए, इसे रिलीज ना किया जाए एंड ऑल गुड. तो अभी देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है. बट वट एवर द स्टोरी अनफोल्ड इज, आपके लिए ये डिटेल्स हम जरूर लेकर आएंगे विद मोर अपडेट्स वंस दैट कम्स थ्रू. अभी के लिए ये पूरी स्टोरी से मेरे दिमाग में एक सवाल आया. तो सोचा ये भी आपसे पूछ ले.
2: पूछो पूछो पूछो.
3: आज आपको क्या करना है? आपको हमें किसी एक मतलब आप अपने आप को क्या समझते हो, इसका जवाब आपको हमें एक फिल्म के टाइटल के साथ देना है.
2: मैं अपने आप को क्या समझता हूँ? अच्छा,
3: जैसे आप अपने आप को क्या समझते हैं, जवाब में आपको किसी भी मूवी का नाम बताना है.
2: मजदूर कि? जैसे कि फॉर एग्जांपल.
3: हाँ, एग्जांपल, गुड एग्जांपल. बट मजदूर जैसी कोई फिल्म आई थी?
2: हाँ हाँ, आई थी.
3: ओ अच्छा, मुझे नहीं पता, मुझे लगा आपने ऐसे ही बोल दिया. तो या वेरी गुड एग्जांपल. तो आप हमें बता सकते हैं ऐसे ही कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, जवाब में आपको किसी भी मूवी का नाम बताना है. जल्दी जल्दी अपने आंसर्स भेजिए और मेक श्योर अपना नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है? बीएफ लिखिए, फिर उसके बाद अपना आंसर, अपना नाम लिखकर हमारे पास भेज दीजिए आप 5599 पर. और थोड़ी देर बाद हम आपके मैसेजेस जरूर देखेंगे. देखते हैं कौन अपने आप को क्या समझता है सुबह सुबह.
2: सबसे क्रिएटिव आंसर किसका आता है वो भी देखेंगे. फिलहाल 19 मिनट रह गए हैं 7 बजने में.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao.
2: Accurate traffic.
3: Get free sports gear for your school.
4: Good morning, it's a showery and cloudy day with a high of 18, and an earlier crash on the southwestern has been sorted, but it's still slow around Mangere Bridge. On the northern, half an hour from Constellation Drive to the city. On the northwestern, it's 31 minutes from Massey. On the southern, 35 from Monaco and an hour 20 from Drury. And the run to the airport is taking half an hour at the moment.
3: Time to crunch on yummy apples and collect yummy stickers for your school.
5: Resene is New Zealand's most trusted paint brand, made in New Zealand for our unique conditions. Resene's quality, innovative paints and wood stains, plus the huge variety of colours, are ideal for homeowners and professional painters. Always choose Resene for your decorating projects.
6: Each season, our growers bring you only the freshest seasonal produce. Like New Zealand grown The Odd Bunch apples, 2kg, a fresh deal at just $4 each. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
7: If your business needs a boost, a push in the right direction, or some shelter to get you through, KiwiBank can help with Fast Capital, the digital loan application with real-time decisions. It's the fuel for your rocket, the wind in your sails, and an umbrella in the rain that allows you to grow, expand, or provide a buffer for your business. Search KiwiBank Fast Capital to apply online today. This is Kiwi. Eligibility criteria, lending criteria, T's and C's and fees apply.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Breakfast Catch Up. Throwback.
8: Throwback का वक्त अब हो चुका है on the breakfast show with Vijay and Pooja. अभी 11 मिनट या 10.5 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और आपने सवाल पूछा. A total of one person has answered the question.
9: I know. You don't have to announce it so loudly.
8: मैं देख भी सकती हूँ ना. सुनो. A total of one person has answered the question.
9: मैं देख सकती हूँ. मैं पढ़ सकती हूँ. मेरे को पढ़ना आता है. आई नो कि एक ही शख्स ने भेजा है, वो मेरे को दिख रहा है. आपको सबको बताने की जरूरत नहीं थी, बट नेवरदलेस हमने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो है ये पूछा था, और मुझे ऐसा लगा कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग है और लोग इसमें इंटरेस्ट लेकर भर भर कर अपने आंसर्स भेजेंगे, लेकिन मेरे को तो हमेशा ही गलतफहमी होती रहती है ऐसा लगता है. सो मैंने ये कहा कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, जवाब में आपको एक किसी भी बॉलीवुड फिल्म का टाइटल जो है ये बताना है हमें.
8: तो अभी तक रोनाल्ड आपका ही आंसर आया है. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव और अपना जवाब हमें भेजने के लिए शुक्रिया. और आप जो बाकी लोग हैं आप अपने जवाब भेजें. 7 बजे के बाद अब हम फिर से कोशिश करेंगे, होपफुली तब तक कुछ और आंसर्स आ जाएं एंड वी हैव समथिंग टू शेयर.
9: लेट्स सी हाउ इट गोज. और हाँ, कुछ बातें करने को हमें भी मिल जाएंगी ना. जो हम आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा आपकी ओर से भी कुछ आ जाए तो मजा आ जाता है. फिलहाल चलिए आज का सबसे पहला थ्रोबैक. लेट्स एंजॉय दिस अमेजिंग अमेजिंग सॉन्ग फ्रॉम अ सुपर अमेजिंग मूवी जिसके पास काफी रिकॉर्ड्स भी है. इनफैक्ट द मोस्ट नंबर ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स इस फिल्म ने जीते थे जब ये फिल्म फेयर अवार्ड्स में जिस साल नॉमिनेट हुआ था. और उसके अलावा इस फिल्म के सभी गाने बहुत खूबसूरत है. इस फिल्म से ऋतिक रोशन बन चुके थे एक ओवरनाइट सुपरस्टार. कहो ना प्यार है 2000 में आई थी, सन 2000 में, और उसी का ये टाइटल ट्रैक. लेट्स एंजॉय उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: क्लोज टू 15 डिग्रीज टेम्परेचर अभी ओकलैंड में आप फील कर रहे हैं. आज का हाई 18, ओवरनाइट कम से कम 10 डिग्रीज. कुछ बारिश होगी सुबह के समय, पॉसिबिलिटी ऑफ सम हैवी फॉल्स ऑल्सो. बाद में चलकर मौसम में सुधार. सनसेट 5:13 पीएम पर आज का होगा.
0: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून.

0: मॉर्निंग मैडनेस में आपका स्वागत हम कर रहे हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर और इस घंटे तो तमाम चीजें एज यूजुअल जो होती हैं वो तो होती रहेंगी लेकिन बड़ी मिन्नतों के बाद एक और शख्स जो है वो हम पर मेहरबान हुए
1: हाँ थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए प्रीतेश आपकी मेहरबानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पर चलो ये एक कोशिश रही हमारी ओर से पर समझ में आ गया कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है एटलीस्ट वी कैन फिगर इट आउट दिस वे एज वेल सो प्रीतेश एंड रोनल्ड थैंक यू सो मच वंस अगेन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और अभी इस घंटे वैसे आपके लिए और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इनफैक्ट एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट हमारा सेलिब्रिटी अलामगी हम लेकर आएंगे सो विल सी कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं और कितने लोग हमें सही जवाब देते हैं
0: तो पहले रोनल्ड का और प्रीतेश का जवाब पढ़ देते हैं आपने कहा था कि आप अपने आप को एक फिल्म के टाइटल में आइडेंटिफाई कीजिए बेसिकली
1: हाँ मैंने ऐसे तो नहीं बोला था मैंने बोला था कि आप अपने आप को क्या समझते हैं ये जवाब में बेसिकली आपको एक फिल्म का नाम हमें देना है
0: तो रोनल्ड ने कहा बाजीगर
1: क्या बात है भाई हार कर जीतने वाले को रोनल्ड कहते हैं आज से शायद
0: और प्रीतेश ने कहा मैं हूं ना समझता हूँ कि मैं हूं ना
1: ये समझते हैं कि हर सिचुएशन में यही जिम्मेदार होते हैं इसलिए मैं हूं ना
0: सो थैंक यू सो मच आपके आंसर्स के लिए और कई सवाल जैसे आपने कहा इस घंटे भी आपके लिए लेकर आएंगे ये मैंने पढ़ा आई रियली डोंट नो कि ये कितने लोगों के लिए अप्लीकेबल होगा क्योंकि इट डज नॉट अप्लाई टू मी एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि जो लोग अपने लेफ्ट साइड पर सोते हैं बेसिकली स्लीपिंग ऑन देयर लेफ्ट साइड उनको ज्यादा नाइट मेयर्स आते हैं अराउंड 40-41% इन कंपैरिजन टू दोज जो अपने राइट साइड पर सोते हैं
1: नाउ आई स्लीप ऑन माय लेफ्ट आई लाइक आई डोंट नो व्हाई बट आई हैव दिस थिंग कि आई स्लीप ऑन माय लेफ्ट राइट साइड पे बहुत कम बट मेरे को नाइट मेयर्स तो नहीं आते हाँ कभी कभी आते हैं बट ऐसे ऐसे लाइक उतना आई कांट कंपेयर इट विद दिस राइट साइड स्लीपिंग हैबिट बिकॉज आई डोंट स्लीप ऑन माय राइट सो आई डोंट रियली नो
0: या तो वही
1: पर नाइटमेयर्स आते हैं वो बात सच है मतलब ऐसे ऐसे सपने आते हैं मेरे को कि पूछो ही मत कभी कभी उनका मतलब मैं समझ भी नहीं पाती हूँ बट या इट डज हैपन बट आई कांट कंपेयर इट आई कांट से कि इट्स ट्रू और नॉट ट्रू बिकॉज आई डोंट स्लीप ऑन माई राइट टू कंपेयर इट
0: तो ऐसे कई स्टडीज जो हैं ये की जाती हैं और उन पर कुछ बातें जो है ये हम करते रहते हैं कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके लिए ढूंढ कर लेकर आते हैं
1: तो उम्मीद है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है इससे सीखना सही कुछ जानकारी ना सही लेकिन मज़ा आपको ज़रूर आए अगर ऐसा आपकी सिचुएशन में हो कि यू आर नॉट रियली लर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट यू आर इन्जॉइंग इट वो भी हमारे लिए काफ़ी है फिलहाल चलिए अब आप इसके साथ बढ़ते हैं थोड़ा और आगे और लेकर आते हैं आपके लिए आज का इस सफर का पहला ये गाना बट डोंट फॉरगेट कि थोड़ी देर बाद यो राशि वाइब्स हम जरूर लेकर आएंगे
0: बर्थडे और एनिवर्सरी ग्रीटिंग्स अगर आपने अभी तक नहीं भेजे हैं हमारे पास यू गॉट टाइम 7:30 बजे के बाद हम आपको विश करेंगे सो मेक श्योर 5599 पर अपने मैसेजेस आप हमें भेज दें Wow. Yeah.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
0: Rashi Vibes.
2: So here are your Rashi Vibes for today. सबसे पहले मेष यानी एरिस, आज आपके लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा, ऑफिस में बॉसेस आपके काम से बहुत खुश रहेंगे, लेकिन कोई पुरानी बीमारी जो है ये आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है और लीगल प्रॉब्लम्स अगर कोई था तो ये भी दूर होगा आज।
3: वृषिनी टॉरस, आज आपके लिए बताया गया है रुके हुए कामों में रफ्तार आएगी, घर बाहर दोनों ही ओर आज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर पाएंगे, दूसरों के काम में आप यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेके, अच्छा हाँ उनका काम नहीं हुआ तो डोंट वरी आई विल गेट इट सॉर्टेड, ऐसी कोई जिम्मेदारी आपको लेने की जरूरत आज बिल्कुल भी नहीं है। और सलाह दी जा रही है आपको कि आप अपनी बातों पर थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि कभी कभी आपकी जो बातें होती हैं भले ही सच्चाई से भरी हो लेकिन कुछ लोगों के लिए हार्ड टू डाइजेस्ट, जिसकी वजह से आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं।
2: मिथुन यानी जेमिनी, आज काफी काम होगा आपके पास, छोटे भाइयों का सपोर्ट मिलेगा आपको और आपके सेविंग्स जो है ये बढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की कोई प्लानिंग आप कर सकते हैं।
3: करके कैंसर, आज आपके लिए बताया जा रहा है कि आज मनपसंद कुछ खाने को मिलेगा, यू विल बी वेरी हैप्पी विद हाउ योर डे हैज टर्न्ड आउट टू बी। लेन देन के मामले में थोड़ा केयरफुल हो जाए आप, स्पेशली जहां पर पैसे इन्वॉल्व्ड हो और कुछ लोग हैं आपका बुरा चाहते हैं, आपका नुकसान चाहते हैं, तो इनको आप ज़्यादा बढ़ावा ना दें, अदरवाइज इनके मतलब इनको बढ़ावा देने के चक्कर में आपका खुद का नुकसान हो सकता है।
2: सिंह यानी लियो, आपका तो बिजनेस अच्छा चलेगा आज, इनकम जो है ये एकदम बना रहेगा, लेकिन बुरी संगति से आप प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स भी कुछ बढ़ सकती हैं और भागदौड़ आज ज़्यादा आपको करनी पड़ सकती है, और बनते कामों में अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो बाधाएं भी आज आ सकती हैं।
3: कन्या यानी कि वर्गो, आज आपके लिए बताया गया है कि आपकी सोसाइटी में, आपके कम्युनिटी में आपकी इज्जत जो है ये बढ़ेगी, कीमती चीजों को संभाल कर रखे, ये सलाह आपको दी जा रही है, और नौकरी के मामले में आपके जो बॉसेस हैं काफी खुश रहेंगे आज आपसे।
2: तुला यानी लिब्रा, घर पर मेहमान आ सकते हैं, कोई अच्छी खबर आपकी आपको मिलेगी जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ ये भी रखें, ख्याल रखें कि आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ सकते हैं आज, वैसे बिजनेस ठीक ठाक ही चलेगा।
3: एंड वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए कहा गया है कि आज खास रूप से आपके जहां पर भी आप नौकरी करते हैं वहां पर आपके जो बॉसेस हैं, जो सुपीरियर्स हैं आपके बेसिकली, वो काफी खुश रहेंगे आपसे, आपके काम करने के तरीके से। और आपके लिए ये भी बताया गया है कि रोमांटिक रिलेशनशिप में आज कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी इच्छा आपको है, जिसका उम्मीद आप बनाए बैठे हैं, शारीरिक कष्ट संभव है, इसलिए मतलब फिजिकली आपको किसी तरह से हार्म पहुंच सकती है, चोट वगैरह लग सकते हैं, तो इसलिए लुक आफ्टर योरसेल्फ, बी वेरी केयरफुल टुडे।
2: धनु यानी सेजिटेरियस, दूसरों के काम में बिल्कुल इंटरफियर आज ना करें, आपके काम में खुद कुछ डिलेज होंगे तो उस पर फोकस करें, फायदा आपको बढ़ेगा, ट्रेवल करते समय थोड़ा सावधान रहें, लेकिन जल्दबाजी से आज आपको नुकसान हो सकता है।
3: मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है कि अगर अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी ट्रिप पर आज आप जाने वाले हैं, देन टुडे इज अ वेरी गुड डे, आप जो उम्मीद कर रहे हैं वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, किसी के व्यवहार से आपके स्वाभिमान को भी ठेस जो है ये पहुंच सकता है, तो इसीलिए खुद को थोड़ा स्ट्रांग बना लो और स्पेशली इमोशनली मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि लोगों की बातों का, लोगों के व्यवहार का असर आप पर ना पड़े। आज फायदे के बहुत से मौके मिलेंगे, मेक श्योर आइडेंटिफाई देम एंड यूज देम टू ऑल योर एबिलिटी।
2: कुंभ यानी एक्वेरियस, आज सभी तरफ से आपको सफलता ही सफलता मिलने वाली है, ऑफिस में आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, घर में खुशियां होंगी, ऐशो आराम पर पैसे आज आप खर्च करेंगे, साथ ही में कुछ सोशल वर्क करने का मन भी आज आप बनाएंगे।
3: और इधर आखिर में मीन एंड पाइसेस, आपके लिए बताया गया है बिजनेस आपका बहुत ही फायदेमंद रहेगा, नौकरी में चैन की सांस लेंगे और किसी बुजुर्ग व्यक्ति के सहयोग से उनके गाइडेंस की वजह से आज आप कुछ बहुत बड़ा हासिल करने वाले हैं लाइफ में। बेचैनी थोड़ी बहुत रहेगी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आपके साथ, कुछ जरूरी करने से पहले, कुछ बड़ा करने से पहले थोड़ा डर आपके मन में बना रहता है, और वैसा ही कुछ आज रहेगा, बट एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन व्हेन यू विल गेट टू सी द रिजल्ट्स। तो दीज वर योर राशि वाइब्स फॉर टुडे, और उम्मीद करते हैं कि आज का आपका दिन बहुत ही बढ़िया और कमाल का गुजरे। बाय द वे, इसी उम्मीद के साथ साथ चलिए थोड़ी देर बाद आज के हमारे मॉर्निंग मैडनेस के सफर में लेकर आने वाले हैं आज का सेलिब्रिटी अलार्म।

0: dear.
1: Streaming on Rover.
2: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
2: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
3: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
4: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
5: Please use your imagination for the following ad.
6: If I won Powerball, the first person I'd tell would be and would surprise all our friends by
5: imagine winning $28 million this Wednesday. Play in store or online.
7: It's cold outside and the couch is on your mind, but you can't relax till you leave hunger behind. Hot pumpkin soup will really help you unwind. It's what you should be.
8: TradeDepot.co.nz. Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just $289. Heat pump dryer just $599. All-in-one washing machine and dryer $799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
1: TradeDepot.co.nz.
9: The Show with Vijay and Poo.

0: सेलिब्रिटी अलार्म का वक्त हो चुका है मॉर्निंग मैडनेस में, और हर सुबह जब आप कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं आपके जवाब देखकर बड़ा मजा आता है जिस तरह से आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं।
1: वैसे कल भी जो आवाज हम आपके लिए लेकर आए थे, एंड वी वर वेरी हैप्पी कि आप पहचान पाए किनकी आवाज थी। बहुत से लोगों ने इनफेक्ट सही जवाब जो है ये हमें दिया था। सो पंकज त्रिपाठी एब्सोल्युटली करेक्ट, जितने लोगों ने हमारे पास अपने अपने आंसर्स भेजे थे। आज देखते हैं कि आज के जो सेलिब्रिटी है क्या आप इनकी आवाज को पहचान पाते हैं या नहीं।
0: तो सबसे पहले आवाज जो है ये आप सुन ले,
2: सिंह जी गाते हैं।
3: हाँ।
2: तो लगता है गा रहा है कोई। ओके और जब बहुत सारे और लोग गाते हैं तो ऐसा लगता है सुर में गा रहे हैं। मतलब बेसिकली आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ सुखविंदर सिंह जी, और वो गाते हैं ना, तो गाना क्या है।
0: तो ये है आज की हमारी सेलिब्रिटी,
1: जानी मानी है, बहुत जानी मानी इनफैक्ट, तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। सिर्फ इतना बताएंगे आपको कि अगर आपके पास आंसर है तो आप सबसे पहले BF लिखें, फिर अपना आंसर लिखें और भेज दें हमारे पास 5599 पर। इट्स दैट सिंपल।
0: तो एक बार फिर आवाज जो है सुन ले अच्छी तरह से, अब इस बार ज्यादा हम आपको नहीं सुनाएंगे।
2: सिंह जी गाते हैं।
3: हाँ।
2: तो लगता है गा रहा है कोई। ओके और जब बहुत सारे और लोग गाते हैं तो ऐसा लगता है।
0: तो ये है आज की हमारी सेलिब्रिटी, इनका नाम हमें चाहिए। BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं।
4: Hollywood's most wanted.
5: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
6: मैं लाऊं अपना A game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines।
1: सुबह के मुख्य समाचारों में, फिरिना की प्रॉपर्टी पर एक महिला की मौत के बाद पुलिस ने होमोसाइड इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, जिसका सुराग उन्हें नॉर्थलैंड रोड पर एक जलती हुई कार मिलने के बाद मिला। पुलिस ने 26 साल के एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर अब मर्डर और साथ में आसन, गाड़ी चोरी और बर्गलरी समेत कई चार्जेस लगाए गए हैं। बिलबोर्ड्स में लगे INPR कैमरे के जरिए NZTA ने फ्रॉडलेंट वोव्स यानी वारंट ऑफ फिटनेस पकड़ने का एक सक्सेसफुल ट्रायल किया है। अगर कोई गैराज किसी ऐसी कार को वॉफ इशू करता है जो वहां थी ही नहीं, तो ये कैमरेज ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन से उस फ्रॉड को पकड़ लेते हैं। हालांकि ट्रायल बहुत कामयाब रहा और इन्वेस्टिगेशंस में इससे काफ़ी मदद मिली, फिर भी बजट कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण NZTA अभी इस सर्वेलेंस को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों में आज सुबह एक बार फिर कई इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेले जा रहे हैं और खेले जा चुके हैं। सुबह बेल्जियम की जीत क्रोएशिया के खिलाफ 2-0 से हुई। जॉर्जिया और रोमानिया 1-1 गोल से बराबर ठहरे। मोरक्को की जीत मेडागास्कर के खिलाफ 4-0 से हुई। अभी एक मैच प्रथम हिस्से में वेल्स और घाना के बीच खेला जा रहा है, जिसमें दोनों टीमें 0-0 से बराबर हैं। आज दिन में 12 बजे एक और मैच खेला जाएगा, जिसमें ऑल वाइट्स हाइटी का सामना करेगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के न्यूज हेडलाइंस।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Accurate traffic.
4: Fuel savings at gas today.
5: Good morning. Showers on and off today with a high of 18. And we have a crash on the southern. One southbound lane is blocked before the Khyber Pass on ramp. There are delays. On the northern, it's 45 minutes from Constellation Drive to the city. On the northwestern, 35 minutes from Massey. And on the southwestern, heavy traffic getting on at Hillsborough. And to the airport, it's taking 27 minutes.
4: Save 15 cents per litre on fuel today at gas with your everyday rewards card.
6: To attract meaty deals on fresh quality sea meat and land meat, I deliver a meeting call.
7: Meater!
6: Meat Week on Now at Pack and Save.
8: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
9: क्यों, क्या हुआ?
8: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
10: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
11: Grace Off Road, greater than ever.
12: South Auckland's buses just became a lot better.
11: MIT, A-OK.
12: With better bus routes, more frequent buses, and more.
11: Airport, got your transport.
12: Search AT, Better South Auckland Buses for more.
2: The beat of Bollywood.
13: World's best, hamari good brands nahi hai.
2: Breakfast show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins,

0: इसका बर्थडे भाई?
1: मेरा ही बर्थडे है, चलो लाइन में आ जाओ।
0: हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: A very very happy birthday, many many happy returns of the day. आज 3rd of June का दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो. Happy 9th birthday to my second born Mavic. You bring so much joy to our family and we love you lots better. Loads of love and wishes. मम्मी है कामिनी, पापा मुनेश हैं, भैया माहिर हैं और भैया माहिर who always spoils you and looks after you. You have a wonderful day, Mavic. ये मैसेज आपके पेरेंट्स की ओर से आया है. आज तमाम अन्य जितने भी परिवार वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी आपको याद कर रहे हैं और सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं. ईश्वर से आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना कर रहे हैं. हम सभी की ओर से भी ये दिन आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आपको हम कहना चाहेंगे. और आपके साथ आज अतीश लाल, आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आज खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी परिवार वाले हैं, सभी बेस्ट विशेस आपको दे रहे हैं. हम सभी की ओर से भी ये स्पेशल डे आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो. और भी जितने लोग हैं जहां कहीं पर भी आज अपना बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को इस दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयां हैं. याद रहे, अपने बर्थडे और एनिवर्सरी मैसेजेस आप हमारे पास भेज सकते हैं, चाहे ईमेल कर सकते हैं buzz@humfm.com पर या 5599 पर हमें टेक्स्ट कर सकते हैं और हर दिन हम पर आपको हम विश करते हैं.
3: मॉर्निंग मैडनेस.
2: अभी 26 मिनट रह गए हैं 8 बजने में, माफ कीजिएगा, 26 मिनट रह गए हैं 8 बजने में. आज का सेलिब्रिटी अलार्म, बड़ी मुश्किल से 1 2 3 4 5 लोगों ने अपने आंसर्स जो है ये आज हमारे पास भेजे हैं. तो हम ऐसा करेंगे, आज आपको हम अभी जब तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट आप एंजॉय करेंगे तब तक का वक्त और दे रहे हैं. आप ट्राई करें इस सेलिब्रिटी को पहचाने और जवाब अपना जो है ये 5599 पर हमारे पास भेजें कि ये आवाज़ किन की है.
4: और जब बहुत सारे और लोग गाते हैं तो ऐसा लगता है सुर में गा रहे हैं. मतलब बेसिकली आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ सुखविंदर सिंह जी और
5: दैट वी गॉट टू नो.
4: वो गाते हैं ना तो गाना क्या है, ये वर्ड्स हैं, आप इन्हें ट्यून में कह रहे हो. इफ यू डोंट मीन देम देन हाउ इज इट सिंगिंग.
2: तो कौन है ये सेलिब्रिटी, इनका नाम हमें चाहिए. आखिरी बार आवाज भी हमने आपको सुना दी, बहुत जाने जानी मानी ये हस्ती हैं. आप सभी को इनका नाम जो है ये पता होगा, बस अभी आप उनको पहचान पा रहे हैं या नहीं वो एक अलग सवाल है. तो कोशिश तो कम से कम आप कर ही सकते हैं. थ्रोबैक के बाद हम कोशिश करेंगे या फिर थोड़ी देर बाद कोशिश करेंगे कि जवाब जो है ये आपको हम दें. कुछ लोगों ने अभी तक वैसे सही जवाब दिए हैं लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है. तो ये फाइनल चांस हम आपको दे रहे हैं. BF आंसर और नाम 5599 पर आप हमें भेजें.

0: आपके लिए मॉर्निंग मैडनेस हम लेकर आ रहे हैं आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। और मॉर्निंग मैडनेस की बातें तो यही है कि सुबह सुबह का मैडनेस हम एक्सपीरियंस करते हैं और हर दिन कुछ अलग होता है, लेकिन आज मैडनेस नहीं, एक बहुत खूबसूरत बात जो है इस पर आपके साथ कुछ चर्चा हम करना चाहेंगे। अ वेरी ब्यूटिफुल पोस्ट आई केम अक्रॉस दिस एंड जब मैंने ये पढ़ा तो आई वॉज लाइक दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज सो ट्रू, कि इसके बारे में तो दिल किया कि आप सबके साथ हम थोड़ा बातें करें, आपके साथ शेयर करें। एंड आई रियली डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस एंड हो सकता है ये सुनने के बाद आपको थोड़ा हिम्मत मिले, थोड़ी पॉजिटिविटी आप महसूस करें। एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग इन लाइफ, कुछ अचीव करने के लिए, तो शायद आपको पेशेंस जो है ये मिल जाए टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट एंड अचीव इट। सो दिस ब्यूटिफुल पोस्ट गोज एज blessings never go to the wrong address. Even the piece of fruit you're eating today was meant to be yours from the moment the seed was planted. It was picked through a long journey, sold by a trader, and then arrived in your hands. So remember, what's yours will find its way always. इसका मतलब ये है कि जो blessings होते हैं ये कभी किसी गलत पते पर नहीं जाते। जो एक छोटा सा फल भी अगर आप आज खा रहे हो, वो आपका ही था, वो आपकी किस्मत में था, वो आपका होना था फ्रॉम द वेरी मोमेंट, यानी उस पल से जब उस फ्रूट के बीज को प्लांट किया गया, उसे बोया गया, उस पल से वो फ्रूट आपके नाम लिखा गया था, उसे तोड़ा गया, एक लंबी सफर में वो गया, फिर उसे बेचा गया और फिर वहां से वो आपके हाथों में आया। सो इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि जो आपका है वो आपका है और वो आप तक पहुंच कर रहेगा। तो इसीलिए लाइफ में कभी कोई ऐसा दिन आए जहां पर शायद आप कुछ अचीव करने की मेहनत कर रहे हैं एंड इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, वो आपको परेशान कर रहा है, वो आपको खुद पर डाउट्स जो है ये खड़े करने पर मजबूर कर रहा है, तो आप थोड़ा समय लीजिए, पेशेंस रखिए, बस मेहनत करते रहिए, ये जरूरी है। मेहनत करना आपको छोड़ना नहीं है एंड दैट थिंग विल इवेंचुअली कम टू यू।
1: हिंदी में बहुत पुरानी कहावत है ना, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम।
0: वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। कहावतों की बात आपने कही तो थोड़ी देर बाद उससे जुड़ी भी कुछ बातें जो ये हम करेंगे, पर फिलहाल दिस इज समथिंग वी वुड वांट यू टू रिमेम्बर टुडे एंड उम्मीद है कि ये चीज आज आपकी लाइफ में एक हिम्मत जरूर लेकर आए।

8 मिनटों के बाद न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट और आज सेलिब्रिटी अलार्म में जो आवाज थी आपके लिए इट वाज सुनिधि चौहान. तो आपने सही पहचाना कई लोगों ने, थैंक यू सो मच. और जिन लोगों ने कोशिश की आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 14.5 डिग्री टेम्परेचर भी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं। आज का हाई 18, ओवरनाइट कम से कम 10 डिग्रीज रहेगा। सुबह के वक्त कुछ ज्यादा बारिश, बाद में चलकर मौसम में इंप्रूवमेंट्स। सनसेट आज का 5:13 पीएम पर होगा।
0: Breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour, brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: वेलकम टू द रश आवर ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर। ये घंटा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इस घंटे आपसे कुछ बातें करने का मौका जो है ये हमें मिलता है। तो आज का जो हमारा व्हाट्स योर टेक टॉपिक है ये भी कुछ देर बाद आपके लिए हम लेकर आएंगे,
3: लेकिन उससे पहले आज का ट्रेंड पेट्रोल। ये ट्रेंड पेट्रोल आई गॉट अ चांस टू विटनेस इट थ्रू सोशल मीडिया एक वीडियो के जरिए, एंड I don't know, when I watched it, though I had a lot of tears in my eyes. और मुझे सच में एक ऐसी फीलिंग का एहसास हुआ कि लाइफ इज़ सो ब्यूटिफुल, स्पेशली फॉर दोज जिनके पास कुछ नहीं होता, जिन लोगों के पास किसी भी यू नो किसी भी तरह से पैसों की कमी हो या फिर उनका घर बहुत बड़ा ना हो और उनके पास खाने पीने को ज़्यादा चीज़ें ना हो, आप ये नोटिस करना कि उनका जो दिल होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। वो आपको इतना प्यार से वेलकम करते हैं अपने घरों में। कभी कभी आप जब जाते हो देन यू सी दैट यू फील इट, यू नो दैट सर्टेन पीपल अराउंड यू शायद फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं हैं या फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है रादर, बट जब आप उनके घर पर जाते हो तो आपका क्या स्वागत होता है। लाइक दे आर द बेस्ट होस्ट, वो अपना पूरा का पूरा घर खोल देंगे आपके लिए लिटरली, और आपकी आपकी सेवा में, आपको लुक आफ्टर करने में वो एक कमी नहीं छोड़ते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, कि जिन लोगों के पास बहुत कम होता है देने को वही सबसे ज़्यादा देते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड रियल लाइफ में एंड थ्रू दिस ट्रेंड पेट्रोल स्टोरी एज वेल। दिस इज राइट नाउ ट्रेंडिंग अ लॉट ऑनलाइन, शायद आपने भी इसके बारे में कहीं कुछ देखा हो, और अगर नहीं देखा है तो अगर आपको मौका मिले यू कैन सर्च इट अप एंड यू डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन रिगार्ड्स विद दिस। तो अपेरेंटली एक वीडियो में आसाम में एक शादी जो है वहाँ पर ये मोमेंट कैप्चर हुआ। एक शादी के दौरान शादी में एक अनइनवाइटेड गेस्ट जो है कि आए, और ये जो व्यक्ति थे इंटेलेक्चुअली डिसेबल थे ये, और इनके बारे में कहा गया कि ये शादी में इनवाइटेड नहीं थे, लेकिन क्वाइटली ही ज्वाइन द गेस्ट्स। और वहाँ पर ये आए जब, तो लाइन लगाकर लोग कुछ मिठाई वगैरह जो है ये खा रहे थे बिकॉज द ब्राइड वॉज सर्विंग देम बेसिकली। तो इन्होंने भी उस लाइन को ज्वाइन किया और अपना हाथ आगे किया और इनको भी वो मीठा खाने को मिला। एंड वेन ही गॉट दैट टू ईट ही टुक इट वेरी नाइसली, ही एट इट, एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपने पॉकेट में हाथ जो है ये डाला और पॉकेट से कुछ पैसे निकाले, कुछ रुपए निकाले, और उसमें से 10 रुपए का एक नोट जो है ये निकाला, और शगुन के तौर पर जो एक ट्रेडिशनल गिफ्ट होता है बेसिकली ये उन्होंने दुल्हन के हाथों में दिया। और ये पूरा का पूरा मोमेंट कैप्चर हुआ जबकि एक यू नो वीडियो के जरिए, और इसे ऑनलाइन शेयर किया गया। तो जब ये ऑनलाइन आया तो लोगों ने इसे देखा एंड दे अप्रिशिएटेड इट सो मच, saying ki you know there's a lot of generosity, there's a lot of compassion in people, aur wo aksar shayad hum dekh nahi pate hain, kabhi kabhi unnoticed bhi chala jata hai wo. So this is the situation, this is that beautiful moment which has been captured, and witnesses jo basically jinhone se kiya tha, they said that they were moved by the gesture. Ki value of gift nahi matter karta, 10 rupaye kitne koi bada paisa to hai nahi. And it's not the value of that gift. It's basically जिस intention के साथ, जिस प्यार के साथ उस शख्स ने दिया कि उन्होंने उनकी शादी में मिठाई खाई और बदले में उनके पास जो भी था या उनसे जो भी बन पड़ा वो उन्होंने दुल्हन को as a blessing तोहफे में दिया।
1: तो ऐसे और भी ट्रेंडिंग कहानियाँ जो हैं, स्टोरीज जो है ये आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। हम पर कुछ देर बाद व्हाट्स योर टेक।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
2: क्यों? क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
5: Bunnings Trade is here to help you get set for winter with 134 Trade. For quick quotes and pricing, stock queries, order and delivery updates, and general inquiries, contact the 134 Trade team today on 0800 134 872. Bunnings Trade, helping business is our trade.

0: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
1: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
3: What's your take?
4: 17 मिनट हो रहे हैं 8 बजकर व्हाट्स योर टेक का वक्त अब हो चुका है ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और आज सुबह सुबह हिंदुस्तान टाइम्स पर एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था. एक इंडियन महिला है जो जर्मनी में रहती हैं. उन्होंने शायद कुछ ऑब्जर्व किया और एक वीडियो जाकर अपने इंस्टा पर शेयर किया, जिसके बाद एक डिस्कशन जो है ये शुरू हो गया है. और इस महिला का नाम स्वधा है एंड उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन शेयर किया है अबाउट हाउ इंडियंस बिहेव व्हेन दे कम अक्रॉस फेलो इंडियंस अब्रॉड. विदेश में शी इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, बेसिकली इंडियंस जो हम सभी जो इंडिया से बाहर रहते हैं और वो एक दूसरे से जब मिलते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं, उसके बारे में उन्होंने एक वीडियो जो है ये बनाई है. उन्होंने कहा है कि शी ऑफन फाइंड्स Europeans more warm and welcoming in everyday interactions than Indians. Basically, शायद ये कहना चाहती हैं कि Europeans जो हैं Indians से ज़्यादा मिलनसार होते हैं दैनिक ज़िंदगी में. I'm not trying to be racist, लेकिन जो उन्होंने observe किया वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. स्वधा ने कहा कि आई मीन हियर इवन यूरोपियंस विल से हाय टू यू, दे विल से बाय, दे विल से हेलो, बट इंडियंस वोंट से हाय बाय ओ हेलो टू यू. ऑन टॉप ऑफ दैट दे विल मेक सच एन अनप्लेजेंट फेस अपॉन सीइंग यू एज इफ यू फॉरगॉटन देयर प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड टू योर नेम. ब्रदर व्हाई इज इट लाइक दिस? आई मीन इफ आवर ओन पीपल वोंट रेस्पेक्ट आवर ओन पीपल देन हु एल्स विल. तो इन्होंने जर्मनी में ये ऑब्जर्व किया है. नाउ लेट अस ट्राई एंड पुट दैट इनटू ए न्यूजीलैंड कॉन्टेक्स्ट कि क्या आपको यहाँ पर भी ऐसा महसूस होता है कि इंडियंस के प्रति उतने शायद फ्रेंडली या इतने वार्म, इतने वेलकमिंग नहीं है व्हेन यू सी ईच अदर, भले आप उनको जानते हो पहचानते हो या नहीं. हाय हेलो बाय ये होता है या नहीं होता है, या फिर ऐसा ही कुछ कल्चर आपने यहाँ पर भी नोटिस किया है. तो ये आज व्हाट्स योर टेक में हम जानना चाहेंगे आपसे कि डू यू फील दैट, या फिर यू बैक टू डिफर. जो जर्मनी में इन्होंने ऑब्जर्व किया है स्वधा नाम की इस लेडी ने, यहाँ नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ हाय हेलो करते हैं लोग. तो सबसे पहले आपका स्वागत है. गुड मॉर्निंग. हेलो.
5: हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो, गुड मॉर्निंग.
4: जी भाई, अपने रेडियो का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा धीमा कर लें.
5: विजय पूजा जी, कैसे हैं आप?
4: हम लोग ठीक हैं, आप कैसे हो सर?
5: सर मैं भी ठीक हूँ
4: जी.
5: पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग.
4: गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग.
5: हाँ जी सर, तो मैं ये बताऊंगा इस बारे में, जो इंडियंस ऐसा बिहेव नहीं करते, ये उनका नेचुरल बिहेव है.
4: अच्छा, नेचुरली.
5: जैसे कि मैं भी, हाँ, क्योंकि हम जब, मैं अभी 3 साल हुए हैं मुझे यहाँ पर आए हुए इंडिया से. तो जब मैंने यहाँ पर फील करा तो मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि हम स्ट्रेंजर्स को देख के स्माइल नहीं करते इंडिया में और हाय हेलो नहीं करते, मतलब इतना तो ये हमारा नेचर है, मगर यहाँ आने के बाद वो बहुत ऑकवर्ड लगता है.
4: अच्छा.
5: हाँ जी, तो वो हमारा नेचुरल, मतलब नॉर्मल बिहेव है, मगर यहाँ के हिसाब से वो बिहेव बहुत डिफरेंट है. हमें वो अजीब नहीं लगता, मगर यहाँ के लोगों को बहुत अजीब लगता है कि ये, मतलब बहुत रूड साउंड करता है वो बिहेव जो हमारा नेचुरल है.
4: अच्छा, तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को वो नेचुरली हम में है ये?
5: हाँ, मतलब हम लोग, मतलब जैसे किसी को जानते हैं या थोड़ा बहुत पहले किसी से मिले हुए हैं तो उससे हम हेलो कर लेंगे, मगर जो बिल्कुल ही स्ट्रेंजर होगा, यहाँ पर तो मैंने देखा कहीं शॉप पे भी आप जाओगे तो एकदम ऐसे हाय करके बोलते हैं, जैसे पता नहीं कितने जन्मों से जानता हूँ ना तो ये थोड़ा सा फर्क है। कभी कई बार तो मुझे भी शॉक लगता है, मैंने कहा यार ये इन्होंने ऐसे हाय करा है, मतलब ऐसे, मतलब ये मुझे जानते हैं क्या, इस तरह से मतलब लगता है हमारे को। और इंडिया में अगर आप स्ट्रेंजर्स को ऐसे स्माइल करोगे या हाई करोगे तो वो उसका दूसरा मतलब निकालते हैं उधर, समझ रहे हो कि ये क्यों स्माइल कर रहा है, क्यों मुझसे हाई कर रहा है, इसका कोई गलत इंटेंशन होगा, इस तरह से।
4: ओके ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए। गुड मॉर्निंग, हेलो।
3: गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हाउ आर यू?
4: वी आर गुड सर, हाउ आर यू?
3: गुड गुड गुड। सर जो आपने टॉपिक अभी स्टार्ट किया है और अभी जो मेरे भाई पहले बात कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट मतलब करना चाहूंगा। मैं अग्री करता हूँ कि हाँ हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसे होती है कि जैसे हम मतलब बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप स्ट्रेंजर्स से कोई चीज ना लो, उनके साथ ज्यादा फ्रेंडली ना हो, ऐसा स्कूल्स में भी कई बार सिखाया जाता है कि आप सिर्फ नोन पर्सन के साथ ही जाओ, मतलब वहां पे मतलब ऐसा, ये एक, एक ये सच में ये एक ट्रेंड है हम लोगों के साथ कि जैसे अपब्रिंगिंग हमारी होती है स्टार्टिंग से ही हमको थोड़ा सा कन्फाइन कर दिया जाता है कि नोन फ्रेंड्स हो, नोन आपके रिलेटिव्स हो, जैसे ये सब बाहर स्ट्रेंजर से ज्यादा फेमिलियर ना हो, उनसे कोई चीज ना लो, उनसे ज्यादा मतलब ओपन ना हो,
4: बेसिकली स्ट्रेंजर डेंजर
3: है कि हम लोगों के सी। हाँ जी,
4: मैंने कहा बेसिकली स्ट्रेंजर डेंजर ये सिखाया जाता
3: है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक हैबिट बन जाती है हम लोगों की, हम उतने ओपन नहीं हो पाते। जैसे अब हम आए हैं यहाँ पे तो अब हम धीरे धीरे वो सब चीजें सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आगे हम लोग बहुत एवरीवन हम लोग जो है सब लोग सीखते हैं फिर उसको आगे मतलब उसको कंटिन्यू करते हैं। पर इनिशियली हाँ मैं कह सकता हूँ कि ऐसा लोगों को फील होता है कि हम लोग इतने ज्यादा मतलब कि ओपन नहीं होते हैं, इतने ज्यादा मतलब कि मिंगल अप नहीं होते हैं। ये आई कंप्लीटली अग्री टू दैट।
4: ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए। सो 0800 हम एंड आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, हेलो।
6: गुड मॉर्निंग विजय जी।
4: जी सर,
6: मैं अमित बोल रहा हूँ।
4: बताइए भाई
6: जी। तो मेरा मानना है कि स्माइल इज समथिंग विच इज वेरी कंटेजियस। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो मेरे एक्चुअली जो नए फ्रेंड्स बने थे सबसे पहले वो एक्चुअली इंडियन थे। वेरी स्ट्रेंज, मैं बस में बैठ रहा था, एक आए पर्सन और वो इंडियन थे, उन्होंने मुझे देखा, मैंने स्माइल किया तो उन्होंने स्माइल बैक किया, फिर हम लोग की बातें हुई एंड देन वी लाइक बिकेम फ्रेंड्स, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर लाइक 10 years। सो या लाइक मे बी आई थिंक इट्स बैड टू जर्नलाइज। आई थिंक अपने ऊपर भी होता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो आप दूसरे के साथ अगर मतलब अच्छे से स्माइल कर रहे हैं तो आई थिंक द अदर पर्सन ऑटोमेटिकली उसको लगता है कि हाँ मैं इसके साथ ओपन अप हो सकता हूँ, मे बी एंड दे स्माइल बैक, देन मे बी यू कैन ग्रीट एंड टॉक एज वेल। तो या मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है ओवरऑल।
4: दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपके व्यू के लिए, आपकी राय के, आपके एक्सपीरियंस के लिए। एंड कुछ मैसेजेस अभी तक आए हैं। पहला, येस इट्स ट्रू, Indians showing egoism and show of kind of nature, especially Indian towards Indian, but they change to talk to Kiwis or others. ये एक मैसेज हमारे पास आया है। साथ ही में दूसरा मैसेज जो है, when you are out of your home country, then you are amongst Indians that come from different parts of the world. You don't know their culture, even though they are still Indians, but different countries have different ways of living. This creates an uncomfortable environment. Sometimes Indians are just Indians from the appearance, but not in nature. So better safe to just keep it to yourself at times. This is not an offensive, but a safer approach. Well said, Aaron. Thank you so much. Good morning. Hello.
7: Good morning, Vijay uncle.
4: Kaisi? Main Roshni bol rahi hu. Kaisi ho, Roshni?
7: Main theek hu, aap kaise ho?
4: Main bhi theek hu, acha hu. Bataiye.
7: तो मैं बोलना चाहूंगी कि जनरलाइज करना बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग होते हैं, सबकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। यू कांट से कि ये पर्सन ऐसा है तो ये पूरी जो कंट्री है वो
8: कम्युनिटी है।
7: बट जो इंडियंस है, और मैं तो बॉर्न एंड रेज्ड इन दुबई थी, तो हम लोग तो किसी को ऐसे स्माइल कर कर हाय नहीं बोलते या बात नहीं करते. जो काम है बस उससे ही बात करो और आगे मत जाओ उससे. फ्रेंडशिप में
4: काम से काम रखो बेसिकली.
7: हाँ, बट आई थिंक कि अगर हम चेंज करने की कोशिश करें एज अ कम्युनिटी तो डेफिनेटली वी कैन चेंज.
4: दैट्स इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच रोशनी आपके भी कॉल के लिए. एक और मैसेज आए हैं, इन्होंने कहा है फीजी इंडियंस आर बिल्ट डिफरेंट, वी ग्रेट टॉक एंड अप्रिशिएट ईच अदर. थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए. एंड गुड मॉर्निंग परविंदर.
8: गुड मॉर्निंग,
4: हाउ आर यू?
8: भी
4: अच्छे हैं. बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है, व्हाट्स योर टेक?
8: मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मेरे तो ज़्यादा, जैसे मैं हूँ यहाँ पे बहुत साल से, जानती हूँ बहुत लोगों को, पर जैसे अगर मैं बोलूँ कि अच्छे दोस्त वो एक आधा ही है इतने सालों में. वही बात मुझे लगता है कि वो आ जाती है कि इंडियन इंडियन को देख के पता नहीं उनका तन बदन झरना आ जाता है कि ये कहाँ से आ गए, ऐसा मुझे फील होता है. बट वो ही

0: That's interesting. Interesting observation. Thank you so much, Parvinder, आपके call के लिए. And आपका स्वागत है. Good morning, hello.
1: Good morning, जी. गोविंद भी शायद बात कर रहा हूँ.
0: अरे गोविंद भाई, कैसे हो?
1: बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया.
0: बताइए.
1: मैं ये कहना चाहता था, जैसे अभी परविंदर जी ने
0: बताया. आपके रेडियो का वॉल्यूम बहुत हाई है गोविंद भाई.
1: सॉरी. तो जैसे उन्होंने भी बताया, परविंदर ने, पीछे भी एक कॉलर ने यही बात बताई थी कि हम दूसरों की तो बात क्या करें, हमारे अपने लोग ही हमें जो नहीं उतना जैसे हेलो हाई करते हैं कि ऐसा, बल्कि ये बात सही है बिल्कुल. अभी जो मलविंदर जी ने भी बताया कि मुंह भी बना लेते हैं. मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुंह भी बना लेते हैं कभी देख के ना कभी. और जब उनके पास गोरे लोग आएंगे, उनको या कोई दूसरी कम्युनिटी का लोग आएंगे, उनसे बहुत अच्छी तरह से बातें करते हैं, बहुत ही प्यारे से बातें करते हैं. ये मैंने खुद फेस किया हुआ है. मैं नाम नहीं लेना चाहता किस स्टोर में. तो मतलब ये बात है अभी भी ना हमारे दिमाग में और दिल में ना कि ये तो अभी आए हैं, नए हैं, उतनी इनकी वैल्यू नहीं है. जो हम पुराने हम बैठे हैं, हम तो पुराने आगे भी आपने क्या उखाड़ लिया. आप भी वही है, वही रोटी खा रहे हो, वही सब कुछ कर रहे हो, वही पानी पी रहे हो, वही हवा ले रहे हो, उसी जगह पे जाना है सभी को. तो मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को अगर ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा ना. बल्कि ये अच्छा लगता है कि जब हम एक दूसरे को हेलो हाई बोले, या चलो हमें कौन सा, वही बात है कि वहां पे खड़े होकर लॉन्ग टाइम को रिश्तेदारी निकालनी है, हमने तो एक नॉर्मल सी बात करनी है, हेलो हाई करनी है और चले जाना है. लेकिन वो एक बात आपके दिल में छाप छोड़ जाती है अच्छे और बुराई की. ये नहीं यार, ये तो नहीं, वो बंदा नहीं, ठीक नहीं है, ये है वो है ना. तो मैंने ये फील किया हुआ है, पर्सनली फील किया मैंने.
0: थैंक यू सो मच भाई, आपके भी कॉल के लिए और मैसेज के लिए. अभी तो कॉल्स के लिए हमारे पास अब और टाइम नहीं है, लेकिन वी डेफिनेटली लुक फॉर टू रीडिंग योर मैसेजेस. किसी ने कहा इट्स द सेम लाइक इन एवरी कम्युनिटी, लाइक रशिया, जर्मनी, यूरोपियंस, चाइना, नो मैटर व्हाट कंट्री, सो दे शुड ऑब्जर्व बिट मोर. ये आपने कहा है, सेम बिहेवियर इन एवरी कम्युनिटी एंड दीज पीपल्स अपब्रिंगिंग इज द सेम, लाइक टू गो विथ स्ट्रेंजर्स एंड स्टफ. ये किसी ने हमारे पास भेजा है. तो 5599 हमारा नंबर है जिस पर अपने मैसेजेस आप हमें भेज सकते हैं.
2: Bollywood's most wanted.
3: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
4: मैं लाऊं अपना A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Breakfast Show with VJ and Pooja.
1: Chup ho jao, papi ho. Chup ho jao.
2: Accurate traffic.
3: Kitchen Mania trade prices this month.
4: Good morning. Showers and a high of 18 today. And on the southern, it's a bit of a mess. An earlier crash at Khyber Pass has been cleared, but there are still delays. It's taking an hour from Monaco, and it's also causing delays on the northern. It's 50 minutes from Constellation Drive to the city. On the northwestern, it's crawling an hour and 3 minutes from Massey, and the run to the airport is taking 40 minutes.
3: Order your new Kitchen Mania kitchen this month and get trade prices. T's and C's apply.
5: Professional by Ninjas hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
6: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
5: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
6: Professional financial solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
7: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now. With up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
8: Bathroom moisture from shower steam. It's a problem in most homes, so eliminate steam with a Shower Dome shower top. With Shower Dome, you get a warmer, drier bathroom and a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan.
10: The great Hashima comedy night here, जहाँ पर पहली बार सुपर सिटी ऑफ लीन इनफैक्ट न्यूजीलैंड में परफॉर्म करने जा रहे हैं कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर. कृष्णा अभिषेक एक ऐसा नाम जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए हैं टेलीविजन की दुनिया में पिछले कुछ सालों में, एंड ऑफकोर्स जाने जाते हैं अपनी कॉमेडी के लिए. और राजीव ठाकुर जो कि कॉमेडी में काफ़ी सालों से है, और एक जगह इन्होंने भी डेफिनेटली बनाई है. नाउ इमेजिन दिस कॉम्बिनेशन कमिंग ऑन स्टेज प्योरली आपके एंटरटेनमेंट के लिए. आजकल की लाइफ में ना इतना सब कुछ स्ट्रेसफुल है कि हंसी के दो पल मिल जाए तो व्हाई नॉट. और ऐसे सिचुएशन जहां पर आप अगर कुछ ऐसा ढूंढ भी रहे हैं जो आपको एंटरटेन करे, जो आपको हंसाए, तो थोड़ा मुश्किल है. इनफैक्ट आजकल एंटरटेनमेंट वाइज भी बहुत कम ऑप्शंस मिलते हैं टू मेक यू लाफ. तो ऐसे में इस ऑप्शन का भरपूर फायदा उठाइए, बिकॉज इट इज कमिंग बेसिकली टू योर ओन सिटी. सुपर सिटी ऑकलैंड में ये होने जा रहा है 18th ऑफ जुलाई को, विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में, एंड यू नीड टू ग्रैब योर टिकट्स फॉर दैट. आप विजिट करें bookmyevent.co.nz, जहां से आप टिकट्स जो है ये ग्रैब कर सकते हैं. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इन बुकिंग द टिकट्स, तो आप 021-043-2720 पर कॉल कर सकते हैं. एंड लेटिंग यू नो कि मोर देन 30% ऑफ द टिकट्स हैव ऑलरेडी बीन सोल्ड, इसीलिए आपको बस हम याद दिला रहे हैं टिकट्स बहुत जल्दी जा रहे हैं. यू कैन ग्रैब योर टिकट्स ASAP टू रिजर्व अ सीट फॉर द शो. और अगर आपको VVIP या VIP टिकट्स लेने हैं, तो आफ्टर पे ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर आप ये कर सकते हैं. बेसिकली यू वोंट फील द बर्डन ऑफ इट, एंड यू विल आल्सो गेट टू एंजॉय दिस अमेजिंग शो एक बहुत ही कंफर्टेबल सीट, एक बहुत ही कंफर्टेबल एरिया में बैठकर. सो दिस इज हैपनिंग स्पेशली फॉर यू ट्राई विजन इवेंट्स की ओर से. सो मेक श्योर इसका भरपूर फायदा आप उठाइए. 18th of July को होने वाला है. और हमारी ओर से हम आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देना चाहते हैं. आपके पास मौका है एक डबल पास जो है ये जीतने का,
11: और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है. हमारे एक सवाल का जवाब देना है, या फिर जो भी हम आपको बताएं वो आपको करना होगा. और जैसे ही
10: एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेसिकली, आप बस ऐसा कीजिए कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बस BF लिखना है, फिर क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और अपने नाम के साथ इसे भेज देना है. इट्स दैट सिंपल. सो क्वेश्चन इज कि कृष्णा अभिषेक जो है ये बॉलीवुड के किस एक्टर से रिलेटेड है वेरी क्लोजली, और ये हमेशा इनके बारे में मेंशन करते रहते कि ही हैज बीन इंस्पायर्ड बाय हिम, और कहीं ना कहीं वो उनको अपने अपने कॉमेडी में भी इनफेक्ट उनको वो उनकी नकल करते हैं. एज आइडल ही इज इंस्पायर्ड बाय हिम. वो कौन से एक्टर हैं बॉलीवुड के?
11: तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है कॉमेडी, उसके बाद अपना आंसर और अपना नाम, और 5599 पर हमें भेज देना है.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर
1: Traffic.
2: Brought to you by Public Trust. Good morning. Showers and a high of 18 today, and on the southern, it's a bit of a mess. An earlier crash at Kuiper Pass has been cleared, but there are still delays. It's taking an hour from Monaco, and it's also causing delays on the northern. It's 50 minutes from Constellation Drive to the city. On the nor'western, it's crawling an hour and 3 minutes from Massey, and the run to the airport is taking 40 minutes.
3: Create your will online with Public Trust from $69. Includes annual free update.
4: Are you Babita? Thank you so much for giving me Guru's number, yaar.
5: क्यों? क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया. No response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
1: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800-LOGIC-G. That's 0800-564-424.
6: Please use your imagination for the following ad.
7: If I won Powerball, the first person I'd tell would be and would surprise all our friends by
6: Imagine winning $28 million this Wednesday. Play in store or online.
8: Bunnings Barbecues will be firing up across the country for a national sausage sizzle fundraiser for Motor Neuron Disease Action Month on Saturday, June the 6th. All funds raised go to MND-NZ for research and support for people living with MND. So come join us to show your support at your local Bunnings.
9: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.
10: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
10: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
11: रश आओ आपके लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा हम लेकर आ रहे हैं एंड इधर चलिए आपके लिए एक अपडेट जो ये हम लेकर आए हैं एंड ये खबर आई है सामने दैट एन ऑकलैंड वुमन फाउंड अ लाइव स्कॉर्पियन इन हर बाथरूम और उसका एक वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर जाकर शेयर किया. नाउ एक्सपर्ट्स फ्रॉम मिनिस्ट्री फॉर प्राइमरी इंडस्ट्रीज इन्होंने बाद में चलकर ये कन्फर्म किया दैट इट वॉज इंडीड अ यंग स्कॉर्पियन और इट बेसिकली जो ऑफिशियल्स है वो विश्वास कर रहे हैं या मान रहे हैं ऐसा. It most likely came from Fiji and may have traveled in hidden in a luggage after an overseas trip to Fiji and Bali. ये जो महिला है, she returned from those trips several weeks earlier. और जो scorpion है, it may have survived hiding in over for a month. जिसके बाद में चलकर इनका इस महिला के साथ आमना सामना हुआ. Is it dangerous? अगर इस स्कॉर्पियन के बारे में बातें करें मतलब स्कॉर्पियन बिच्छू इटसेल्फ तो है ही डेंजरस लेकिन अपेरेंटली ये जो टाइप है इसके बारे में कहा गया कि ये डेंजरस नहीं है.
12: अच्छा तब ठीक है.
11: हाँ तब ठीक है.
12: आई मीन ये नहीं ठीक है कि वो कंट्री में आ गया कम से कम
11: बिना वीजा के एक तो आ गया ऊपर से.
12: हाँ.
11: अभी कैसे ठीक है.
12: नहीं द थिंग इज द लेडी जो है उनके लिए ठीक है ना.
11: अच्छा उनके लिए ठीक है. ओके बट एक डर तो उनके दिल में अब रहेगा ना कहीं ना कहीं. बट इस स्कॉर्पियन के बारे में कहा गया है कि इट वाज इन अ पुअर कंडीशन एंड अनलाइकली टू सर्वाइव मच लॉन्गर. न्यूजीलैंड के क्लाइमेट में जनरली अगर देखा जाए विच इज टू कूल एंड वेट फॉर मोस्ट स्कॉर्पियन स्पीसीज टू सर्वाइव जिसकी वजह से स्कॉर्पियंस यूजुअली जो है ये ट्रेवल करते अलोन एंड डू नॉट कम फ्रॉम कॉलोनीज बेसिकली. सो मोर ऑफन ऐसा देखा गया है कि ऐसी चीज़ें जो है ये हुई हैं. इनफैक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज है इन्होंने रिकॉर्ड किया है 10 स्कॉर्पियन फाइंस इन न्यूजीलैंड. आई थिंक ये 2018 में ऐसा हुआ था. हाफ वर अलाइव एंड हाफ वर डेड एंड मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली अराइव्ड थ्रू ओवरसीज ट्रेवल लगेज में इम्पोर्टेड गुड्स में फ्रेट में क्लोदिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड दिस इज बेसिकली समथिंग दैट माइट हैव हैपेंड अगेन. एक्सपर्ट्स का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं क्योंकि स्कॉर्पियंस आर कंसिडर्ड अ लो बायो सिक्योरिटी रिस्क and they are hitch hikers bolte hain inko mere kya se.
12: Haan.
11: They struggle to survive in New Zealand and there are no established wild scorpion population here in New Zealand. That's why I just simply love this country. Ek to saanp bhi nahi hai yahan par aur dusra bichhu bhi survive nahi kar sakta.
12: तो ऐसी और भी कई स्टोरीज हैं जो हम आपके लिए लेकर आएंगे. थोड़ी देर पहले आपने सवाल पूछा था ना फॉर द ग्रेट कॉमेडी नाइट.
11: यस, वो कौन से एक्टर हैं जिनके साथ कृष्णा अभिषेक अपने आप को हमेशा एसोसिएट करते हैं, इज इंस्पायर्ड बाय हिम. अपने स्किट्स में भी ये हमेशा उनको मेंशन करते रहते हैं, उनकी तरह बोलने का, उनकी तरह नाचने का, ये हमेशा कुछ ना कुछ अपने यू नो स्किट्स में लेकर आते हैं. तो वो कौन से एक्टर है जिनसे ये रिलेटेड भी है, बेसिकली आपको उस एक्टर का नाम बताना था.
12: तो द करेक्ट आंसर इज गोविंदा. थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने सही जवाब जो है ये हमारे पास भेजे हैं. थोड़ी देर बाद न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे.

0: With DoorDash, get groceries delivered straight to your door in a dash.
1: Put a bloody important meeting in your calendar right now. This National Blood Donor Week, give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz to see if you can donate and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.
2: Discover the magic at Go Bananas Chai Ke, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
2: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
4: Snooze and save at the Beds R Us Winter Sale on now with up to 50% off selected Sleepyhead beds. Get 50% off Serenity Eden Queen Size now from 2799. Check out these deals and more at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
5: Hum, time check.
6: Good morning, it's 9 baj rahe hain.
5: Hum News brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
7: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. The Commerce Commission is taking BP Oil NZ to court. It accuses the fuel giant of failing to give discounts customers were entitled to and also charging incorrect prices at BP Connect stations, mostly before the current high prices. Deputy Chair Anne Callinan says she has limited patience with large, well-resourced businesses who aren't investing in their systems to get the basics right. Five new marine reserves are set to open in Otago to protect 4% of the region's coastline. Docs Gabe Davies can't wait to see the area flourish.
8: We're working hard to establish a network of marine rangers alongside Kaitahu. We're doing a lot of that induction at this time, ensuring that information's readily available to the public.
7: A 40-year-old man will appear in court today after fleeing from police spanning Auckland to Hamilton. The vehicle was snapped first speeding in Manurewa on Monday, but officers didn't pursue. It was then spotted in Hamilton East yesterday, and the driver once again fled before hitting a member of the public's car. They then ran into a property where it took an hour of speaking with police to coax them out. Want to spend a summer hunting for treasure? Well, Finland is inviting tourists to do just that. It would see people explore the trails and landmarks of the resort town Levi to look for a gold bar worth nearly 40,000 New Zealand dollars. And Sport Crusaders coach Rob Penny's refusing to ride off the Blues, who have limped into the Super Rugby playoffs. They've lost their past three games and have an appalling record in Christchurch.
9: They've had some probably moments that they'll be disappointed with over the last three or four weeks, but they're certainly capable.
7: The teams are named at 4 p.m. today, and men's second seed Alexander Zverev is through to the French Open semi-finals, where he's chasing his first Grand Slam tennis title.
5: Sports News brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
10: World's best, hamari koi branch nahi hai.
5: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
6: 15 degrees temperature ho chuka hai Auckland mein aaj ka high 18, overnight kam se kam 10 degrees. Din ki shuruaat barish ke saath hogi aur jaise jaise samay aage badhega mausam mein sudhar aap dekhenge. Sunset aaj ka sham 5:13 par hoga.
5: Breakfast show with Vijay and Pooja,
11: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
5: What's going on? क्या बकते हो?
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
6: What's going on में सबसे पहले हम बातें जो हैं ये करते हैं या स्टोरी आपके लिए लेकर आते हैं जो सुनकर कभी-कभी हम असमंजस में पड़ जाते हैं या फिर सोचने लगते हैं कि भाई ये क्या हो गया. तो आज केरला के एक शख्स की कहानी है. इनका नाम है अब्दुल मजीद. और कभी कभी हम बहुत शिकायत करने लगते हैं कि भाई हमने एक अर्ज़ी डाली, इतना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, अभी तक उसका जवाब नहीं आया. तो मलप्पुरम के 61 ईयर ओल्ड अब्दुल मजीद जो हैं इनकी ये कहानी है. एंड इन्होंने एक नौकरी के लिए अप्लाई किया था. ही अप्लाइड फॉर अ जॉब और उस जॉब के लिए इनका क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट जो है 18 सालों के बाद आया.
13: 18 years.
6: हाँ,
13: अपॉइंटमेंट आया 18 years बाद.
6: यस, 2005 में मजीद अपीयर्ड फॉर ए केरला पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ पार्ट टाइम जूनियर अरबिक टीचर. और वो आ गए रैंक लिस्ट में जो 3 सालों तक वैलिड था बिफोर इट वॉज कैंसल्ड इन 2008। तो लाइक एनीबॉडी एल्स वो भी जिंदगी में आगे बढ़ गए कि भाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो खत्म हो चुका है। फिर आया ये ट्विस्ट, 24 अप्रैल को इस साल मजीद को एक एडवाइस मेमो जो है ये आया, लिंक्ड टू द सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस 18 सालों के बाद बिफोर हिज रैंक एक्सपायर्ड। जस्ट इमेजिन,
13: स्टिल इमेजिनिंग।
6: तो ऐसे ही कहानियां आपके लिए हम लेकर आते हैं हर दिन व्हाट्स गोइंग ऑन में। और इस घंटे
13: क्या बातें हो का ये जो सेगमेंट हमारा होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज ऐसी बहुत सी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं। एंड इफ यू डोंट माइंड आई हैव गॉट समथिंग टू शेयर एज वेल, कैन आई?
6: या या या, आई गॉट नो माइंड टू माइंड।
13: ओह माय गॉडनेस। सो दिस इज अनदर क्या बकते हो स्टोरी। एंड इससे मेरे को एक और एक कहानी याद आई, मामला लीगल है, ये एक बड़ा ही कमाल का वेब सीरीज है या शो है जो आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसका सीजन 2 भी आ चुका है, इवन दैट हैज बीन लव्ड अ लॉट। सो मामला लीगल है में क्या होता है कि वो जो सच्ची घटना पर आधारित कुछ किस्से कहानियों को एज अ स्टोरी ये इस शो में दर्शाते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। एंड मैंने ऐसी ही एक स्टोरी उसके एक एपिसोड में देखी थी, बट ये वापस से हकीकत में हुआ है जहाँ पर बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ के कॉम्प्लेक्स में ये घटना घटी। वहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, लॉट ऑफ मंकीज। और ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर एक शख्स जो है उनका एक बैग लेकर एक बंदर जो है ये भाग गया जिसमें करीबन 200,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स थे।
6: अरे प्रभु।
13: He took the bag from the man और फिर उसके बाद उन्होंने उसे खोला और खोलने के बाद वो पेड़ पर चढ़ गया और फिर वहां से उसने जो पैसों की बारिश की है भाई, ही वाज लाइक द रॉबिन हुड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। मतलब बैग में से सारे के सारे पैसे निकाल के यू करके फेंक रहा है। और इसका एक वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिस इंसिडेंट बेसिकली टुक आउटसाइड द कोर्ट ऑन कचारी रोड मेरे ख्याल से, जहां पर ये व्यक्ति जो है ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड परचेज के कुछ स्टैम्प पेपर्स को फाइनलाइज करने के लिए जा रहा था, जबकि ये एडवोकेट के चैम्बर्स के बाहर खड़ा हुआ था और वहां पर ये बंदर अचानक से आया और इनसे इनका बैग छीन कर भाग गया और एक लंबे से नीम के पेड़ पर चढ़ गया, फिर बैग को फाड़ा और पैसों की बारिश जो है ये की। वहां पर जो लोग इनफेक्ट आसपास घूम रहे थे उन्होंने कुछ पैसे तो उठाए और अपने अपने पॉकेट्स में रखने शुरू कर दिए, लेकिन बाद में ये जो व्यक्ति जो लॉयर थे बेसिकली उन्होंने जब लोगों से मांग की कि भैया वापस कर दो क्योंकि जरूरी काम के लिए जरूरी कागजात के लिए है, तो उन्होंने पैसे कुछ लोगों ने वापस किए। लेकिन इवन आफ्टर द केओस करीबन 30 मिनट्स आधा घंटा इनको लगा एंड आधे घंटे में इन्होंने पूरे के पूरे पैसे भी जमा नहीं कर पाए थे, वो कुछ पैसे जो फिर भी मिसिंग थे बिकॉज पीपल टुक इट राइट, द पीपल हु फाउंड इट दे टुक इट।
6: तो ऐसी और भी कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, थोड़ी देर बाद कम्युनिटी की खबरें आपके लिए होंगी।

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: तो क्या हो रहा है हमारी कम्युनिटी में, हमारे आसपास, और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने को है, इन सभी चीज़ों की जानकारियां हम पर आपको हम देते रहते हैं। और सबसे पहले अगर देखें तो ग्रैंड कीर्तन संध्या ये होने जा रही है इसी शुक्रवार को वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापाटोएटोए में, जिसमें कलाकार रहेंगे रोनल्ड सिंह रोनू और जैनेश सेवक। टिकट्स $20 हैं, जो आप जेस फ्रेश मार्ट शेली रोड पापाटोएटोए से ले सकते हैं।
4: और इसके अलावा ग्लो रेड फोर थाई फोर न्यूजीलैंड ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं मुस्कान केयर ट्रस्ट न्यूजीलैंड, ये दरअसल थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जो है ऐसे कुछ कंडीशंस की वजह से लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट जो है लोगों के शरीर पर पड़ता है। और मैनी पेशेंट्स रिलाई ऑन रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, जहां पर अक्सर कम से कम तीन हफ्ते तक उनको हर तीन हफ्ते पर उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ये चाहिए सिंपली टू स्टे अलाइव। सो अगर आप एक रियल डिफरेंस बनना चाहते हैं लोगों की ज़िंदगी में और उनको आप एक ऐसा जीवन देना चाहते हैं जहां पर अपना कंट्रीब्यूशन आप अगर दे सके, तो ब्लड डोनर जो है ये बनिए। एनकरेज कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स को टू डोनेट, एंड एवरी डोनेशन जो है इट हैज़ अ पोटेंशियल टू सेव लाइव्स एंड गिव होप टू दोज जो ऐसे कंडीशंस के साथ जीते हैं। आपको हम इनवाइट कर रहे हैं टू सपोर्ट द इंटरनेशनल सिकल सेल अवेयरनेस ब्लड डोनेशन ड्राइव जो 20th ऑफ जून को रहेगा एट मेनिकाओ न्यूजीलैंड ब्लड सेंटर। और अगर आपको बुक करना है अपना डोनेशन या फिर इसके बारे में कोई भी डिटेल्स चाहिए, तो आप muskankeertrust.org.nz विजिट कर सकते हैं या मुस्कान केयर ट्रस्ट न्यूजीलैंड का जो फेसबुक पेज है ये आप विजिट कर सकते हैं।
3: ब्राह्मण सभा न्यूजीलैंड आपको आमंत्रित कर रहे हैं अधिक मास कथा और यज्ञ के लिए, और ये रहेगा इसी रविवार को श्री राम कृष्ण मंदिर पर 25 ऑनस्लो एव मेनिकाओ में। सुबह 9:30 से 10 तक बेदी स्थापना पूजा होगी, 10 से 11 बजे तक अधिक मास कथा, 11 से 12:30 तक हवन, और उसके बाद आरती और शांति पाठ। यहाँ पर आपके लिए प्रसाद और भोजन का भी प्रबंध रहेगा, तो आप जाकर जरूर इसमें हिस्सा ले सकते हैं।
4: और साथ ही साथ आपको हम याद दिला दें कि श्री राधा कृष्ण मंदिर इनका जो 25th एनिवर्सरी ये सेलिब्रेट किया जा रहा है श्रीमद् भागवत कथा के साथ, और यहाँ पर कथाकार रहेंगे पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा। और ये श्री राधा कृष्ण मंदिर और इंडियन एसोसिएशन द्वारा होने जा रहा है महात्मा गांधी सेंटर राधा कृष्ण मंदिर 145 न्यू नॉर्थ रोड ईडन टेरिस पर। आप इसमें ज़रूर भाग ले सकते हैं, 5th से लेकर 11th जून तक ये श्रीमद् भागवत कथा होगी, और डिटेल्स के लिए आप श्री राधा कृष्ण मंदिर को संपर्क कर सकते हैं।
3: दिव्या शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ, ये रहेगा शनिवार 13 जून को रामकृष्ण मंदिर 25 ऑनस्लो एव मेनुकाओ में। सुबह 7 से स्थापना पूजा, 8 से चालीसा पाठ अलग अलग मंडलियों द्वारा होगी, और उसके बाद हवन आरती और शांति पाठ। प्रोग्राम के दौरान आपके लिए प्रसाद और भोजन का भी प्रबंध रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मंडली भी इस 108 अखंड हनुमान चालीसा पाठ में हिस्सा ले, तो आप ज़रूर मंदिर को संपर्क कर सकते हैं या ट्रस्ट को संपर्क कर सकते हैं 02102991219। याद रहे 02102991219, इस नंबर पर आप उनको संपर्क कर सकते हैं।
4: और साथ ही साथ आपको हम ये भी याद दिला दें कि अगर आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इनका हिस्सा जो है ये बने, तो या लोग जो है इसका हिस्सा बने, आप चाहते हैं ये डिटेल्स हम उन तक पहुंचाएं, तो आप हमारे पास अपना ईमेल ज़रूर सेंड कर सकते हैं, वो भी buzz@humfm.com पर, buzz@humfm.com पर।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Hey, देखो मैं आ गए।
0: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
6: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
7: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
8: वो भी आई लव यू वाला।
7: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो बना रहा था बेटा।
8: अच्छा आप दिलजीत हो?
7: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manuko and Pukekohe. Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
2: Home loan ke saath thoda cash bhi paana chahte hain. Naya home loan lena ho ya maujooda loan ka review karwana ho. Squirrel aapko dilayega ek aisi zabardast deal ki aapki ho jayegi balle balle. Janiye power of the squirrel effect. squirrel.co.nz.
8: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर. दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आम छे मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन. कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours. दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6. लिमिटेड स्पेसेस.
9: Bunnings Barbecues will be firing up across the country for a national sausage sizzle fundraiser for Motor Neuron Disease Action Month on Saturday, June the 6th. All funds raised go to MND NZ for research and support for people living with MND. So come join us to show your support at your local Bunnings.
10: Shop now at Trade Depot, New Zealand's number one bathroom, kitchen and appliance online store. Vented dryer just $289, heat pump dryer just $599, all-in-one washing machine and dryer $799. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
11: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
12: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है. सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
13: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz.
14: Shop and scan to win a share of $800,000 at Woolworths. Just buy any three products from Cadbury, Mokona, Coca-Cola, Chobani and more for your chance to win instant money off your shop. In-store only. At Woolworths. T's and C's apply.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: समय की ओर देखें तो अभी 23 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर कुछ देर बाद देखेंगे आज खबरों में क्या कुछ है. और आज जाने से पहले आज की दो बातें जो हैं ये भी आपके लिए ज़रूर होंगी इस प्रोग्राम में, लेकिन तमाम चीज़ें जो हो रही हैं इनके बारे में तो हम आपको डिटेल्स देते रहते हैं. आई थिंक कल हम लोगों ने इसके बारे में बातें की थी जहाँ पर इंडियन इंक सेट लेकर आ रहे हैं बलून डॉग. ये एक अवार्ड विनिंग परफॉर्मर है जेकब राजन, जो वापस आ रहे हैं स्टेज पर इन द वर्ल्ड ऑफ प्रीमियर ऑफ बलून डॉग. ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्शन है जिस जो इंस्पायर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी काबुली वाला से. और ये सेट है इन द 21st सेंचुरी और इसकी बहुत ही खूबसूरत कहानी है. क्यू थिएटर में ये आज से शुरू होकर 20th ऑफ जून तक चलता रहेगा और जिसके लिए टिकट्स आप ले सकते हैं iticket.co.nz. तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी अबाउट द फ्रेंडशिप 5 साल की एक बच्ची और एक लोनली माइग्रेंट वोका के बीच के फ्रेंडशिप की ये कहानी जो है ये कैसी होती है. तो ये आप देख सकेंगे. लाइव ओरिजिनल म्यूजिक, डांस, थिएटर का जादू, ये सब कुछ द इंडियन इंक थिएटर कंपनी आपके लिए लेकर आए हैं द बलून डॉग में.
3: तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि जो अभी आपने सुना वो आप एक्चुअली अपनी आंखों के सामने परफॉर्म होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि द बलून डॉग जो है ये होने वाला है जबकि क्यू थिएटर में. तो टिकट्स तो हमने आपको बताया है कि आप जरूर ले सकते हैं और टिकट्स लेने के लिए आप iticket.co.nz रिमेम्बर iticket.co.nz विजिट कीजिए. और 3rd June से लेकर 20th June के बीच में जिस किसी भी दिन आपको यहाँ पर जाना है बलून डॉग देखने के लिए उस दिन के टिकट्स आप ग्रैब कर सकते हैं. बट आपके पास अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ होकर एक डबल पास जो है ये जीतने का भी. और ये जो डबल पास है इसका ड्रॉ हम करेंगे 5th June ऑन द ब्रेकफास्ट शो. और अगर आपको ये जीतना है, यू लव थिएटर, यू लव टू एक्सपीरियंस थिएटर, आपने कभी कोई थिएटर परफॉर्मेंस नहीं देखा है, तो ये आपका पहला यू नो फर्स्ट थिएटर शो हो सकता है, परफॉर्मेंस हो सकता है दैट यू लाइक टू विटनेस. तो आप इसके लिए भी आप जरूर आजमा सकते हैं अपना लक. एंड फॉर दैट ऑल यू नीड टू डू इज आपको BD लिखना है, यानी बलून डॉग का शॉर्ट फॉर्म. BD लिखे फिर उसके बाद में अपना नाम लिखकर 5599 पर हमारे पास आप भेज दे. नाउ व्हेन यू राइट BD एंड अपना नाम लिखकर हमारे पास आप सेंड करते हैं, सो दैट एक्चुअली टेल्स अस कि यू आर इंटरेस्टेड इन विनिंग दिस डबल पास.
2: तो शुरू हो जाए, आपके पास वक्त है अभी. और आप देखिए तो कुल मिलाकर आपके पास शायद 8 मिनटों का टाइम है, 8 मिनट्स. और क्या पता आपकी किस्मत जागे और फ्राइडे को जब ड्रॉ हो तो ये पास आपको मिल जाए, आप जाकर बलून डॉग जो है ये एंजॉय कर सकें. तो BD अपना नाम 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं.
0: Bollywood's most wanted.
4: गुंडी खड़ गाओ या सीधा अंदर आओ.
5: मैं लाऊं अपना A game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: The award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
4: Kahani of Indelible Homes.

0: crazy man. Power through mess with Morning Fresh.
1: At Bunnings Trade, no matter where you are, we're here to help. Our builders team with dedicated account managers has got you covered at every building stage, from the front fence to the back gate. Call 0800 134 872 to find out more. Bunnings Trade, helping business is our trade.
2: When you see them on the road, you suddenly don't need to overtake that guy in front of you. And you suddenly remember what a stop sign means. Suddenly you're not too cool to buckle up. And you're suddenly stoked you turned down that beer at the barbie. Nah, all good. Yep. Seeing them means you're suddenly on your best behaviour. Drive like cops are around. Because they are.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. What's going on?
5: 23 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में. व्हाट्स गोइंग ऑन में क्या कुछ और खबरों में आ रहा है इसकी जानकारियां भी हम आपको देते रहते हैं. हॉक्सबे के एक बहुत ही प्रोमिनेंट वाइनयार्ड के सीनियर या फॉर्मर डायरेक्टर पर सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने 18 चार्जेस लगाए हैं. उन पर आरोप हैं कि ही ओवरस्टेटेड द वैल्यू ऑफ हिज कंपनीज वाइन इन्वेंट्री ताकि उनको फंडिंग मिल सके. रिचर्ड फोडी जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं सेक्रेड हिल वाइनयार्ड्स के, ही अपीयर्ड इन द हेस्टिंग्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यस्टरडे, जहां पर 18 चार्जेस उन पर लगाए गए फॉल्स अकाउंटिंग के, विद सिक्स ऑफ दोज कैरिंग एन ऑल्टरनेटिव चार्ज ऑफ ऑब्टेनिंग बाय डिसेप्शन. सीरियस फ्रॉड ऑफिस का आरोप है कि फोडी जो है इन्होंने अपनी कंपनी का जो वाइन इन्वेंट्री है उसके वैल्यू को बढ़ा चढ़ाकर बताया था थ्रू क्वार्टरली स्टॉक वैल्यूएशन स्प्रेडशीट्स एंड कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स जो वेस्टपैक को प्रोवाइड किया गया था. और ये घटना जो है या फिर ये ऑफेंडिंग जो है जून 2017 और जून 2019 के बीच घटी थी और मामला अभी अदालत के सामने है.
6: और इसके अलावा ये खबर है दैट आई केम अक्रॉस एंड आई वाज लाइक ओके I don't know how many of you will be part of this, but this is something that we all can think about. अभी कहा गया है कि more New Zealanders than ever now have very large home loans. जहां पर ये जो number है, ये बताया गया है number of people owing more than $1 million on their mortgage growing rapidly. धीरे-धीरे ये बढ़ रहा है basically. और कहा गया है कि 134,000 लोग जो हैं उनके पास अब मॉर्गेजेस है ओवर $1 million का. दैट्स 15% मोर देन अ ईयर अगो. इन 2019 कम लोग जो है ये मॉर्गेजेस ले रहे थे ऑफ सच अ लार्ज नंबर, जिसमें 51,000 लोग जो है ये थे. अबाउट 18,000 पीपल नाउ आर मोर देन 2 million ऑफ देयर मॉर्गेजेस. तो 18,000 लोग हैं जिनके पास 2 million से ज्यादा का मॉर्गेज है. एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग? वेल, एक्सपर्ट्स ने कहा है कि सेवरल फैक्टर्स जो है ये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स दिस, क्योंकि हाउस प्राइसेस ये बहुत एक्सपेंसिव है इन एरियाज लाइक ऑकलैंड एंड क्वींसटाउन, दे रिमेन हाई. और लोअर इंटरेस्ट रेट्स जो है ये रिसेंट ईयर्स में इनकरेज किए गए हैं, विच हैज बेसिकली इनकरेज पीपल टू बोरो मोर. और कुछ होम ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं जो प्रॉपर्टी इक्विटी का इस्तेमाल करते हैं टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स या फिर बिजनेसेस को. व्हाट डू दीज मॉर्गेजेस कॉस्ट? It at an interest rate of about 5.6%, कहा गया है $1 million mortgage costs roughly around $5,750 per month, यानी over 30 years का जो period है इसमें. और जो $2 million का mortgage है, it costs roughly around $11,500 per month. अगर हम देखें कि क्या ये न्यूजीलैंड के इकोनॉमी के लिए एक प्रॉब्लम है या नहीं, तो इकोनॉमिस्ट का कहना है कि लार्ज मॉर्गेजेस आर मैनेजेबल अगर बोरोवर्स जो है उनके हाई इनकम हो, वैल्यूएबल एसेट्स हो और वो कंफर्टेबली अपना जो रिपेमेंट्स है ये कर सकते हैं. हाउएवर, कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा एक सिचुएशन है कि उन्होंने बोरो तो ज़्यादा किया है अगेंस्ट देयर होम या फिर बिजनेस टू सपोर्ट, लेकिन इनकम उतना नहीं है टू डू द रिपेमेंट्स प्रॉपरली. और कुछ गुड न्यूज़ भी सामने आए हैं इस रिपोर्ट में, जिसके तहत कहा गया है कि फ्यूअर पीपल आर फॉलिंग बिहाइंड ऑन मॉर्गेज पेमेंट्स, विच शोज की पीपल आर एक्चुअली अप टू डेट. कम लोग जो हैं ये ऐसे हैं जो नहीं पे कर पा रहे हैं अपना रिपेमेंट, अदरवाइज मोर पीपल आर एक्चुअली डूइंग दैट. और ओवरऑल हाउस होल्ड डेट स्ट्रेस जो है ये इम्प्रूव हो रहा है. होम लोन अरियर्स जो है ये कम हो चुका है इन कंपैरिजन विद व्हाट इट वाज लास्ट ईयर.
5: ओके साथ ही में मत भूले पावर बॉल $28 million है आज और 12 बजे से फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों में ऑल वाइट्स और हाइटी का मैच जो है ये खेला जाएगा, जिस पर अपडेट्स आपके लिए हम जरूर लेकर आएंगे।

0: चलिए आज की पहली बात थोड़ा गौर करें इस पर। कहते हैं कि करो वही जो सही और मन को सुकून देने वाला हो, क्योंकि लोगों का क्या, वो तो हर चीज में अपना मतलब ढूंढते हैं।
1: बहुत सही बात है, लेकिन आप अगर समय पर मेरा माइक ऑन करते तो मैं अच्छे से रिएक्ट कर पाती ना।
0: अच्छा चलो, इस पर आप रिएक्ट कर सकती हैं।
1: जी,
0: दुनिया बहुत बदल गई है।
1: हाँ,
0: यदि आप किसी से नाराज होंगे तो लोग आपको छोड़ना पसंद करेंगे, मनाना नहीं।
1: आजकल के जमाने में यही चलता है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ अब आपसे चाहेंगे इजाजत जाने की। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी रात की मुलाकात ये होगी अब कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए एंजॉय योर वेंसडे।

0: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.in से।
1: Bunnings Barbecues will be firing up across the country for a national sausage sizzle fundraiser for Motor Neuron Disease Action Month on Saturday, June the 6th. All funds raised go to MND NZ for research and support for people living with MND. So come join us to show your support at your local Bunnings.
2: Oi, you! Keen for a mint day out? Field Days is back at Mystery Creek and it's bigger than ever. 4 massive days, over 1,000 exhibitors and heaps of gear, kai and good yarns. June 10 to 13, Mystery Creek, Hamilton, where town meets country and innovation meets good old Kiwi ingenuity. Don't miss the ultimate rural get-together. Field Days, good times, done Kiwi style. Grab your tickets now at fielddays.co.nz.
3: We've got your ticket to relax in paradise with the Islands on sale now with Air New Zealand. Create unforgettable memories. Hurry, sale ends midnight 4 June. Travel periods and conditions apply. Book now at Air New Zealand or with your preferred travel agent.
4: Home. Time check. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Morning, I'm Bridget Hasty with the latest at 10. Consumer New Zealand fears people are paying more for their loyalty rather than shopping around for power. It's canned an Energy Retailer People's Choice Award this year because people are so dissatisfied. Campaigns manager Jessica Walker says it's dire.
6: There are some retailers doing better than others, but it's also really worth noting that sadly the cost of power has escalated 20% in 2 years.
5: The government is investing in putting solar into schools. $30 million will help set up the install of panels at up to 500 sites. It's estimated to save a school up to $8,000 a year. The Waiweka Gorge is back open as crews begin the next phase of recovery works. There'll be several night closures and a daytime stop-and-go traffic management system while a rockfall net gets installed. And Earth Sciences New Zealand predict less rain this winter, with the UN also warning of a super El Nino, meaning warmer temperatures. Principal scientist Chris Brandolino says the ground is like a battery.
7: During the spring, during the summer, that battery is being used to grow vegetables, the gardens, and the grass. Now we have to put that moisture back in. We have to recharge the ground with rainfall.
5: To sport, England coach Brendan McCullum concedes he needs to adapt his aggressive style of test cricket, known as Bazball, against the Black Caps at Lord's tomorrow.
8: We want to be a team which is better under pressure, a team which can navigate tactically, can understand where you sit in the game and what's required.
5: And All Blacks legend Ma'a Nonu may have played his last game of professional rugby. Toulon have confirmed the 44-year-old is leaving the French club at the end of the season.
4: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoi and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
9: The highs of 18 overnight, temperature of 10. Aaj ka forecast bataya ja raha hai, heavy rains expected hain and dopahar tak clear ho jayenge. It feels like 15 degrees and sunset is at 5:13.
4: Non-stop Bollywood.
10: Jo bhi karte hain shiddat ke saath karte
4: hain. Playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
11: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai
4: My Time with Kashika.
9: Namaskar and a very very good morning to you people. How are you? Bhige bhige se mausam mein kuch pyari pyari si baatein lekar main Kashika aa chuki hu studios mein 12 baje tak aapka mera saath bana rahega. Ye Monday to Friday ka safar 10 se 12 baje ke beech mein Kashish Foods ke saujanya se aapke liye aa jata hai, jahan par bahut sari baatein aapke saath hum miljul kar karte hain. Aur aaj jis bare mein main baat karne wali hu wo to main ek hi baat kahungi, I think smile and the world will smile with you. Ab jab hum wo smile karte hain तो डेफिनेटली थोड़ा सा, जैसे कि हम यहाँ पर रेडियो में जब बात करते हैं तो वी हैव अ स्माइलिंग फेस व्हेन वी टॉक टू यू. अगर हम ऐसे उदास होकर बोलेंगे तो आप तो पसंद ही नहीं करेंगे ना. दैट इज़ व्हाई वी हैव टू स्माइल एंड टॉक टू यू सो दैट यू गेट दोज वाइब्स. अब इन वाइब्स में याद है एक चीज़ कॉमन है इस स्माइल में, आपका स्माइल, मेरा स्माइल, लेकिन ये जो दांत होते हैं जो नज़र आते हैं ना भाई, इसी से रिलेटेड कुछ आज बात करने वाली हूँ. कुछ ऐसी 5 हैबिट्स हैं जो हमारे दांतों को वीक कर देती हैं, और अब ये क्या है ये जानेंगे एक्सपर्ट अड्डा में थोड़ी ही देर बाद. लेकिन इससे पहले कि मैं वहां तक पहुंचूं, आपको बता देती हूं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स आपके लिए हम लेकर आते हैं 104.2 FM, हम FM पे और साथ साथ रोवा ऐप के जरिए। अब जब रोवा ऐप के बारे में बातें कर ही रही हूँ तो आपको बता देती हूँ कि रोवा ऐप पे नंबर वन बॉलीवुड स्टेशन है हम रिवाइंड। 60s और 70s के एरा के गाने नॉन स्टॉप आप सुन सकते हैं और ये रोवा का नंबर वन म्यूजिक स्टेशन भी है, जितने भी स्टेशन है रोवा में उसमें। उसके बाद नंबर टू पोजीशन पे आता है हमारे 80s का जूक बॉक्स, जहाँ नॉन स्टॉप आप अमेजिंग 80s के ट्रैक सुन पाते हैं। इसके साथ साथ घूम ही रहे हैं उस एरिया में तो फिजी भजन, चढ़दी कला पंजाबी हिट, फिजी कीर्तन संग्रह और राहत फतेह अली खान के सूफिया कवाली भी इनके अलग अलग म्यूजिक स्टेशन हैं। गाना बजाती हूँ और वापस आती हूँ उस स्माइल के साथ और उस दांतों वाली स्माइल के साथ। बजाओ क्या,
4: बजाओ क्या।

0: बटा लव इश्क बबुआ
1: एक्सपर्ट्स अड्डा।
2: अच्छा, इसमें कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम ढूंढ के जहाँ पे रिसर्च होता है उसके बाद आपके लिए लेकर आते हैं। तो किसी भी आप डेंटल क्लिनिक में घुस जाते हैं तो यू विल फाइंड योरसेल्फ के भाई कितने सारे लोगों को आप देखते हैं जो कंप्लेन कर रहे हैं अबाउट यू नो सेंसिटिविटी, कि उनके दांत में सेंसिटिविटी है, उनका इनेमल जो है वो थिन होता जा रहा है या उनके दांत के एजेस जो है वो टूटने लग जाते हैं। ये कंडीशंस जो होती हैं जो पहले कभी एज के साथ रिलेटेड हुआ करती थी या निग्लेक्ट के साथ, अभी देखते हैं एक डिफरेंट पैटर्न जो है ये इमर्ज हुआ है। और अकॉर्डिंग टू द रीसेंट फाइंडिंग्स यही पता चला है कि 27% ऑफ द पेशेंट्स जो है वो इनेमल इरोजन जो है वो दिखाते हैं। ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। सरप्राइजिंग पार्ट इज दैट ये जो एक डैमेज है ये एक्चुअली आपका खुद का किया हुआ होता है। अब आप कह रहे होंगे कि खुद का किया और आप खुद को कल्प्रिट अगर मानेंगे तो मैं बता देती हूँ इट्स ट्रू, क्योंकि कभी कभी आप कुछ चीज़ों को अपनी तरह से अपने आप लुक आफ्टर नहीं कर पाते हैं। फॉर मेनी डेज़ हम लोग यू नो जब ब्रश करते हैं बहुत ही क्विकली विगरस ब्रशिंग करते हैं, जो एक रूटीन हम डिलिजेंटली फॉलो करते हैं, बट द बिलीफ इज द हार्डर यू ब्रश द मोर द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी विद योर टीथ। तो अगर आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ ब्रश कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर हार्ड ब्रिस्टल्स आपके टूथब्रश के होते हैं, ये आपका जो एक इनेमल होता है जो दांतों के अंदर एक चमक होती है उसकी लेयर को हार्म करना शुरू कर देती है। फिर सेंसिटिविटी बढ़ती है, डेके होने शुरू हो जाते हैं, दांतों में से बदबू आनी शुरू हो जाती है। एक और चीज़ होती है, एक हमारा आजकल का जो एक पैलेट है जो हम लोग मॉडर्न पैलेट कह सकते हैं, इट्स फुल ऑफ फिज ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, सिट्रस बेस्ड जूसेस, चाय, कॉफ़ी, स्वीट्स। हर सिप और हर बाइट जो हम लेते हैं ना, आई एम नॉट मेकिंग यू गिल्टी बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो क्या होता है, ग्रेजुअली उससे क्या होता है आपके दांतों पे एसिड का एक रिएक्शन होना शुरू हो जाता है एक एक करके थोड़ा थोड़ा, एंड ग्रेजुअली ये चीज़ें वेयर आउट होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप डिलीजेंटली ब्रश भी करते हैं कॉन्स्टेंटली, आपका खाने के साथ ये एक हेलो हाई रहता ही रहता है, ये कुछ हैबिट्स जो हैं आपकी चेंज हो सकती हैं। जैसे कि सिंपली अगर आपने कुछ खा लिया तो अपने माउथ को रिंस कर लीजिए पानी के साथ। आपने अगर एसिड रिच ड्रिंक्स को अगर आपने पिया या स्ट्रॉ लेके लिया इस्तेमाल किया, तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल अगर स्ट्रॉ लेके आप इस्तेमाल करें कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप ले रहे हैं। हमारे मुंह का जो सलाइवा होता है ये हमारा नेचुरल डिफेंस होता है और बहुत सारे एसिड्स को ये न्यूट्रलाइज कर देता है और मिनरल्स को रिप्लेनिश भी कर देता है, आपके इनेमल को स्ट्रेंथन भी कर देता है। लेकिन डिहाइड्रेशन से क्या होता है, कॉमनली जब होता है हमें फास्ट पेस लाइफ होती है, हमारा पानी का जो इनटेक होता है बहुत कम हो जाता है। अब उसमें हम क्या करते हैं, पानी पीने के बजाय हम उसमें कॉफ़ी, अल्कोहल, चाय इनको ऐड करते हैं। इससे क्या होता है, जो सलाइवा होता है, सलाइवा का फ्लो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है, आपका जो इनेमल है उस पर ज़्यादा एक्सपोजर आने लग जाता है। भाई हाइड्रेटेड रहो, सिंपल एज दैट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आप कभी कभी एक सोशल मीडिया पे देखते हैं इंस्टेंट लेमन से, बेकिंग सोडा से ये क्लीन हो जाता है, इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं। एक सेफ पात यही रहेगा कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं और वाइटनिंग का जो ट्रीटमेंट है या माइल्ड फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, यू नो वाइल दे आर पॉलिशिंग। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक रेगुलर टूथपेस्ट आपका जो होता है वो आपके दांतों को, एक जो टूथपेस्ट का फॉर्मूला होता है वो दांतों की फ्रेशनेस और वाइटनेस जो होती है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। सो आपका जो एक ओवर टाइम एक्सपोजर है विद एसिडिक खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इससे क्या होता है आपके दांत जो सेंसिटिविटी के लिए प्रोन होने लग जाते हैं। तो एक स्पेशलाइज इनेमल प्रोटेक्शन का टूथपेस्ट अगर आपको मिले तो इट विल मेक अ रियल डिफरेंस टू यू। इन अ नटशेल, इनेमल का जो एक इरोजन होता है बहुत धीरे धीरे प्यार से निकलना शुरू कर देता है। और रोज़ की आपकी जो हैबिट होती है वो आपको किस तरह से कंट्रोल करना है वो आपको देखना है। मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज़ समझा दी है। ओके, अब एक चीज़ और समझाना चाहती हूँ और वो ये दैट आपके लिए ऑफिस शाउट आउट आने वाला है। कहाँ से सुन रहे हैं हम? प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में हम 104.2 FM या फिर रोवा ऐप के जरिए आप सुन रहे हैं। जल्दी से भेजिए, मैं आपको शाउट आउट देना चाहती हूँ।
3: Time with Kashika. आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में। आप ही तो नहीं। Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and मैट्रेस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
3: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे।
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
7: The Red Hot Sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
8: Freezing on the way to the car every morning? Maybe it's a sign. Kathmandu's winter sale is now on, with up to 50% off branded gear and heaps more. However you do winter, do it with Kathmandu.
9: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 09278 8600.

0: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून
3: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स रेटेड एम
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
5: हाँ। अच्छा
4: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
7: My Time with Kashika brought to you by Kashish Foods Eat better, live better
8: Office shout out
9: So, office shout out में मैं आपको ये बता देती हूँ that बहुत बहुत interesting चीज that yes, हमारे पास एक बहुत ही क्यूट सा मैसेज आया है and Shaheen Law Firm आप वहाँ से सुन रहे हैं आपकी मम जो हैं शी इज 75 प्लस एंड शी इज टू इज लिसनिंग सो बिग शाउट आउट टू यू
7: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. अच्छा, ये मेरे पास ऑफिस शाउट आउट थोड़ा लेट आया, बट डेफिनेटली एश फ्रॉम सुशील मसल शेफ कैफे वेलिंगटन. देखो भाई, ऑकलैंड वालों, ये लोग कितने ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं.

0: है ना। अच्छा वैसे थैंक यू सो मच फॉर दैट एश, एंड सिक्स वर्ड स्टोरी भी आप रेडी कर दो भाई अगर किसी के पास है। नाउ देर इज सम न्यूज़ विच हैज़ कम ऑन राइट नाउ ऑन स्टफ, और उसमें बताया जा रहा है 400 हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस वेंट इनटू लिक्विडेशन इन द मंथ ऑफ मार्च, जहां पर ये एक फेलियर जो था इट जम्प्ड अप टू 49%। आई थिंक दैट्स अ ह्यूज नंबर। एट द सेम टाइम ये बिजनेसेस जो थी ये फाइनेंस ढूंढ रहे थे फॉर अ फास्टर रेट रादर देन एनी अदर सेक्टर। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है दोनों बातों में, क्योंकि कुछ प्रेशर जो है वो अभी भी लोग बार्स, कैफेज, रेस्टोरेंट, अकोमोडेशन प्रोवाइडर्स जो हैं फेस भी कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट इन ऑकलैंड, इट इज़ थ्रू आउट द कंट्री दैट इट इज़ हैपनिंग। और कहा जाता है दैट द लिक्विडेशन हैज़ गॉन अप टू 3,223 ऑन अ रोल फ्रॉम 12 मंथ्स। अब ये 15% और भी बड़ा है। मार्च में 286 कंपनीज जो हैं वो लिक्विडेशन में गई, 308 इंसॉल्वेंसीज में गई, मेकिंग द हाईएस्ट मार्च टोटल सिंस 2015। सो ओवरऑल जो है ये बिजनेस फाइनेंस जो है इट फेल बाय 3.8% फॉर द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। लुक आफ्टर योरसेल्फ्स प्लीज़ भाई, ये छोटा छोटा टाइम है जहां हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। चाहिए ये लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। कमिंग अप नेक्स्ट, ड्रीम ड्रीम डायरी में देखते हैं आज क्या हम किसकी ड्रीम सॉल्व करेंगे, देखते हैं सॉल्व करेंगे कि बताएंगे।
1: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहां से ले जाएंगे।
3: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
4: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
3: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने,
4: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
1: ब्रेकफास्ट शो विद

0: 10 AM.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
4: This is your invitation to a bloody important meeting. This National Blood Donor Week, put time in the calendar to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz and book your bloody important meeting now. Give blood. Give plasma. Save lives.
5: Wormsley Road has reopened. Thanks for your patience while we upgraded the road to help reduce flooding in Mangere. Find out more by searching Auckland Council Te Ararata Creek.
6: Big news for tradies and businesses. Right now at LDV, get free accessories, fuel vouchers, sharp finance offers and deals across our range. LDV, built tough, priced right, and now packed with value. Visit ldv.co.nz to find out more. Terms and conditions apply. Offers end 31st July while stocks last.
7: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways travel deals are on now. Fly to Fiji from just $329 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations, like Canada from just $999 one way, Japan from $685, Hong Kong from $739, Samoa from $305, or Vanuatu from $365 one way. Book now at fijiairways.com or call your local travel agent. Conditions apply.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
8: Dream Diary में वैसे आज it's funny क्योंकि मैंने दांतों के बारे में बात की and you know how हमारे दांतों को हम केयर कर सकते हैं. तो ऐसे में जो आपने मुझे कॉल किया, आपने कहा कि जब कशिका तुम दांतों के बारे में बता रही थी ना, उसी समय मुझे याद आया कि मेरा एक ये ड्रीम है. उनका ड्रीम कुछ ऐसा था कि उनको सपना आ रहा था कि उनके दांत यू नो गिर गए इन दैट पर्सनस ड्रीम. तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है. बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट, अगर ये अज्यूम भी कर सकते हैं हम लोग, एक दांत जब गिरता है ना तो इट्स लाइक समथिंग इनसाइड यू इज इनकम्प्लीट. अब डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट की क्या मीनिंग हो सकता है. अगर आप नोटिस करते हैं कि आपका दांत जो है यू नो टूट गया है सपने में, तो प्रॉबेबली इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू इनसिक्योरिटीज, फियर्स एंड एंग्जायटी, एम्बेरसमेंट, या फिर किसी कीमती चीज़ को अगर आप खो चुके हैं तो वो आपको वो दांत के पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि दांत से ज़्यादा कीमती क्या होगा यार. मुस्कुराएंगे और दांत नहीं होंगे तो कहाँ जाओगे. हो हो, इमेजिन दांतों पे काला सा. एक बारी ना हम लोग बचपन में वो लगाया करते थे आईब्रो पेंसिल एंड मम्मी के लिए उठा के एंड वो काला कर देते थे बताने के लिए, अरे ये बुढ़िया बुढ़िया का गेम खेलते हैं. तो भाई वो हटाओ ना दांत तो फिर कैसा अजीब सा फीलिंग आता है. लेकिन अब जब मैं ये बात कर रही हूँ ना कि किस तरह से हम कवर करते थे, तो बेसिकली क्या हो इसमें क्या होता है कि यू आर ट्राइंग टू कवर अप समथिंग यू नो टू अदर्स. और फिर हो सकता है लैक ऑफ कंट्रोल. अब ये सब चीज़ें जो होती हैं दरअसल आपके सपने में अगर आती हैं दांत से रिलेटेड, इंटरेस्टिंगली ये इंटरप्रिटेशन तो कुछ खास इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रही, बट ये जो बेसिकली चीज़ें बताई जाती हैं, एक जो चाइनीज़ हैं वो बिलीव करते हैं कि इफ़ यू ड्रीम ऑफ टीथ इट इज़ इन अ नेगेटिव वे एंड प्रॉबेबली यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग वेल विद अदर पीपल. In Western world, it might revolve around good-looking person, the image, और किस तरह से हम अपने आप को देखते हैं. कई अलग अलग तरह की theories हो सकती हैं. और ये Greeks जो होते हैं उनका कुछ कहना है कुछ financial loss की वजह से कुछ हो सकता है. So every place has their own kind of a way. और कुछ लोग जैसे इंडिया में मानते हैं कि ये शुभ होता है दांत का you know टूट जाना, गिर जाना. आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप दांत गिर गया क्या हुआ, आपको लगता है कि कुछ आपको कुछ ऐसी कहानी पता है, 0800 हम पर मुझे कॉल करके बताएं.

इस पर्टिकुलर मूवी का जहां मैं आपको गाना बजाने वाली हूं, सुनाने वाली हूं, सुपर हिट सॉन्ग था कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ में, और ये फिल्म थी टी सीरीज़ की दिल है के मानता नहीं। अब गुलशन कुमार जी का कुछ कुमार सानू के साथ शायद कुछ झगड़ा वगड़ा, कुछ टेंशन वेंशन हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि दिल है के मानता नहीं कि कैसेट्स रिलीज़ नहीं करने दे रहे थे वो मार्केट में टी सीरीज़, गुलशन कुमार जी, और उन्होंने जो गाने कुमार सानू ने गाए थे उनको रीडब करवाया बाय बाबला मेहता। अब बाबला मेहता के गाने इसमें अभी इसमें है तो सही, लेकिन जो सॉन्ग मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो कुमार सानू की आवाज़ में है। रीज़न वॉज दैट गुलशन कुमार ने सडनली डिसाइड किया कि ये जिन कैसेट्स को उन्होंने रिमूव किया मार्केट्स में से, उन्होंने उसमें से गाना वापस डाल दिया, उनमें से ये गाना एक था, और बाकी के कुछ सॉन्ग जो थे वो कुछ बाबला मेहता ने भी गाए हुए हैं। तो भाई दिल है के मानता नहीं, इतने सारे इस फिल्म के गाने हिट थे। आपको पता है एक चीज़ और हिट थी इस फिल्म की, और वो थी आमिर खान की टोपी। आमिर खान ने घंटों लगा दिए थे अपनी जो टोपी कौन सी उन्हें पहननी है उसे पता करने के लिए कि ये सही टोपी है कि नहीं, ये सही टोपी मुझ पर लगेगी कि नहीं। आफ्टर ऑल मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो ठहरे, तो भाई उन्होंने बुलाया, और दोनों में यानी कि हीरो हीरोइन में लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ करता था, इसीलिए आमिर खान का और पूजा भट्ट का नाम टॉम एंड जेरी भी पड़ चुका था सेट पे। छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल ये लड़ बैठते थे। दोनों की एक्टिंग तो वाकई ही कमाल की थी। एंड इफ़ यू मे रिमेंबर दिस पर्टिकुलर मूवी वॉज अ रीमेक ऑफ अ मूवी ऑफ 1956 जो राज कपूर एंड नरगिस की फिल्म है, मैंने नहीं देखी बट मुझे अब तो जाके देखनी ही पड़ेगी, चोरी चोरी, जिस फिल्म के बहुत सारे गाने यू नो बहुत हिट हुए थे, एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय इट हैपेंड वन नाइट।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: ऑफ 18 ओवर नाइट टेम्परेचर ऑफ 10 आज का फोकस बताया जा रहा है. बारिश हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है विच विल क्लियर टुवर्ड्स दिस आफ्टरनून. सदलीज जो है वो शाम तक कम हो जाएंगे. फील्स लाइक 15 डिग्रीज राइट नाउ. 5:13 पर सनसेट बताया गया है.

नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू? अभी भी आप अगर ट्यून्ड इन हैं तो आप सुन रहे हैं मुझे यानी कशिका को ऑल द वे टिल मिड डे. 10 बजे से मेरा आपका साथ शुरू हो जाता है. ये 10 से 12 का सफ़र कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन होता है, जहां पर आपके लिए ढेर सारी बातें हम लेकर आते हैं. और आज 6 वर्ड की स्टोरी भी मैं इंतज़ार कर रही हूँ. अगर आपके पास कोई 6 वर्ड की स्टोरी जिसमें आप किसी चीज़ को सम अप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे 5599 पे टेक्स्ट कर सकते हैं. और इसी के साथ साथ यस, रिसाइकल रीयूज करने के लिए, रीसाइकल मी में हम क्या ऐसी चीज़ है जो रीयूज कर सकते हैं. तो अभी हम इस बार वेजीज के बारे में बातें कर रहे हैं. देखते हैं कि आपके पास कोई आंसर है, कोई रिप्लाई है तो कुछ ज़रूर बताइएगा. एंड नॉट टू फॉरगेट, आई हैव टू एक्सप्लेन समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो बहुत ही मतलब मैं कह सकती हूँ एक बच्चों के जब हम हुआ करते तो हमें एक कहानी बहुत पसंद आती थी और वो ही कहानी दोहराई जा रही है. कैसे, कब, कहाँ, क्यों, उसके बारे में भी बातचीत करूँगी. स्टे ट्यून एंड कीप हमिंग. हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स में. कहाँ से सुन रहे हैं, किस एरिया से, बताइए.

0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।

0: यू नो, एक फोन हमारा ऐसा होता है जो हमारा बहुत बड़ा साथ देता है. अब मैं फोन के लिए बात कह सकती हूँ इतना दैट रिसर्चर्स ने ये बताया है दैट ये फोन जो है आप इससे हुक्ड ऑन हो जाते हैं, जैसे कैसीनो जाते हैं स्लॉट मशीन्स के लिए हुक्ड ऑन हो जाते हैं, यू वांट टू सी द फीड्स एंड मैसेजेस, रिफ्रेश द साइकिल. बट एक बात बताओ, हमारे लिए फोन कितना बड़ा हमारी स्पेस हमारी लाइफ की ले लेता है. जब हम उठते हैं, जब हम बैठ जाने लगते हैं, जब हम सूद करना चाहते हैं खुद को, या 3 बजे सडनली स्ट्रेस में उठते हैं तो फ़ोन देखने लग जाते हैं. हमारी कुछ मेमोरी की इश्यूज ये सॉल्व कर देता है, बोर्डम डिस्कम्फर्ट हटा देता है, हमारे फ्रेंड से हमें कनेक्ट कर देता है, कभी कभी हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है हमारी वरी से, हमारे फ्रेंड्स के साथ मिलकर हमें हंसाने की कोशिश भी करता है, बहुत कुछ ये करता है. बट डू यू रियलाइज एवरी नाउ एंड देन हमें हमारा फ़ोन हमारे कितनी सारी हमारी लाइफ को होल्ड करके रखता है. बट इफ यू आर टॉकिंग टू यू नो अबाउट इट अ रिलेशनशिप विद अ फोन इज फाइन, वॉट अबाउट द रिलेशनशिप एट होम? तो ऐसे में क्या आपके पार्टनर जो होते हैं क्वाइटली आपके लिए वेट कर रहे होते हैं जिस समय आप सर्फिस कर रहे होते हैं अपने यू नो फोन पे, या आपके बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा वेट कर रहे होते हैं कि मम या डैड आप फोन पे लगे हुए हैं बात कर रहे हैं, या जब डिनर खा रहे हों या डिनर बना रहे हों उस समय आप स्क्रोल कर रहे हैं, बच्चे जो है वो अपने जब कहानी बता रहे कुछ कह रहे हैं आज ये हुआ, बट नहीं आप अपना फ़ोन उठा लेते हैं ड्यूरिंग अ टीवी एड ब्रेक. ऐसा कुछ होता है कभी आप सोते समय आप एक बेड पे आप कुछ वर्डल या चोडल या कुछ भी खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ एक आपका बिहेवियर पैटर्न जो होता है एक हैबिट आपकी बन जाती है. और ऐसे में डू यू रियलाइज के हाउ मच योर फैमिली मस्ट बी गेटिंग अनॉयड विद इट? ओके, सो यू हैव टू टिक मार्क इट योर सेल्फ जब आपको मुझे बताना है दैट क्या आपके पार्टनर ऑफन आपके लिए आपके बारे में कंप्लेन करते हैं कि बहुत ओवर यूज़ करते हो तुम फ़ोन का, या फिर आपको कभी ऐसा पैनिक हो जाता है जैसे कि गाड़ी की चाबी खो गई उस तरह से फ़ोन खो गया है, ऐसा होता ही होगा. आप अपने फ़ोन को टॉयलेट में ले जाते हैं क्या? आप अपने फ़ोन के बहुत पास सोते हैं, या एक फ़ोन सुबह ऐसी चीज़ है जिसे सुबह उठते के साथ आप देखते हैं या सोने से पहले देख के सोते हैं? क्या आप अपने फ़ोन को उस बोर्डम और स्ट्रेस के समय इस्तेमाल करते हैं जिस समय आपको लगता है अब मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मैं फ़ोन ही उठा लेती हूँ या उठा लेता हूँ? एंड कभी कभी ऐसा होता है कि आप डिनर टाइम पे कोई आपका स्पोर्ट्स का गेम है या कुछ है और वो चल रहा है, आप सडनली आप उस चीज़ में बिज़ी हो जाते हैं, पता नहीं है आपको लगता है शायद आप ये कर रहे हों, किसी के बारे में कोई कहानी, कोई गॉसिप, कोई रील, कोई इंस्टा पे देखना, ये कुछ कभी कभी आप रियलाइज़ नहीं करते कि हाउ पीपल आर एंक्शियसली वेटिंग फॉर यू जब आप उस कमरे में होते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स क्यों ना हो या आपके और परिवार वाले क्यों ना हो. यार एक कोई कहते हैं अरे कोई बात नहीं तुम बिज़ी हो बाद में बात करेंगे, ऐसा होता ही होगा. बट इसका मतलब ये ज़रूर है कि क्वांटिटी ऑफ टाइम मैटर्स लेस दैन द क्वालिटी ऑफ अटेंशन. तो आपको डेफिनेटली इन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा. अपने प्रॉबेबली फ़ोन को जो है 10 मिनट्स रखिए एक घंटे में, कोशिश कीजिए इस तरह से कट डाउन करने के लिए. एज़ फार एज सोल्यूशन, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन तो मैंने अभी तक सुना नहीं है. वी लिव इन दिस रियल वर्ल्ड एंड वी नीड द फोन्स, वी रिलाय ऑन देम, डोंट वी? तो दे आर प्रिटी वंडरफुल इफ़ यू गो टू सी. बट एक चीज़ जो है डेफिनेटली हम कर सकते हैं, अपने जो ड्रामेटिक इवेंट्स होते हैं अपने छोटे छोटे मोमेंट्स को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे के उन इवेंट्स को हम कम कर सकते हैं. आई होप यू आर विद मी ऑन दिस. 6-word स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट. ये वाली तो मुझे स्टोरी समझ में भी नहीं आई, बट फिर भी I'll say that story out.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: didn't think she needed a DVS system.
1: I've got a heat pump.
0: That should do. But it didn't do it, did it, Maddie?
1: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
0: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
2: The heart of a healthy home, DVS.
3: Here at Bunnings, you can warm up any outdoor space this winter. Gas heaters are great for the backyard. It's a portable thing, so you can move it around, and we've got the fire pits, make it feel cosy and warm.
4: Secure your home with an Arlec 7-watt solar sensor LED floodlight, only $49.90. Get around a Glow Tambo steel fire pit, $98. And solid energy roundwood firewood is just $15.95.
3: Get your outdoor space winter ready for less. Lowest prices are just the beginning.
5: Discover the magic at Go Bananas Chai Ke, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Chai Ke is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Chai Ke Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz
10: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.
11: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
12: इससे पहले कि मैं सिक्स वर्ड स्टोरी पे जाऊं, ये जो कहानी मैंने अभी कहानी तो नहीं कह रहा है, एक्चुअली इट्स अ फीडबैक जो मैंने आपके साथ शेयर किया है अभी अभी अबाउट द मोबाइल एंड किस तरह से हम बात करते हैं. तो भाई 1921 आपने कहा, हाय काशिका जी, यू कैन यूज ब्रिक Which can take you off the phone. अरे भाई, ब्रिक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप? इमेजिन करो कि हमारी लाइफ में ये फ़ोन कितना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कि नहीं, कितनी चीज़ें ईजी बना देता है हमारे लिए. बट हाँ, इसका एक्सेस किसी चीज़ का भी अति होने किसी चीज़ का भी बुरा होता है ना, तो उसे हमें किसी ना किसी तरीके से कर्टेल करना चाहिए. तो दिस इज़ वॉट इट इज़. नाउ कमिंग टू द सिक्स वर्ड स्टोरी, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आया. रमन वशिष्ठ, आपने लिख के भेजा, ही इज इंस्पायर्ड बाय हिज मामा. व्हाट इज दैट, ही इज इंस्पायर्ड बाय हिज मामा. ओके, एक्सेप्टेड. आई डोंट नो हुज एक्सेप्टेड. शायद अगर आप नाम लिख देते तो मुझे समझ में आ जाता. दूसरी बात, जो आपने सुबह सुशील मुझे मैसेज किया, एक्चुअली नहीं सॉरी ऐश, आपने वेरी हैप्पी एंड टूथफुल गुड मॉर्निंग. अब टूथफुल आपने इसलिए कहा क्योंकि पिछले घंटे पे मैंने दांतों से रिलेटेड आपके साथ डूज एंड डोंट्स बताए और साथ साथ आपको एक ड्रीम भी बताया दांतों से रिलेटेड. तो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट मेक्स सेंस. वेरी हैप्पी एंड टूथफुल गुड मॉर्निंग. वेल डन, थैंक यू.
11: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

हैं ये अपना टैक्स पे करते हैं थ्रू द PAYE सिस्टम, जहाँ पे उनको डिडक्शंस जो है ऑटोमेटिकली पेचेक में से होने लगते हैं. बट अगर आपकी अर्निंग शिफ्ट हो जाती है विद द कोर्स ऑफ द ईयर, ये अमाउंट आपका रुक जाता है, कुछ हो जाता है, सो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है 31st of March के दिन. बट इसके साथ साथ IRD जो है इसको रिकनसाइल करना शुरू करता है, और उसके बाद अंडर पे इफ़ यू गेट अ बिल ओवर पे एज मैनी डू, और या फिर एक रिफंड इज ऑन इट्स वे. सो इंश्योर आप इन बातों को ज़रूर नोट करें और चेक ज़रूर करें. बातों को नोट और चेक करने की जब मैं बातें करती हूँ तो भाई कम्युनिटी में क्या खास हो रहा है ये भी हम ज़रूर जानना चाहते हैं. तो भाई आपको बता देते हैं, ग्रैंड कीर्तन संध्या रोनल सिंह रोनू एंड जैनेश सेवक आपके लिए इसी फ्राइडे के दिन वैदिक सेंटर में लेकर आ रहे हैं 7:30 बजे से. टिकट्स आर जस्ट फॉर $20, वेरी फ्यू टिकट्स आर लेफ्ट. जेस फ्रेश मार्ट आप पहुँच सकते हैं पापा टोयोटो में टिकट्स खरीदने के लिए. सो भाई इंटरेस्टिंग चीज़ें तो यही हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑल राइट, साथ में ब्राह्मण सभा जो है न्यूजीलैंड की रामकृष्ण मंदिर में आपके लिए लेकर आ रही है अधिक मास कथा और यज्ञ. डेफिनेटली 7 जून को आप यहां पर पहुंच सकते हैं.

0: काशिका।
1: वाह,
2: अद्भुत। तो सिक्स्थ स्टोरी आपने भेजी है 4281 ग्रेजुएटेड टुडे स्टिल लर्निंग एवरीडे, ग्रेजुएटेड टुडे स्टिल लर्निंग एवरी डे, एंड थैंक यू सो मच। आपने 1921 कहा यू कैन यूज ब्रिक, अच्छा योर ब्रिक, मुझे लगा ईंट की बात कर रहे हैं, बट येस ब्रिक इज अ डिवाइस, यू आर सो राइट। एंड ब्रिंग ब्रिक जो है यू नो टेलीफोन मोबाइल को स्मार्टफोन जो है जो आप उसका एक एडिक्शन है उसे कम कर सकते हैं, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप को ऑन योर एंड्रॉयड और योर एप्पल, और ये डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपको फ्रॉम यू नो ब्लॉकिंग ऑफ सोशल मीडिया, ईमेल्स, गेम्स एक्सेट्रा। सो टैप कीजिएगा ब्रिक पे इफ़ यू वॉन्ट टू रियली फोकस, होल्ड योर फोन अगेंस्ट द यू नो ब्रिक स्क्वेयर और उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाता है ब्रिक मोड। उससे क्या होता है कि आपका एक टाइमर उसके साथ सेट हो जाता है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम श्योर ब्रिक एक यू नो मैग्नेटिक चीज़ होती है जो एक आप किसी जगह पे आप लगा सकते हैं, डेस्क फाइल पे, ब्रिज फ्रिज के ऊपर या कुछ ऐसा करके। बट देर इज़ एन ऐप विच लिमिट्स, इट हैज़ अ लिमिट टू इट, यू कैन रीड अबाउट इट, बट बिग थैंक यू आपने इसके बारे में बताया, सो फिर रियली रियली ग्रेटफुल टू यू। नाउ कमिंग टू समथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, जब हम हंसने हंसाने की बातें करते हैं तो इंडियन इंक थिएटर कंपनी आपके लिए बलून डॉग लेकर आने वाले हैं, एक डबल पास जीतने का सुनहरा मौका भी है आपके पास। सो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है, आप दिस इज़ एक्चुअली रिटन बाय जेकब राजन एंड जस्टिन लुई, और डायरेक्ट किया है जस्टिन लुई ने, ये अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस जो है जेकब राजन की है जो न्यूजीलैंड में मतलब स्टेज पर बहुत दिनों बाद आ रहे हैं एक वर्ल्ड प्रीमियर लेके ऑफ बलून डॉग। ये एक बहुत ही खूबसूरत नया प्रोडक्शन है विच इज़ इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब ये एक स्टोरी थी ऑफ काबुली वाला 21st सेंचुरी में, इस किस तरह से खूबसूरत सी प्यार भरी कहानी जो एक 5 साल की बच्चे और काबुली वाला के बीच में थी वो कहानी को दर्शाया जा रहा है। एक सोल्ड आउट प्रीव्यू शो हुआ इसका और एक ये थिएट्रिकल मास्टरपीस अगर आप देखना चाहते हैं बलून डॉग, इट इज़ हैपनिंग एट द क्यू थिएटर इन ऑकलैंड 3rd जून यानी आज से लेके 20th जून तक। टेक्स्ट कीजिए BD यानी कि बलून डॉग, और बस सिंपली आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए, और ब्रेकफास्ट शो में परसों ये अनाउंस किया जाएगा। डोंट मिस आउट दिस थिएटर एक्सपीरियंस, iticket.co.nz पे आप ये टिकट खरीद भी सकते हैं। बट पर्सनली स्पीकिंग आई हैव डन सम थिएटर, तो मुझे लगता है कि मैं इस प्रोडक्शन को बिल्कुल मिस आउट नहीं करूंगी।
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन्स का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म, डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
4: Bunnings traders here to help you get set for winter with our new winter workwear range. From trusted trade brands like Hard Yakka and Sitco, you'll find a range of jackets, hoodies and more so you can keep warm on and off the site. Get set for winter with Bunnings Trade.
5: Nissan Big Deals ends June 22nd. Up to 5K savings and accessories on select new Navara models. Take advantage with the big one on X-Trail and discover the Patrol V8, backed by Nissan's up to 10-year warranty. T's and C's apply.
6: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better,

तो ये जो सब्जियों के बारे में बात कर रही हूँ, आपको लगता है कुछ आपकी लेफ्ट ओवर सब्जियां हैं या वेजिटेबल ट्रे में आपकी कुछ सब्जियां, उनको क्या करना है? अच्छी तरह धो लीजिए, टॉस कर लीजिएगा, और लगता है मुरझा गई हैं सब्जियां, तो थोड़ा सा क्या करना है आपको, उसमें डाइस करके आप छोटे छोटा टमाटर काट लीजिए, मसाले डाल दीजिए और सब्जियों को अच्छी तरह से पका लीजिएगा, और उसके बाद आपको इनको स्पैनिश ऑमलेट के अंदर आप एज अ फिलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर थोड़ा सा चीज़ डालें एंड इसको एक आप बेक करने के लिए भी रख दें तो भी समझ लीजिए आपके लिए एक स्टर फ्राई भी बहुत अच्छा तैयार हो सकता है, होममेड सूप भी बन सकता है। सो लेफ्ट ओवर्स आर नॉट रियली बैड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो ही जाता है जब हम इन्हें पसंद करते हैं। वैसे हम कुछ चीज़ों को ऐसे पसंद करते हैं जो शायद हमें हमारी ज़िंदगी में शायद देखने को ना मिले, लेकिन एक 7 फुट टॉल रेसलर शैंकी सिंह जो थे हमारे स्टूडियो में आए अनफिल्टर्ड में, सैंडी और रोजबे के साथ उन्होंने इंटरव्यू किया और ग्रेट खली के साथ ये ट्रेन हुए थे। तो इनका इंटरव्यू, इनका प्रोडक्शन अगर आप सुनना देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली 5599 पे ड्राइव लिख के भेजें। और इसका वीडियो प्रोडक्शन जो था वो इंस्पायर मीडिया वर्क्स ने किया, और जो रियल इस्टेट और इवेंट्स के वीडियोस भी तैयार करते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट केतन जो हमारे लंच बॉक्स में थोड़ी देर बाद आपका साथ निभाने के लिए यहाँ आने वाले हैं। फिलहाल के लिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपके लिए दिल से दिल तक में

तो चलिए फिर इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है हम्पवार बुधवार, जो भी इसे कहना चाहे। मेरी मुलाकात आपसे होगी कल सुबह 10 बजे, आपका साथ निभाने के लिए स्टूडियोज में आ जाऊंगी। बाय द वे, बिफोर आई गो, लेट मी रिमाइंड यू, कम्युनिटी में जो भी इवेंट्स आपके हो रहे होते हैं, आप हमारे साथ वो फ्री इवेंट्स जो है buzz@humfm.com पे शेयर जरूर कर सकते हैं। 25वीं एनिवर्सरी श्री राधा कृष्ण मंदिर सेलिब्रेट कर रहे हैं श्रीमद भागवत कथा, ये होने वाली 5 से 11 जून तक महात्मा गांधी सेंटर में, जरूर वहां पे पहुंचेगा। चलो अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा आज, आपने जिस तरह से इंटरेक्शन किया बहुत मज़ा आया। एंड यस, आई लव दैट ब्रिक, getbrick.com के ज़रिए जो आपने मुझे बताया कि कैसे मोबाइल से आप दूर रह सकते हैं। बिग थैंक यू टू यू, आपने नाम नहीं लिखा था। दिस इज़ काशिका साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Fuel ke daam roz badh rahe hain aur smart drivers ab switch kar rahe hain. Future hai efficient driving ka aur West City Omura Jaiku ke saath ye shift aur bhi easy ho jata hai. Introducing the powerful J7 Super Hybrid System, performance bhi, efficiency bhi, aur all electric J5 EV, zero emissions, maximum savings. Aaj hi West City Auto Group pahunche aur Jimmy Taylor aur unke expert team se mile. For more info, visit westcityautogroup.nz or search for West City Auto Group on socials.
0: गाड़ी चलती रहे, टेंशन बिल्कुल